हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर आज शनिवार है। सक्षम वर्ष 1948 के वैशाख माह की तिथि 19, तदनुसार 9 मई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की यह सभा। आज की सभा में आप सभी का स्वागत है।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार अपने दिल्ली केंद्र से।

0: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवीके को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवीके प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले 2 टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की

0: महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए आत्मसात करते हैं चिंतन के कुछ पलों को, सुनते हैं ये विचार।
2: गुरु नानक ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेगा, समझो उसने विश्व पर विजय प्राप्त कर ली। आपा चिन्हना एक महान गुण है। इस बात का अनुभव महात्मा गांधी को उस समय हुआ जब वे बैरिस्टरी की विद्या प्राप्त कर रहे थे। आपा चिन्हना मनुष्य को अपने अंदर की कमजोरियों से अवगत कराता है तथा जब वह उन्हें देखकर लज्जित होता है और हृदय से उनसे छुटकारा पाने की चाह रखकर प्रयास करता है, तब उसे अपने अंदर विद्यमान प्रभु ज्योति से प्रकाश मिलता है तथा उन पर विजय पाने में सक्षम होता है। धीरे धीरे आगे चलकर स्वयं को पूरी तरह से जानने के कारण उसे प्रभु की असीम शक्ति का वह स्रोत उपलब्ध हो जाता है कि वह आत्मबल द्वारा महामानव बन जाता है। गांधी जी का जीवन इसी का ज्वलंत उदाहरण है। कहते हैं गांधी जी पहले स्वभाव से संकोची थे, 10 आदमियों के सामने बोलने से घबराते थे। दूसरा, असत्य भाषण उनकी प्रकृति के विरुद्ध था। इन कारणों से उनकी वकालत नहीं चली। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका के एक बड़े व्यापारी सेठ अब्दुल्ला ने अपने व्यापार की देखरेख की सहायता के लिए गांधी जी को वहां बुलाया। इस प्रकार गांधी जी डरबन शहर पहुंचे। पर जब उन्होंने भारतीयों के प्रति गोरों के अत्याचार को देखा तो वे सिहर उठे। उनकी आत्मा ने उन्हें ललकारा, उठो, जागो, अपनी शक्ति को पहचानो, शोषण के विरुद्ध आवाज लगाओ, पीड़ितों के मुक्तिदाता बनो। क्योंकि गांधी जी आपा चिन्हने का सबक सीख चुके थे, उन्हें आत्मा की आवाज सुनने में देर नहीं लगी। अपने अंदर की प्रभु की शक्ति के भंडार को पहचान कर उनमें अंग्रेजी साम्राज्य से टकराने का अदम्य साहस पैदा हो गया। झेपू और संकोची गांधी अब शक्तिवान बन चुके थे। गांधी जी पगड़ी उतारे बिना ही बाहर चले गए, पर यह अपमान उनके हृदय को बेध गया तथा उन्होंने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की ठानी। दक्षिण अफ्रीका में दूसरी हृदय विदारक घटना तब घटी जब गांधी जी वहां रेल यात्रा कर रहे थे। रात के 9 बजे एक अंग्रेज उनके डिब्बे में आया तथा एक हिंदुस्तानी को वहां देख बहुत क्रोधित हुआ। उसने रेल कर्मचारियों को बुलाकर गांधी जी को उस डिब्बे से उतारने को कहा, जबकि उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था तथा उनके द्वारा इनकार किए जाने पर उन्हें धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। साथ ही उनका सामान भी नीचे फेंक दिया गया। गाड़ी चली गई और गांधी जी रात भर शीत में ठिठुरते रहे। पर उनके आत्मबल ने, जो आपा चिन्हने द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ था, उन्हें गर्मी प्रदान की। उन्होंने इस अत्याचार के विरुद्ध अपने मन में योजना बनाई। नेटाल सरकार एक ऐसा बिल पास करना चाहती थी जिससे भारतीयों के अधिकार छीनते थे। गांधी जी ने इस बिल के विरुद्ध जनमत तैयार किया, पर फिर भी वह बिल पास हो गया। फिर भी वे हतोत्साहित नहीं हुए, क्योंकि उन्हें आत्मबल पर भरोसा था। उन्होंने आंदोलन कायम रखा। अंततः उनकी जीत हुई जब ब्रिटिश सरकार द्वारा वह बिल स्वीकृत न हो सका। फिर दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों को नागरिक अधिकार दिलाने हेतु उन्होंने वहां सत्याग्रह प्रारंभ किया, जिससे उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ। इस प्रकार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे एक व्यापारी की सहायता के लिए, पर शोषण, अत्याचार व दमन के विरुद्ध निहत्थे अपने आत्मबल से संघर्ष करते हुए वे पीड़ितों के नेता बन गए। इसका कारण ये था कि उन्होंने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली थी। शोषकों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ने से पहले उन्होंने स्वयं से अपनी कमजोरियों से संघर्ष किया था।

0: अपने भीतर के असत्य से जूझे थे, अपने भीतर के दबूपन व कायरता पर विजय पाई थी। इस प्रकार स्वयं पर विजय पाकर वे एक महामानव बन गए थे तथा उनमें जादुई शक्ति आ गई थी।
1: श्रोता भी सुन रहे थे चिंतन FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है भक्ति गीतों का हमारा कार्यक्रम वंदना।

प्रातः वंदना के इस अनुपम बेला में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इस संसार में अगर किसी चीज की तलाश सभी को है, छोटे से छोटे जीव को, बुद्धिशाली प्राणी को, मनुष्य को, या फिर चैतन्य जागृत आत्मा को, तो वो है सुख। हर जीव सुख की तलाश में है, लेकिन कहते हैं ना कि वास्तविक सुख उसे ही मिलता है जिसे अपने स्वरूप का, अपने वास्तविक स्वरूप का भान होता है,

श्रोताओं, इस संसार में सबसे चंचल वस्तु है मन, और हम सभी मन को बांधने में लगे हैं, मन की चंचलता को स्थिर करने में लगे हैं। लेकिन मन की चंचलता तभी स्थिर हो सकती है जब हमें मन से ऊपर का ज्ञान प्राप्त हो, आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञानियों ने हमेशा एक बात कही है, जिस तरह से जल को सुराही में बांधा जा सकता है, किसी पात्र में बांधा जा सकता है, उसी तरह मन को ज्ञान से बांधा जा सकता है।

श्रोताओं, संसार में नकारात्मकता से दूरी बनाकर रखने की जरूरत है। चाहे वो नकारात्मकता हमारे आसपास किसी में हो या खुद हमारा मन नकारात्मक बातों में उलझा हो, नकारात्मकता की ओर हमें लेकर जा रहा हो, तो हमें इससे अलग हो जाना चाहिए। हमें इससे अलग होने का प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे ये कला हमें प्राप्त हो जाती है।

श्रोताओं, जिस चीज का चिंतन हम करते हैं, जिस चीज का ध्यान हम करते हैं, उसी अनुरूप हम होते चले जाते हैं। तो फिर सद्गुरु या सद्ज्ञान का चिंतन मनन हम क्यों ना करें। अगर ऐसा हम करते हैं तो फिर हमारा मन भी सद्गुरु और सद्ज्ञान में रम जाता है।

श्रोताओं कहते हैं कि हमें संसार के सुखों के पीछे नहीं भागना चाहिए, जो प्राप्त है उसको छोड़ करके दूसरी ओर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि वास्तविक सुख तो सनातन सुख में है। संसार का सुख तिरोभावी सुख कहा गया है, और वास्तविक सुख सनातन सुख में है जो हमें आत्मा से प्राप्त हो सकता है।

मन में अनेक बातें आती हैं, इसलिए मन के अनुसार नहीं अपने ध्येय के अनुसार चलना चाहिए। कबीर साहब ने तो ये बातें कही हैं, मन का चलता तन चले ताका सर्वस्व जाए। इसलिए मन के अनुसार नहीं अपने ध्येय अपने लक्ष्य के अनुसार चलना चाहिए। और वास्तविक ध्येय और वास्तविक लक्ष्य आत्मा के सुख की प्राप्ति में है।

श्रोताओ, मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है सुख प्राप्त करना और दूसरों को सुख देना। लेकिन वास्तविक सुख हमें सद्गुरु से प्राप्त हो सकती है, सद्ज्ञान से प्राप्त हो सकता है। तो आइए सद्गुरु का शरण प्राप्त करें, सद्ज्ञान के रास्ते आगे बढ़ें। भक्ति गीतों के कार्यक्रम वंदना में श्रोताओं, आज इतना ही। सूरज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: श्रोता भी सुन रहे थे भक्ति गीतों का हमारा कार्यक्रम वंदना एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए पेश है श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी।
1: एपिसोड नंबर 372

धन्य है अवध निवासी जहां स्वयं सच्चिदानंद राजा के रूप में विद्यमान है। उनकी छत्र छाया में इनका जीवन कृतार्थ हो गया है। एक दिवस मुनिवर वशिष्ठ श्री राम के सम्मुख उपस्थित हुए। समुचित आदर सत्कार पाकर कुलगुरु प्रेम विफल हो गए। उन्होंने राजा राम को वो प्रसंग सुनाया जब उन्होंने ब्रह्मा के आग्रह पर सूर्यवंश का पुरोहित बनना स्वीकार किया था। बोले, यूं तो पुरोहिती कर्म बहुत अच्छा नहीं होता, इसी कारण वेद पुराण स्मृति सभी ने इसकी निंदा ही की है। किंतु ब्रह्मा ने उन्हें ये भार इसलिए ग्रहण करने का परामर्श दिया था कि एक दिन स्वयं परब्रह्म परमात्मा नर रूप धारण कर सूर्यवंश में जन्म लेंगे। अतः जो स्थिति योग यज्ञ दान और तपस्या से प्राप्त होती है वो उन्हें इसी कर्म यानी पुरोहिती के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। वशिष्ठ जी ने याचना की, हे प्रभु, मुझे ये वरदान दीजिए कि जन्म जन्मांतर मेरे हृदय में आपका प्रेम अक्षुण्ण बना रहे, कभी कम न हो।

श्रोता भी सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान की आज की कड़ी FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण श्रोताओं आई जानते हैं अपने केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में।

श्रोताओं से कुछ ही देर बाद सुबह 7 बजे हम आपको सुनवाएंगे लोक गीतों का हमारा कार्यक्रम लोक रंग। प्रसंग सामाजिक वार्ता का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:20 पर। मॉर्निंग मेलोडी ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8:45 पर।

शाम को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी हम आपको थोड़ी जानकारी दे दें। शाम 5:02 पर आप सुनेंगे किसान वाणी। पांच बजकर 32 मिनट पर हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम खेती बाड़ी और शाम 6:02 पर आप सुनिए श्रमिक भाई बहनों को संबोधित हमारा कार्यक्रम मेहनत कश।

शाम को प्रसारित होने वाले फिल्म संगीत के कार्यक्रमों के बारे में भी हम आपको थोड़ी जानकारी दे दें। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत झनकार। ये कार्यक्रम होगा 7:15 पर। ऑल टाइम हिट्स हर रोज की तरह सदाबहार फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम का आप आनंद उठा सकते हैं हमारे साथ रात्रि 7:30 पर।

रजनीगंधा फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम होगा रात्रि 10 बजे और 10:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रोग्राम आज के फनकार।

कार्यक्रम विवरण श्रोता भी सुन रहे थे अपने केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम आपको शामिल करेंगे अपने दिल्ली केंद्र के प्रसारण में, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। तो बस इसके लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: आज के समाज में एक गरीब के बेटी कह रहे हैं,
2: निर्बल हियो निर्धन हियो, निर्बल हियो निर्धन हियो बेटी गरीब के, निर्बल हियो निर्धन।

कहे मुरली बाबा ईश्वरी जी गोलू के दरम्यान में, कहे मुरली बाबा ईश्वरी जी गोलू के।

0: श्रोता साथियों, इसी खोरठा लोकगीत के साथ ही लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम लोकरंग यही समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे शिवनंदन पांडे गरीब, लाल बिहारी साव और साथियों को। FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है सामाजिक वार्ता का हमारा कार्यक्रम प्रसंग। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुष्मिता शर्मा की वार्ता दहेज प्रथा।
1: आज कलम चलने लगी है बेटी के अधिकार में, आज कलम चलने लगी है बेटी के अधिकार में, क्योंकि हार जमाने की भी है हर बेटी के हार में। मैं बताना चाह रही हूँ उस समाज के दलबल को, मैं बताना चाह रही हूँ उस समाज के दलबल को, घुट घुट कर जी रही उस बेटी के समर्पण को, घुट घुट कर जी रही उस बेटी के समर्पण को। सात फेरों का है बंधन जो बचनों के संग बनता है, और आत्मा के मिलन से जीवन में रंग भरता है। दोनों में झगड़ा तो प्रेम का प्रतीक माना जाता है, दोनों में झगड़ा तो प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस मौके पर लड़का लड़की को ताना कसे दहेज का, टीवी फ्रिज और कूलर मिक्सर और सेज का। अगर बेटी लाचार हुई तो कौन खामियाजा भुगतेगा, अगर बेटी लाचार हुई तो कौन खामियाजा भुगतेगा। बात पैसों की है नहीं, पर कैसे जीवन सुधरेगा। आज भारत विकासशील देशों में गिना जाता है, परंतु कुछ छोटी सोच और समाज के पुराने रिवाज, जैसे बाहर शौच करना, कूड़ा इधर उधर फेंकना, बेटी को शिक्षा ना दिलाना और दहेज प्रथा, हमारे देश भारत को विकसित होने से रोक रहे हैं। 21वीं सदी में विकासशील भारत के लिए दहेज प्रथा एक कोढ़ का काम कर रही है। दहेज प्रथा हमारे देश के लिए एक कलंक है, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यह प्रथा किसी आतंकवाद से कम नहीं है। दहेज प्रथा का चंगुल हर जगह व्याप्त है। इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई है कि अमीर हो या गरीब, हर वर्ग के लोगों को जकड़ रखा है। या हम यूं भी कह सकते हैं कि आज के इस आधुनिक युग में भी दहेज प्रथा देश में एक अभिशाप के रूप में फैल चुका है। आज भी इस 21वीं सदी में बेटी के जन्म लेते ही ज्यादातर माता पिता के सिर पर चिंता सवार हो जाता है। चिंता इस बात की नहीं होती है कि बेटी की पढ़ाई कैसे करवाएंगे, चिंता तो इस बात की होती है कि बेटी के विवाह कैसे करवाएंगे, विवाह के लिए दहेज कैसे इकट्ठा करेंगे। दहेज की ज्वाला से जलती है जिंदगियां, दहेज के सहारे कहां चलती है जिंदगियां। हालांकि आज कन्या भ्रूण हत्या में कमी आई है, परंतु आज भी ज्यादातर घरों में बेटी पैदा होती है तो उनके लिए वह दुख का दिन होता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है दहेज प्रथा। आज भी हमारे हिंदू समाज के माथे पर यह एक कलंक जैसा चिपका हुआ है। दहेज प्रथा की शुरुआत कब हुई यह बता पाना सटीक रूप से तो बहुत मुश्किल है, परंतु यह बता सकते हैं कि यह प्राचीन काल से चला आ रहा है। रामायण काल से भी कन्या के विदाई के समय पर माता पिता के द्वारा दहेज के रूप में धन संपत्ति देने का उदाहरण मिलता है, परंतु उस समय दहेज को लोग स्वार्थ भावना के रूप में नहीं लिया करते थे, और लड़के वालों की ओर से तो कोई दहेज की मांग नहीं हुआ करती थी। विवाह को एक पवित्र एवं धार्मिक बंधन माना जाता था, जिसमें दो परिवारों का मिलन होता था। उस समय दहेज को लड़की के माता पिता लड़की के लिए सामान के रूप में दे दिया करते थे, जिसे बिना कोई लोभ लड़के के घर वाले रख लिया करते थे। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया और हिंदू समाज में सती प्रथा, जाति पाति, छुआछूत जैसी समाज में बुराइयां बढ़ने लगी, वैसे ही दहेज ने भी एक व्यापार का रूप ले लिया। शुरुआती समय में तो जेवर, कपड़े, फर्नीचर, फ्रिज, गाड़ी और टेलीविजन तक ही बात थी, लेकिन बाद में लोग मोटी रकम भी लड़की वालों से लेने लगे। गलती से कहीं अगर लड़का यदि कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बड़ी सरकारी नौकरी वाला हो तो फिर सौदे की बात जमीन जायदाद या मोटर कार तक भी पहुंच जाती है। आज 21वीं सदी में दहेज प्रथा एक बहुत ही क्रूर रूप ले चुका है। ऐसा भी होता है कि अगर विवाह के समय दहेज में कमी हुई तो कुछ लोग तो शादी किए बिना ही बारात वापस ले जाते हैं, और अगर गलती से शादी हो भी जाती है तो लड़की का जीवन नरक के समान बीतता है, या फिर लड़कियों को कुछ गलत बहानों से तलाक दे दिया जाता है। बात तो यहाँ तक भी बिगड़ चुकी है कि लड़कियों से तलाक न मिलने पर ससुराल वाले उन्हें जलाकर मार देते हैं। आज दहेज प्रथा कैंसर की तरह समाज को नष्ट करते जा रहे हैं। सरकार भी दहेज प्रथा को रोकने के लिए बहुत कड़े नियम बना रही है, परंतु दहेज प्रथा कुछ इस तरीके से पूरे देश में फैल चुका है कि अब इसे रोकना कोई आसान काम नहीं लग रहा है। साथ ही कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सरकार ने लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाएं भी शुरू की हैं। आज बेटी बेटों के साथ कंधा मिलाकर देश के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। पता नहीं फिर भी लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि बेटा बेटी एक समान। दहेज प्रथा के कारण ही नारी जाति को कई प्रकार के अत्याचार को सहना पड़ा है। इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई है कि अमीर हो या गरीब, हर वर्ग के लोग को यह बुरी तरह से जकड़ कर रखा है। इसके खिलाफ सरकार ने कई कानून भी बनाए हैं, लेकिन उन कानूनों का हमारे रूढ़िवादी सोच वाले लोगों पर कोई असर नहीं होता है। वह दहेज लेना एक अभिमान का विषय मानते हैं। दहेज के खिलाफ ना तो कोई बोलना चाहता है और ना ही कोई सुनना चाहता है, क्योंकि इसमें सब अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। दहेज प्रथा ने लोगों की सोच को इतना खोखला कर दिया है कि अगर उनको दहेज नहीं मिलता है तो वो शादी से इनकार कर देते हैं। भ्रूण हत्या भी दहेज प्रथा की ही देन है, क्योंकि लोग मानते हैं कि बेटियां तो पराई होती है, वह हमारे किसी भी प्रकार से काम नहीं आएंगी और उनके शादी पर उनको दहेज भी देना पड़ेगा। इसलिए अब बेटों की तुलना में बेटियों की संख्या बहुत कम हो गई है। वह लड़की होने को सिर्फ खर्चा ही मानती है, जिस कारण बेचारी लड़कियों को बिना कोई कसूर के कोख में ही मरवा दिया जाता है। भारत में पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाओं को अपनी बात रखने का कोई अधिकार नहीं होता है। इसी कारण महिलाएं अपने आप को कमजोर मानती हैं और दहेज रूपी महामारी का शिकार हो जाती हैं। शिक्षा की कमी के कारण भी दहेज को बढ़ावा मिलता है। लोगों की मानसिकता का इसी से पता लगाया जा सकता है कि अखबारों या इंटरनेट पर देखा होगा कि शादी के विज्ञापनों में लिखा होता है सुंदर लड़की चाहिए, तो बस जो सांवली लड़की है या जो सुंदर नहीं है उनके लिए बहुत सारा दहेज चाहिए। लेकिन जो भी हो, इसके दुष्परिणाम यह होता है कि इसके फलस्वरूप देश के विकास में बाधा होती है, महिलाओं के मान सम्मान को ठेस पहुंचता है। इसके उपाय के फलस्वरूप हमें दहेज प्रथा के खिलाफ कानून बनाना चाहिए, कड़ी कानून बनाना चाहिए। लड़कियों को शिक्षित बनाना होगा, महिला सशक्तिकरण पर जोर देना चाहिए, लड़का लड़की के भेदभाव को खत्म करना होगा, कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना होगा तथा दहेज प्रथा पर सामाजिक जागरूकता फैलाना होगा।
0: दहेज प्रथा, श्रोता भी सुन रहे थे सुष्मिता शर्मा की वार्ता। सामाजिक वार्ता कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे यह वार्ता। इसी के साथ ही यह कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 102.1।

FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम गीत संगीत।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: हम आपको बता दें कि अपने ट्यून की एफएम हजारीबाग और इस वक्त आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम गीत संगीत।

श्रोता साथियों, इसी खूबसूरत सी गजल के साथ ही सुगम संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाली हैं। कुछ ही पलों में हम आपको शामिल करेंगे अपने दिल्ली केंद्र के प्रसारण में, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। इसके तुरंत बाद 8:30 पर हम आपको सुनाएंगे प्रादेशिक समाचार अपने रांची केंद्र से। तो समाचारों के लिए कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दासगुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष द्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष

0: सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों

0: और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
2: Exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोक सत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर एआई समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट है नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक एआई चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 150 रुपए में गैस सिलेंडर या 200 रुपए सब्सिडी देने का किया अनुरोध। रांची जिला प्रशासन आज करेगा निजी स्कूलों के साथ बड़ी बैठक। आरटीई नियमों के पालन पर प्राचार्यों को दिए जाएंगे सख्त निर्देश। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के 5 जिलों में आज के लिए जारी किया ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवा। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड ओलंपिक संघ के बीच हुई अहम बैठक। 2036 ओलंपिक के लिए राज्य में बनेगा विशेष रोडमैप। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि जिस तरह बंगाल की जनता ने टीएमसी के कुशासन को नकारा है, उसी तरह झारखंड की जनता भी भ्रष्टाचार से त्रस्त है। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं।
1: अभिकर्ता का चयन हुआ, उनके जो विभागीय मंत्री थे बिना वांछित पेपर के वो अपने चहेतों को काम दिया, वो ठेकेदारी बांट दिए और ये पैसों का बंदरबांट हुआ उस समय। और आज उसी का नतीजा झारखंड की आम जनता झेल रही है। और भ्रष्टाचार के वजह से आज नल जल योजना, जो इतनी महत्वाकांक्षी योजना, आज आम लोगों को पानी की किल्लत हो रही है, आज आम लोग परेशान है।
0: राज्य के वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कांग्रेस के प्रमुख चुनावी वादे को लागू करने का अनुरोध किया है। मंत्री ने राज्य के उपभोक्ताओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने या 200 रुपए की सीधी सब्सिडी देने की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने जोर देकर कहा कि गठबंधन सरकार ने जनता से यह वादा किया था, जिसे अब पूरा करने का समय आ गया है।
2: गैस 400 रुपए में हम देंगे, हम अपने वित्तीय संसाधनों को भी देखेंगे। अब इसमें कोई मुख्यमंत्री जी से खीस की बात नहीं है, नाराजगी की बात नहीं है, लेकिन हम अपने इश्यूज की चर्चा करते रहेंगे। इसमें सरकार और मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई नाराजगी की बात नहीं होनी। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों ने 400 रुपए पर गैस सिलेंडर देने की बात कही थी, आप इस पर करिए। मैसेज तो जनता के बीच जाना चाहिए।
0: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी भाषाओं को लेकर जारी विवाद के बीच राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने भाषा संबंधी विसंगतियों पर विचार करने के लिए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस कमेटी में कैबिनेट मंत्री संजय प्रसाद यादव, दीपिका पांडे सिंह, योगेन्द्र प्रसाद और सुदिव्य कुमार को शामिल किया गया है। रांची जिला प्रशासन ने जिले के सभी निजी स्कूलों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। उपायुक्त की अध्यक्षता में यह बैठक आज रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सीबीएसई, आईसीएसई और जैक बोर्ड से जुड़े सभी निजी स्कूलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य है। बैठक में आरटीई के तहत बच्चों के नामांकन और नियमों के पालन से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। रांची नगर निगम ने पूरे शहर में सोलर लाइटें लगाकर सड़कों और पार्कों को रोशन करने की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य शहर को ग्रीन सिटी बनाना और बिजली बिल कम करना है। मेयर रोशनी खलखो ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे रांची न केवल आत्मनिर्भर बनेगी बल्कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।
3: बिजली की बचत आज के दिन में बहुत जरूरी, जिस तरह से बिजली की खपत हो रही है निरंतर गांव से लेकर के शहर में भी, ऐसे में सोलर पैनल के माध्यम से सभी सरकारी भवन, इनफैक्ट नगर निगम की जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इस पे भी हम लोगों ने नगर आयुक्त के साथ मिलकर के आदेश दिया है इसके कि जल्द से जल्द नगर निगम की बिल्डिंग पर भी सोलर पैनल लगा दे।
0: राज्य के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में मुख्य आरोपी अरविंद सिंह को सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विजय विश्नोई की खंडपीठ ने इस मामले में एसीबी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह जिले के नीमियाघाट थाना क्षेत्र के इसरी बाजार में कल देर शाम एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सात लोग घायल हैं। उपायुक्त राम निवास यादव ने स्वयं घटनास्थल और अस्पताल जाकर घायलों का हालचाल जाना। उपायुक्त ने लोगों की गंभीर स्थिति को देखते हुए धनबाद के अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा है।
1: ड्राइवर ने ट्रक को अनियंत्रित होकर पूरी मार्केट में उसने घुसाया है, बहुत लोगों को टक्कर मारी है। यहाँ जो अभी इंजर्ड है और धनबाद में भी जो हमारा सरपी हॉस्पिटल है, जेपी हॉस्पिटल है, पीएमसीएच है, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी है, जो भी वहाँ पे पहुँचता है उसको सही समय इलाज करा जाए।
0: रांची के भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में बांग्ला सांस्कृतिक मेला 2026 की भव्य शुरुआत हो गई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दीप प्रज्वलित कर मेले का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह मेला भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने साहित्य, कला और संगीत के क्षेत्र में बांग्ला संस्कृति के अमूल्य योगदान की सराहना की। रांची सदर अस्पताल में विश्व थैलेसीमिया दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान थैलेसीमिया मरीजों के जज्बे और उनके जीवन के संघर्षों को सम्मानित किया गया। विशेषज्ञों ने सुरक्षित रक्तदान और इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने पर जोर दिया, ताकि भविष्य में इसे रोका जा सके।
2: गजल मशीन हमारे यहाँ हर जगह है, सदर अस्पताल में भी कंफर्मेटरी जांच होता है, रांची में विशेष व्यवस्था है और रांची में पेशेंट्स भी काफी हैं, क्योंकि हम लोग ये स्क्रीनिंग ज्यादा करते हैं तो ज्यादा पेशेंट्स निकलते हैं। दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो हम लोग सबके लिए ब्लड की व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं।
0: राज्य में 14 मई तक रुक रुक कर बारिश और ओलावृष्टि का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने विशेष रूप से आज के लिए रांची, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ और खूंटी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। झारखंड को खेल हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव डॉ. मधुकांत पाठक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर राज्य में खेल विकास की नई रूपरेखा साझा की। बैठक का मुख्य फोकस 2036 ओलंपिक रहा। चीन में चल रहे एएफसी अंडर 17 महिला एशियन कप से भारत के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भारतीय टीम ने लेबनान को 4-0 से करारी शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। शुरुआती हार के बाद टीम ने यह शानदार वापसी की है। झारखंड के लिए यह गौरव का पल है, क्योंकि इस टीम में राज्य की 4 स्टार खिलाड़ी हैं। एलिजाबेथ लकड़ा, सूरजमणि कुमारी, अनुष्का कुमारी और दिव्यानी लिंडा इसमें शामिल हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, शुभेंदु बंगाल के अधिकारी। प्रभात खबर के शब्द हैं, जेटेट मामले में 5 मंत्रियों की कमेटी तय करेगी जिलों के लिए भाषा। हिंदुस्तान वेतन घोटाला मामले में लिखता है, बोकारो से कई दस्तावेज लेकर लौटी जांच टीम। और दैनिक जागरण की सुर्खी है, गिरिडीह में लोगों को रौंदते हुए बाजार में घुसा ट्रक, 5 लोगों की मौत। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। गिरिडीह पहुंची अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। जल जीवन मिशन में गड़बड़ी और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पर उठाए सवाल। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, राज्य के उपभोक्ताओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर या 200 रुपए सब्सिडी देने का किया अनुरोध। रांची जिला प्रशासन आज करेगा निजी स्कूलों के साथ बड़ी बैठक। आरटीई नियमों के पालन पर प्राचार्यों को दिए जाएंगे सख्त निर्देश। मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के 5 जिलों में आज के लिए जारी किया ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड ओलंपिक संघ के बीच हुई अहम बैठक, 2036 ओलंपिक के लिए राज्य में बनेगा विशेष रोड मैप। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक बार एक राहगीर रास्ते के किनारे पर बैठा था और आते जाते सबको पूछ रहा था, मुझे वहां पहुंचना है, रास्ता कहाँ है। पहले को पूछा, दूसरे को पूछा, चौथे को पूछा, सबको पूछता ही रहता था। और उसके बगल में एक सज्जन बैठे थे, वो सारा देख रहे थे। बाद में खड़ा हुआ, खड़ा होकर के किसी को पूछने लगा तो वो सज्जन खड़े होकर के उसके पास आए। उसने कहा, देखो भाई, तुमको जहां जाना है ना, उसका रास्ता इस तरफ से जाता है। तो उस राहगीर ने उसको पूछा, भाई साहब, आप इतनी देर से मेरे बगल में बैठे हो, मैं इतने लोगों को रास्ता पूछ रहा हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा है, आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताते थे। बोले, मुझे भरोसा नहीं था कि तुम सचमुच में चल करके जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, या ऐसे ही जानकारी के लिए पूछते रहते हो। लेकिन जब तुम खड़े हो गए तो मेरा मन कर गया, हाँ, अब तो इस आदमी को जाना है, पक्का लगता है। तब जाकर के मुझे लगा कि मुझे आपको रास्ता दिखाना चाहिए। मेरे देशवासियों, जब तक हम चलने का संकल्प नहीं करते, हम खुद खड़े नहीं होते, तब रास्ते दिखाने वाले भी नहीं मिलेंगे, हमें उंगली पकड़ कर चलाने वाले नहीं मिलेंगे। चलने की शुरुआत हमें करनी पड़ेगी और मुझे विश्वास है कि 125 करोड़ देशवासी जरूर चलने के लिए समर्थवान है, चलते रहेंगे।

मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, लीजिए पेश है कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।

0: कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म का नाम हम आपको बता दें, इसे हमने लिया है फिल्म राजा हिंदुस्तानी से।
1: जी कर देखता रहूं
2: क्या

0: जोकर।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: Daily Law के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: राजा भैया फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में।

उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति के गाए राजा भैया फिल्म के इसी गाने के साथ ही मॉर्निंग मेलोडी का आज का ये खूबसूरत सा सफर यहीं समाप्त होता है। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं।

FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम आपको शामिल करेंगे अपने विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों में। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार,

दिल में उतरती आवाज अरिजीत सिंह की, इनकी गायकी का अंदाज भी अलग है। गदर 2 फिल्म का गाना आपने सुना, सईद कादरी के बोल थे, मिथुन का संगीत, और अब एक छोटा सा अंतराल।

ये छोटा सा अंतराल था, पलक झपकते ही पूरा हो गया और हम फिर से हाजिर हो गए चित्रलोक कार्यक्रम में। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। साथियों, आज है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य, कला और शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्वितीय प्रतिभा थे। वे एक मानवतावादी विचारक थे जिन्हें प्रकृति से गहरा लगाव था। उनका अटूट विश्वास था कि विद्यार्थियों को प्रकृति के करीब रहकर ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। आपने गोरा, चुखेरवाली, घरे बाहर जैसे कई उपन्यास लिखे। साहित्य की ऐसी कोई विधा नहीं है साथियों जिसमें उन्होंने अपनी सशक्त कलम का परिचय न दिया हो, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, उपन्यास, नाटक या गीत। उनकी कुशाग्र बुद्धि ने न केवल भारतीय बल्कि विदेशी साहित्य, दर्शन और संस्कृति को भी आत्मसात किया था। साल 1913 में उनकी कालजयी कृति गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिससे वे पूरे विश्व में विख्यात हुए।

0: परिणीता फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें थीं, स्वानंद किरकिरे के बोल, शांतनु मोइत्रा का मीठा संगीत और इसमें बात थी पीयू बोले, बहुत ही प्यारा गाना था ये। साथियों, ये पक्षी, इनकी परवाज, इनकी चहचहाहट, इनका सौंदर्य तो बस देखते ही बनता है। सच मानिए, कुदरत ने हमें बहुत कुछ दिया है। प्रकृति के साथ कुछ लम्हे गुजारिए ना, जिंदगी में चारों ओर खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। अगला गाना हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए अब एक संदेश की ओर बढ़ जाते हैं।
1: एक बेमिसाल शायर,
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने

0: श्रेया घोषाल और अजय गोगावले की आवाजों में सिंघम फिल्म का ये गाना था। स्वानंद किरकिरे के बोल थे, अजय अतुल का संगीत।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

इस छोटे से अंतराल के बाद चित्रलोक कार्यक्रम में अब बजेगा प्रीतम का संगीत, नीलेश मिश्रा के बोल, के की आवाज में वो लम्हे फिल्म का ये गाना।

ये संगीत है विशाल शेखर का, जावेद अख्तर के बोल हैं, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें। बहुत खूबसूरत गाना, एंजॉय कीजिए। कार्यक्रम चित्रलोक विविध भारती पर।

जावेद अली की आवाज, प्रीतम का संगीत, समीर के बोल, नकाब फिल्म का ये गाना था आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और अब आज के लिए शेफाली कपूर को दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ ब्यूटीफुल डे, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।

0: कैसे हो सकता। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
1: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

एक ऐसी आवाज जिसका फिल्म संसार में कभी कोई जोड़ नहीं आया, एक आवाज जो अपने आप में निराली है, जो हमारी तन्हाइयों और हमारी उदासियों की साथी है।

तलत महमूद का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मंजूर अहमद थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने पंडित एस सी आर भट्ट से मॉरिस कॉलेज लखनऊ में तालीम ली। ये दौर था सन 1920-1930 का। तलत महमूद शास्त्रीय और सुगम संगीत की तालीम ले रहे थे। सन 1939 तलत महमूद ने बतौर गायक अपना करियर शुरू किया। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में तलत महमूद गजलें गाने लगे। ये वो दौर था जब तलत महमूद

तलत महमूद ऐसे चुनिंदा गायकों में से थे जिन्होंने गैर फिल्मी गजलें और गीत गाकर वो शोहरत हासिल की थी जो लोग फिल्मी गाने गाकर करते हैं। यहां तक तलत महमूद ने फिल्मों में गाना शुरू नहीं किया था। तलत महमूद को फिल्मों में अभिनय का भी शौक रहा। अपने करियर में तकरीबन 16 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। कोलकाता में बनी 3 फिल्में तो बड़ी ही कामयाब रहीं। तपन कुमार के नाम से वो बांग्ला में कुछ गीत भी रिकॉर्ड करवाते थे और अमूमन उनके संगीतकार हुआ करते थे कमल दास गुप्ता। सन 1949 में तलत महमूद मुंबई आ गए। उनका मकसद था फिल्मों में गाने गाना। यहां आकर उन्होंने बेमिसाल संगीतकार अनिल बिस्वास से मुलाकात की। अनिल बिस्वास को तलत की आवाज जम गई और फिल्म आरजू में आया उनका पहला गाना।

0: कोई।
1: इस गाने से तलत महमूद की फिल्मी कामयाबी का सफर शुरू होता है। इसके बाद तलत महमूद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक कई बेमिसाल फिल्मों में उनके गाने आए और लोगों ने इन गानों को बड़ा मशहूर किया। एक दौर ऐसा भी आया था जब तलत महमूद को अपनी आवाज की लर्जिश पर भरोसा नहीं था। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास के लिए तलत बिल्कुल सपाट गा रहे थे। तब अनिल बिस्वास ने उन्हें जोर से डांटा था और उन्हें ये यकीन दिलाया था कि तुम्हारी आवाज की ये जो लर्जिश है, ये जो कंपन है, यही तुम्हारी ताकत है। और उसके बाद बड़े आत्मविश्वास के साथ तलत महमूद ने गाया। उनकी आवाज का ये कंपन उनकी खासियत बन गया। आइए सन 1957 में आई फिल्म देख कबीरा रोया का ये गाना सुना जाए।

उनकी आवाज का एक खास टेक्सचर था, उनकी आवाज का एक अलग ही रंग था और दिलीप कुमार जैसे नायकों पर उनकी आवाज ली गई। आइए सुना जाए सन 1952 में आई फिल्म दाग का गाना।

संगीतकार सलील चौधरी के लिए तलत महमूद ने सन 1961 में लता मंगेशकर के साथ ये गाना गाया फिल्म छाया के लिए। आज भी ये फिल्म संसार के कुछ बेमिसाल गानों में से एक है।

0: सारा।
1: जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा।
2: शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म पतिता और गाना ये।

1959 में सुनील दत्त के लिए फिल्म सुजाता में तलत महमूद ने ये गाना गाया था। हीरो टेलीफोन पर हीरोइन से अपने मन की बात कह रहा है।

0: अब संगीतकार मदन मोहन के साथ तलत महमूद के गानों की बात की जाए और आपको सुनवाया जाए सन 1964 में आई फिल्म जहां आरा का ये गाना।
1: फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है।

0: फिर वही।
1: मदन मोहन ने एक बेमिसाल गाना तैयार किया जिसमें तलत महमूद के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और भूपेंद्र की भी आवाजें थीं। ये था फिल्म हकीकत का गाना, सुनिए।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि तलत महमूद ने कई फिल्मों में गाने गाए, उसके बावजूद वे अपने गैर फिल्मी गीतों और गजलों के एल्बम तैयार करते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी की। आइए फिल्म सोने की चिड़िया का गाना सुना जाए। ये फिल्म साल 1958 में आई थी। इस फिल्म के हीरो खुद तलत महमूद थे। ये गाना सुना।

0: क्या,
1: यानी फिल्मों में गायकी, गैर फिल्मी गाने, गीत और गजलें और एक्टिंग, इतना सब किया तलत महमूद ने। उन्होंने सारी दुनिया में घूम घूम कर अपने संगीत कंसर्ट भी किए। तलत महमूद का करियर काफी लंबा रहा। उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 800 गाने गाए हैं। अपनी खास तरह की आवाज, अपने खास तरह के अंदाज के लिए आज भी सुनने वाले उन्हें बेहद प्यार करते।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक तलत महमूद पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं लीजिए पेश से प्रोग्राम हेलो हजारीबाग।
1: 10 9 8 7 6

0: हेलो हजारीबाग, प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग, और अंत में आज के विचार को सुनकर कर देंगे दिन की पॉजिटिव शुरुआत। गीतों संगीत से सजा सवरा जीवन के प्रत्येक आवश्यक गतिविधियों के संग हेलो हजारीबाग।
1: हेलो हजारीबाग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सूरज, कीजिए अभिवादन स्वीकार। नमस्कार श्रोताओं, न सीमाओं का बंधन, न जमीन आसमान में दूरी, पंछियों की दुनिया बेहद खूबसूरत होती है, कभी इस देश तो कभी उस देश, हर जमीन पूरा आसमान इनके हिस्से हैं। इस खूबसूरत पंछियों से हमारी दुनिया भी बेहद खूबसूरत बन जाती है। जैव विविधता की बात करें, प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन की बात करें, इनकी वृद्धि की बात करें, ये हमेशा से सहयोगी रहे हैं। तो आज हम आपको बता दें कि मई महीने का दूसरा शनिवार है, और मई महीने के दूसरे शनिवार और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को हम विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं। तो आप सभी को आज के इस दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी प्रकृति प्रेमियों को, पक्षी प्रेमियों को, प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन में अपनी भूमिका निभाने वाले सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और भी बातें करेंगे, हजारीबाग के साथ भी प्रवासी पक्षियों का संबंध रहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल एक खूबसूरत से गीत के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं।

श्रोताओं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में बातचीत हम कर रहे थे कि मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को यह मनाया जाता है, तो इस वर्ष यह 9 मई और 10 अक्टूबर की तारीख पड़ी है और इस दिन हम सभी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाएंगे। और इसके पीछे का जो उद्देश्य है उसके बारे में मुख्यतः बात यह है कि प्रवासी पक्षियों के सामने आने वाली समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन या दूसरी जो समस्याएं थी उनके आवास से संबंधित या दूसरी जरूरत है उसके बारे में जागरूकता को बढ़ाना है, क्योंकि कई लंबी दूरी करके 1000-2000 किलोमीटर की यात्रा करके प्रवासी पक्षी एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो इसके लिए जागरूकता का होना बहुत जरूरी है। और इस अभियान की शुरुआत की बात करें तो 2006 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से इसकी शुरुआत की गई थी और यह दिन पक्षियों के प्रवास की मौसमी प्रकृति को दर्शाता है, इसलिए इसे साल में दो बार मनाया जाता है। तो इस खूबसूरत पक्षियों के बारे में और भी बातचीत करेंगे, लेकिन थोड़ी चर्चा मौसम के बारे में कर ले तो अधिकतम तापमान आज दिन में 36 डिग्री रहने की संभावना है और रात्रि में यह तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। हजारीबाग के मौसम में थोड़ी बात है कि थोड़ी हल्की ठंड और सरसराहट है और लोग इसे एंजॉय भी कर रहे हैं। तो और इसके अलावा जो संभावना व्यक्त की गई कि थोड़ी हवा चलेगी, बादल भी छाए रहने की संभावना है और हल्की बारिश हो सकती है, और इसके अलावा जो तापमान है वो निरंतर जो बना हुआ है वो निरंतर बने रहने की संभावना व्यक्त की गई है। तो मौसम का हाल हम जान लिए। इसके अलावा आज अखबार के पन्नों को पलटेंगे, मुख्य खबरें क्या हैं, खबरों जो खबरें आकर्षित करती हैं उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे, इतिहास के पन्नों को भी पलटेंगे, जानेंगे कि इतिहास में आज के तारीख के साथ कौन सी बातें जुड़ी हुई, कौन सी ऐतिहासिक घटनाक्रम जुड़ा हुआ है, कौन से ऐतिहासिक जो नेतृत्व है जिनका संबंध आज के तारीख से है, जिनका जन्मदिवस, इन तमाम बातें करेंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत संगीत हम आपको सुनवाते हैं।

श्रोताओं, जिन प्रवासी जलीय पंछियों का संबंध हजारीबाग से है उसमें कॉमन पोचार्ड, लाल सिरी, टफेट डक, सुरखाब और लिटिल ग्रीव की चर्चा हमेशा होती है और ये हर साल सर्दियों में हजारीबाग आते हैं और नवंबर दिसंबर के समय आते हैं जब ठंड की शुरुआत होती है। और इसके बाद हम आपको बता दें कि आपकी दिलचस्पी इस बात पे भी जरूर होगी कि ये आते कहाँ से हैं। सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया से आते हैं, मंगोलिया और तिब्बत के ठंडे इलाकों से ये आते हैं। और हम आपको बता दें कि कई ऐसे पक्षी हैं जो 3000 किलोमीटर की यात्रा करके वो हजारीबाग पहुँचते हैं। अब दिलचस्पी इस बात में भी होगी कि ये हजारीबाग में आते कहाँ हैं। तो ऐसे छड़वा डैम को लेकर अक्सर खबरें प्रकाशित प्रसारित होती हैं कि यहाँ पर ये पक्षी, प्रवासी पक्षी, जलीय पक्षी आते हैं। इसके अलावा हम बात करें, कुछ एक लोग ये भी कहते हैं कि हजारीबाग झील और गोंदा डैम है वहाँ भी प्रवासी पक्षी देखे जाते हैं। हालांकि तिलैया डैम के बारे में भी ये बात कही जाती है, हजारीबाग शहर से थोड़ी दूरी पर है तो यहाँ भी प्रवासी पक्षी निरंतर आते हैं। तो इन पक्षियों के साथ, हजारीबाग के साथ एक गहरा लगाव है, भावनात्मक लगाव है और एक तरह से कहें कि जो आकाश और जमीन की जो दूरी है वो पक्षी ये आसानी से नाप जाते हैं। अब जब पक्षी की बात चली है तो मन में ये बात आती है कि भाई मन भी कोई खूबसूरत पंछी की तरह है, उन्मुक्त आकाश में उड़ता घूमता है। खास करके मन तरुणाई के हो, युवा मन हो, तो हजार ख्याल ये मन बनता है और आकाश की ऊंचाइयों को छूता रहता है ये मन।

0: हेलो हजारीबाग में श्रोता हूँ। अब रुख करते हैं अखबार के पन्नों की ओर। अखबार के प्रथम पृष्ठ में आज क्या क्या छपा है, सबसे पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। और ज्यादातर खबरें राजनीतिक है और जो सरकारें गठित हो रही हैं उससे जुड़ी हुई खबर है। जैसे दैनिक हिंदुस्तान के प्रथम पृष्ठ का ये बैनर हेडलाइन है, ये खबर है, शुभेंदु संभालेंगे बंगाल की सत्ता, विजय के राजनीतिक तिलय का रास्ता भी साफ, ये तमिलनाडु की खबर है। शुभेंदु ही होंगे अधिकारी, पश्चिम बंगाल विधायक दल के ने चुना नेता, राज्यपाल से मिलकर पेश किया सरकार बनाने का दावा। कैबिनेट विस्तार के बाद दो डिप्टी सीएम बनाए जाने की भी चर्चा। इसके अलावा दैनिक भास्कर की खबर है, शुभेंदु बंगाल के अधिकारी, अमित शाह ने कहा 8 प्रस्ताव मिले थे, सभी में एक नाम था शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु आज बंगाल के नवे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, पीएम भी पहुंचेंगे। इसके अलावा दैनिक जागरण की खबर हम बता दें, वो दैनिक जागरण ने भी प्रमुखता से इस खबर को प्रथम पृष्ठ में प्रकाशित किया, तस्वीरों के साथ प्रकाशित किया, सभी अखबारों में तस्वीरें प्रकाशित की गई है। बंगाल में शुभेंदु भाजपा के पहले अधिकारी, अमित शाह की मौजूदगी में चुना गया भाजपा विधायक दल का नेता, आज शपथ ग्रहण, प्रधानमंत्री मोदी, 21 राज्यों के मुख्यमंत्री, कई हस्तियां बनेंगे गवाह, शपथ से पहले गूंजेगा रविन्द्र संगीत। और ये मतलब सभी प्रमुख जो अखबारें हैं उसमें इस खबर को बहुत ही अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और एक और खबर जो बहुत ही प्रमुखता से अखबारों ने प्रथम पृष्ठ में प्रकाशित किया है उसकी भी चर्चा हम चाहते हैं कि आपके साथ जरूर करें। ये खबर है, जैसे हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर दोनों में ये खबर प्रकाशित हुई है, सीएम ने दिया था कमेटी बनाने का आश्वासन, जेटेड भाषा विवाद सुलझाने के लिए मंत्रियों की कमेटी गठित। ये दैनिक भास्कर ने इस शीर्षक से अपना खबर प्रकाशित किया है। अखबार लिखता है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट नियमावली से जुड़े भाषा विवाद को सुलझाने के लिए मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर समिति के समन्वयक बनाए गए हैं। वहीं श्रम उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद और नगर विकास आवास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। यह समिति जेटेट नियमावली में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा को शामिल या विलोपित करने में राज्य सरकार को अनुशंसा करेगी। अखबार आगे लिखता है कि अधिसूचना के मुताबिक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग समिति के लिए नोडल विभाग के रूप में काम करेगा। यह समिति को अभिलेख आदि उपलब्ध कराएगा। यह समिति मामलों का अध्ययन करने के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद सरकार इस मामले पर फैसला लेगी। गौरतलब है कि जेटेट नियमावली में मगही, भोजपुरी और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल करने का सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने विरोध किया था। तो ये खबर दोनों अखबारों ने प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। तो ये थी कुछ एक प्रमुख खबर प्रथम पृष्ठ की। आगे कुछ और खबरें लेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस खूबसूरत संगीत का आनंद उठाते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: यूं ही तुम

श्रोताओं, जी दलित महमूद की पुण्यतिथि है, वही दलित महमूद जिनकी थरथराती हुई आवाज की थिरकन आज भी लोग महसूस करते हैं। और हिंदी सिनेमा की बात करें, खास करके पुराने गीतों की बात करें, तो जैसे जैसे साल दर साल बीतता चला जाता है, गाना उतना

मंगेशकर ने अपनी जादुई आवाज में अमर बना दिया वो गाना। और हम आपको बता दें कि राजेंद्र किशन के कलम से निकला वो कालजाई गीत, जिसके धुन ललित सलील चौधरी ने तैयार की थी, तलत महमूद और लता मंगेशकर की जादुई आवाज से सजाया यह कालजाई गाना सुनील दत्त और आशा पारेख पर फिल्माया गया था। 1961 ईस्वी में आई थी फिल्म छाया। और इस सुपरहिट सॉन्ग की कई दीवाने आज भी हैं जो सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, और ये गीत उसी तरह से असर भी करता है।

श्रोताओं, 6.5 दशक पुराना गीत आप सुन रहे थे। इस गीत की शब्द रचना, संगीत और जिन कलाकारों पर इसे फिल्माया गया है उसका उदाहरण बहुत कम मिलता है देखने सुनने में। इतने अतीत के इस गीत की बात करें तो गीत भले ये गीत पुराना हो लेकिन जज्बात आज भी नया है। चलिए।

अतीत की बात चली है तो थोड़ा अतीत के पन्नों की ओर लौट कर चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं अतीत के पन्नों की ओर। आज की तारीख के साथ जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है जुड़ी हुई है, जो घटनाएं जुड़ी हुई है उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। 1386 ईस्वी की बात करते हैं, इंग्लैंड और पुर्तगाल के बीच विंडसर की संधि हुई थी। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे पुराने राजनयिक गठबंधनों में से ये एक है। क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में तो हम सभी जानते हैं, एक यात्री थे, बहुत ही लोकप्रिय यात्री थे। अपनी चौथी और अंतिम यात्रा आज ही के दिन स्पेन से शुरू की थी, तारीख 9 मई 1502 ईस्वी। 9 मई 1540 की बात थोड़ी कर लेते हैं, मेवाड़ के शासक और महान योद्धा महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ के दुर्ग में जन्म हुआ था। 1653 ईस्वी आगरा में ताजमहल का निर्माण 22 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद पूरा हुआ था, तारीख 9 मई 1653 ईस्वी। आज ही के दिन 22 वर्षों के परिश्रम के बाद ताजमहल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। मुंबई में पहली बार घोड़े से खींची जाने वाली ट्राम की शुरुआत हुई थी 1874 ईस्वी में। 1946 ईस्वी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में गोवा में पुर्तगाली शासन के खिलाफ पहला सत्याग्रह शुरू हुआ था। 1960 ईस्वी की बात कर लेते हैं, अमेरिका में पहली बार गर्भनिरोधक गोली को वैधानिक मंजूरी मिली थी। 1998 ईस्वी में प्रसिद्ध गजल गायक अभिनेता तलत महमूद का निधन हुआ था, 9 मई 1998 ईस्वी। आज की तारीख में तलत महमूद का गीत भी हम आपको सुनवा रहे थे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि गोपाल कृष्ण गोखले, आप जानते हो कि महान स्वतंत्रता सेनानी, 1866 ईस्वी में आज के दिन का जन्म हुआ था। रविंद्र त्यागी, हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार माने जाते थे, 1930 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1986 ईस्वी में तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पर्वतरोही, तो आज के तारीख के साथ ही इनका संबंध है। विजय दिवस नाजी जर्मनी पर जीत के याद में मनाया जाता है, यह रूस में मनाया जाता है। यूरोपीय दिवस है, यूरोपीय संघ 1950 ईस्वी में सुमन घोषणा की याद में यूरोपीय दिवस मनाया जाता है। जैसा कि हम कह रहे थे कि आज प्रसिद्ध गजल गायक अभिनेता तलत महमूद का निधन आज ही के दिन 1998 ईस्वी में हुआ था, तो एक खूबसूरत संगीत उनके नाम पर हम और आपको सुनवा रहे हैं।

और कुछ एक और खबरों के जो आज प्रकाशित हुए हैं वो हम आपके साथ साझा कर दें। ये प्रभात खबर का राजपाठ प्रभात पन्ना है और इसमें जो पहली खबर है वो हम आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट ने 10 सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का दिया आदेश। 20,000 पारा शिक्षक होंगे स्थायी, पर जे टेट पास है मात्र 8,000। अखबार लिखता है कि राज्य में वर्तमान में सहायक आचार्य के लगभग 40,000 पद रिक्त हैं। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली के अनुसार प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति के 50% पद पारा शिक्षक के लिए आरक्षित है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 20,000 पारा शिक्षक सहायक आचार्य के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। राज्य में सहायक आचार्य के जितने पद पारा शिक्षक के लिए आरक्षित हैं उसके आधे ही झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं है। और इससे जुड़ी हुई दूसरी बातें भी अलग अलग हवाले से खबरें प्रकाशित की गई। कुछ एक शीर्षक हम आपके साथ साझा करते हैं। रांची, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर में बन सकते हैं टेक्सटाइल पार्क, मिलेगा रोजगार। टेक्सटाइल सचिव और मुख्य सचिव के बीच हुई बैठक। 450 रुपये सब्सिडी देने से परेशानी, हर वर्ष 1,934 करोड़ का बोझ, वित्त मंत्री ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। सीसीएल 270 से 310 रुपए तक देंगे स्कॉलरशिप। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि एक और खबर है, छूटे इलाकों में जल्द पहुंचेगा पानी, बनेंगे जल मीनार। जुपनी भवन में सभागार में नगर निकायों की योजनाओं की हुई समीक्षा। अखबार लिखता है कि नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने सभी नगर निकायों को निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि निकायों के कुछ क्षेत्रों में अभी भी पेयजल आपूर्ति योजना से छूटे हुए हैं। निकाय ऐसे क्षेत्रों की सूची बनाकर विभाग को तत्काल उपलब्ध कराए, उन क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाकर जल्द से जल्द पानी की आपूर्ति शुरू की जाएगी। तो ये थी कुछ एक खबरें। एक और खबर है शिक्षा जगत से जुड़ी हुई है, AI एकीकरण विषय पर विनोबा भावे विश्वविद्यालय और BHU का कार्यक्रम एक से। विनोबा भावे विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय संकाय विभाग विकास के लिए संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसकी औपचारिक तैयारी शुरू कर दी गई है। 1 से 10 जून तक BHU के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन और विनोबा भावे विश्वविद्यालय के सहयोगी से इक्विटी केंद्रित उच्च शिक्षा, भारतीय ज्ञान परंपरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एकीकरण विषय पर संयुक्त रूप से संकाय विकास कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा सुधार में भारतीय ज्ञान परंपरा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ना है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और इसका लक्ष्य जिलों में समता, संवेदनशीलता, शैक्षणिक परिस्थिति की तंत्र का निर्माण करना है। तो ये थी कुछ प्रमुख खबरें।

श्रोताओं को पता है कि ये पीपल, बरगद और नीम जैसे बड़े पेड़ पक्षियों के लिए प्राकृतिक होटल हैं, तो पुराने पेड़ तो बिल्कुल नहीं काटे जाने चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना। अगर घोंसले हैं उस पर तो इसकी सुरक्षा का दायित्व भी हम पर है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। हमारी लापरवाही कई बार हो जाती है, जैसे बिजली के तार और इंसानी लापरवाही, ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे पक्षियों के जीवन पर खतरा पैदा हो जाता है। तो कुछ सावधानियाँ, कुछ चीज़ें हमें ज़रूर बरतनी चाहिए, खास करके जब घर, बालकनी या छत पर मिट्टी या लकड़ी के घोंसले बहुत सारे लोग आजकल लगाते हैं, जिसमें गौरैया, बुलबुल, मैना आसानी से इसका इस्तेमाल भी करते हैं। और एक बात है, जैसे निर्माण कार्य तो आज की पहचान है, तो निर्माण कार्य करते समय जब भी है तो पेड़ों के चारों ओर जगह अवश्य छोड़े। हालांकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 2 से 3 मीटर की जगह हमें जरूर छोड़नी चाहिए, और खास करके गर्मी के दिनों में छत पर चौड़े उथले बर्तन में रोज साफ पानी रखा जा सकता है। अगर बर्तन गहरा हो तो बीच में पत्थर रख दे ताकि उसमें चूजे डूबे नहीं। और एक और बात है, जैसे रासायनिक कीटनाशक और खरपतवार नाशक का जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कम हो। हम जानते हैं आजकल कि हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि ये जो कीटनाशक है इससे कीड़े मरते हैं और यही कीड़े पक्षियों का खाना भी हैं। तो इस तरह कुछ बातों का हम ध्यान रख करके पक्षियों के लिए एक आदर्श वातावरण तैयार कर सकते हैं।

0: तो श्रोताओं, इसी खूबसूरत से गीत के साथ आज के इस प्रोग्राम से सूरज को अनुमति दीजिए। नमस्कार। श्रोता भी सुन रहे थे हेलो हजारीबाग, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम आपको शामिल करेंगे अपने विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों में।
1: लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवा रहे हैं तलत महमूद की आवाज में ये गजल।

यह आवाज थी तलत महमूद की और कलाम था एहसान मिरिठी का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये अगली गजल।

0: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी की लिखी गजल अभी आपने सुनी। स्वर लता मंगेशकर का था और ये फिल्म थी गजल।
1: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
2: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए, ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उस तो आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है, एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

सुरैया की आवाज थी और फिल्म का नाम था मिर्जा गालिब। गुलाम मोहम्मद की संगीत निर्देशन में ये गालिब की रचना थी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल। खय्याम साहब की संगीत निर्देशन में बशर नवाज का लिखा कलाम है ये, आवाज भूपिंद्र की और फिल्म का नाम है बाजार।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़न से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जान

पेशी खिदमत है कार्यक्रम की अगली गजल। शहरयार साहब की ये रचना है, सुरेश वाडेकर की आवाज में फिल्म गमन से हमने ली है। संगीतकार हैं जयदेव।

सुरेश वाडेकर की आवाज में अभी आपने फिल्म गमन की ये गजल सुनी, और इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म शंकर हुसैन की ये गजल सुनवा रहे हैं, रचना जानिसार अख्तर की और संगीत खयाम साहब का।

लता मंगेशकर की गाये फिल्म शंकर हुसैन की इस गजल के साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। और आज दोस्तों हम आपको बता दें, आज है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और इसका उद्देश्य है प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और उनके आवासों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। यानी जो 2026 की थीम है वो है हर पक्षी मायने रखता है, आपका अवलोकन महत्वपूर्ण है। तो ये जो पक्षी हैं वो वाकई हमारे जीवन में, इस समाज में, इस संसार में, इस दुनिया में बहुत मायने रखते हैं। और फिल्मी दुनिया में भी गीतकारों ने, फिल्मकारों ने इन पक्षियों को अपनी फिल्मों में स्थान दिया है। तो आज मैटिनी शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही खूबसूरत मधुर गीत जहाँ कहीं न कहीं किसी न किसी पक्षी का जिक्र है।

है और पुरानी यादों की दर्द को कोयल की आवाज के साथ जोड़ता है। जैसे कि देखिए ना, कोयल की बोली हमें सुकून देती है ना। कोयल की जो मिठास है वो दिल को भाने वाली होती है। लेकिन जब आप परेशान होते हैं, प्रेम में डूबे होते हैं, विरह में होते हैं, तो ये आवाज भी हमें खलती है। बस यहाँ नायिका की यादों को जगाकर उसे शोर के रूप में ये कोयल की आवाज नायिका को प्रतीत हो रही है। तो ये गीत जो है फिल्मों के शुरुआती दौर के सबसे भावपूर्ण गीतों में से एक माना जाता है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

शमशाद बेगम की आवाज में अभी आपने फिल्म आग का ये गीत सुना। गीतकार थे बहजाद लखनवी और संगीतकार थे राम गांगुली। हमारी फिल्मों में हमारे गीतकारों ने जिन गीतों को लिखा उसमें पक्षियों को कई बार प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। एक ऐसा ही गीत है फिल्म माया का, लता मंगेशकर ने इसे आवाज दी है। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और सलील चौधरी की धुन है। वियोग अकेलेपन और पुरानी यादों के साथ साथ एक नई शुरुआत को दर्शाता है ये गीत। दोस्तों आपने फिल्म देखी होगी माया, जहां माला सिन्हा और देवानंद पर ये गीत फिल्माया गया है और माला सिन्हा और देवानंद की जो जोड़ी है बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ गीत गहरे दुख और अकेलेपन को दर्शाता है और पंछी यानी प्यार या उम्मीद जिसे हम कहते हैं वहां से जाने को कहता है कि

जहाँ बाहर है वहाँ तुम चले जाओ, जहाँ खुशियाँ हैं वहाँ चले जाओ पंछी, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ दुख ही दुख है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म माया का ये खूबसूरत गीत।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्यों? क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
2: खत लिख दे।
3: जी हाँ, मनचाहे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे आज दोपहर 3 बजे। तो दोस्तों, मैटिनी शो में आज हम बात कर रहे हैं पंछियों पर, कि किन गीतकारों ने किन किन फिल्मों में इन पंछियों का सहारा लिया। 1950 की एक फिल्म है बाबुल, उस फिल्म का एक गीत आपको याद होगा, पंछी बन में पिया पिया गाने लगा। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है, एक अमर प्रेम गीत बन गया है, और इसे महान संगीतकार नौशाद साहब की धुन पर शकील बदायूं ने लिखा था और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी थी। ये गीत नायिका की पहली प्रेम की अनुभूति और उसके खिलखिलाते हुए मन की कोमल भावनाओं को दर्शाता है। मतलब इस गीत का जो मूल भाव है वो विरह या दर्द नहीं, बल्कि पहली बार हुए प्रेम का उत्साह और आनंद है। जब नायिका को अपने प्रिय से प्रेम हो जाता है तो उसे पूरी प्रकृति में प्यार का संगीत सुनाई देता है। और जहां तक बात है कि पिया पिया गाने लगा पंछी बन के मन, तो जहां तक हम समझते हैं गीतकार के लिखने का उद्देश्य रहा होगा कि इस गीत में पंछी को नायिका के मन की स्वतंत्रता और प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में गीतकार ने दर्शाया होगा कि जैसे जंगल में पंछी अपने साथी को पुकारता है, और पंछी के माध्यम से कवि ने यह दर्शाया है कि प्रेम में बंधने के बाद नायिका का मन, जो पंछी रूपी मन है, वो सांसारिक बंधनों को छोड़कर अपने प्रेमी की दुनिया में उड़ जाना चाहता है। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है बाबुल।

जी तो दोस्तों मैटिनी शो में अब हम आगे बढ़ते हैं और फिल्म चोर मचाए शोर जो कि 1974 की फिल्म है उसका एक गीत है, कौन सा बताइए।

जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना, एक बेहद प्यारा और रोमानी युगल गीत है। और इस सदाबहार गाने में जो नायक और नायिका हैं, शशि कपूर और मुमताज के बीच के प्यारे पलों को दिखाया गया है। और जहां तक गीत की बात है, लगता है कि ये गीत रूपक के माध्यम से कुछ बातें कहता है। जैसे कि गाने में तोता और मैना दो अलग अलग डालियों पर बैठे हैं, जो नर और मादा के एक प्रतीकात्मक रूप हैं। और ये इस बात पर दर्शाता है कि भले ही प्यार में आप दूर हों, लेकिन जो प्यार है, बीच का प्यार है, वो अटूट और सच्चा होता है। गीतकार ये कहना चाहता होगा कि भले ही प्रेमी प्रेमिका तोता मैना के रूप में दूर दूर बैठे हों, लेकिन प्रेमी प्रेमिका के बीच जो प्यार है वो अटूट और सच्चा है। और तोता और मैना के उदाहरण से गीतकार ये समझाना चाहते हैं कि दो लोगों का जीवन एक दूसरे के साथ ही संपूर्ण होता है, और एक के बिना दूसरे की कल्पना अधूरी लगती है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। आवाज़ें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मैटिनी शो की आखिरी पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया का गीत। प्यार, वियोग और संदेश भेजने की जिस तरह से मासूम भावना को दर्शाता हुआ ये गीत है कबूतर जा जा जा। और ये गीत मुख्य रूप से नायिका द्वारा नायक को अपने दिल की बात पहुंचाने की तड़प को दिखाता है। नायिका एक कबूतर को अपना प्रेम दूत बनाती है और उसे अपने प्रेमी के पास पहले प्यार की पहली चिट्ठी ले जाने को कहती है। आइए सुनते हैं असद भोपाली का लिखा ये गीत जिसे संगीत में ढाला है राम लक्ष्मण ने।

0: ये था आज का मैटिनी शो। आप सुन रही हैं विविध भारती। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिकेट परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करीब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब।
1: अब तक दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टूडू सहित कई मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 वैशाख गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। लेफ्टिनेंट जनरल एसएन राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है।

0: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशक के लिए विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान 4थे और गुजरात 5वें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश और कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज तलत महमूद साहब की याद का दिन है, तो इस कार्यक्रम में आज हम उन्हीं को याद कर रहे हैं।

सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में अभी आपने राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत सुना। स्वर तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। फिल्म का नाम था छाया। कार्यक्रम का अगला गीत तलत महमूद और लता मंगेशकर का ही गाया हुआ। ये फिल्म है उसने कहा था। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं सलील चौधरी।

कार्यक्रम का अगला गीत तलत महमूद की आवाज में फिल्म दाग से सुनिए। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे मातरम सुजला
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में अभी आपने शकील बदायूनी का लिखा ये गीत सुना। स्वर थे तलत महमूद और शमशाद बेगम की। फिल्म का नाम था बाबुल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: चलता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्ण।

लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सुजाता से सुनिए, आवाज तलत महमूद की। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

कार्यक्रम में अब सुनिए फिल्म फुटपाथ का गीत। तलत महमूद ने इसे आवाज दी है। सरदार जाफरी की रचना और खयाम साहब की धुन है।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सबके नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनका प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर
2: तलत महमूद की आवाज में फिल्म संग दिल का गीत सुनिए, राजेंद्र कृष्ण के बोल और सज्जाद हुसैन का संगीत।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा गीत सुनिए। युगल स्वर तलत महमूद और आशा भोंसले की ये फिल्म है बूट पॉलिश।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की इतनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जान

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म टैक्सी ड्राइवर से हमने लिया है। इस गीत को आवाज तलत महमूद ने दी है, रचना साहिर लुधियानवी की और धुन सचिन देव बर्मन की।

कार्यक्रम में आप सुनिए रवि के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन की रचना, तलत महमूद की आवाज है, फिल्म का नाम एक साल।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम मोहम्मद के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का लिखा गीत। तलत महमूद की आवाज है और ये फिल्म है दिले नादा।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम सुरीला सफर बस थोड़ी देर में।

तो लीजिए सुनिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सुरीला सफर के सभी सुनने वालों को आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे और हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए यानी सुरीला सफर करने के लिए तैयार बैठे हैं। सफर में हमारे साथ है ना आप? तो इस सफर में चलने की तैयारी आपने कर ली है हमेशा की तरह।

रुकिए रुकिए, पहले आज की इबारत तो पढ़ लीजिए। पढ़ ली आपने? अच्छा, जो लोग फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने तो हमारी इबारत पढ़ ली होगी, लेकिन वो दोस्त, वो श्रोता जो फेसबुक पेज से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें हम बता दें आज की इबारत है, एक बेनाम जिंदगी जीते हुए आदमी बेशक मुख्य धारा से दूर हो सकता है, पर किसी की आत्मीय पुकार उसमें मोह का बीज पैदा कर सकती है, तब वो मुसाफिर पुरानी गली छोड़ जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते हुए सफलता की चोटी छू सकता है। बहुत ही सीधी साधी इबारत है आज की, है ना? लेकिन हमारे श्रोता परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए हमने आज ये कोशिश की है कि आज इस इबारत में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिन पर आधारित है हमारे आज के गीत, उनका जिक्र भी हम कर देते हैं। हाँ, एक खुशी की बात है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने वो शब्द लिखे भी हैं जो आज की इबारत में हमने रखे हैं। उन सभी श्रोताओं को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज इस इबारत में जो शब्द हैं जिन पर हमारे गीत केंद्रित हैं, वो है आदमी, मुसाफिर, बेनाम, चिड़िया, पुकार, धारा, मोह, बीज, चोरी और गली। जी, तो इन शब्दों को सुनने के बाद आप टटोलिए अपनी प्लेलिस्ट की कहीं आपने कुछ गीतों को चुनने में गलती तो नहीं कर दी। हालांकि आज बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे ऐसे गीत हमारे श्रोताओं ने चुने हैं जो हमारी प्लेलिस्ट से यानी हमारी पसंद से मेल खाते हैं। हम शब्दों को एक बार फिर दोहरा देते हैं। आज के शब्द हैं आदमी, मुसाफिर, बेनाम, चिड़िया, पुकार, धारा, मोह, बीज, चोरी और गली। हमारी पसंद के गीतों से आपकी पसंद कुछ कुछ आज मेल खा रही है, और यही एक शुरुआत है इस कार्यक्रम की कि आपने हमारे कार्यक्रम को सुनना, समझना, पसंद करना शुरू कर दिया है। तो आज का सफर शुरू करते हैं। इससे पहले एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि आज इस सफर में एक प्रयोग और करने वाले हैं हम। हाँ, वो प्रयोग सीधा साधा है, वो ये कि आज जितने भी गीत हमने चुने हैं वो फिल्मी पर्दे पर किसी गायक या गायिका ने उन गीतों को नहीं गाया है, बल्कि उनके सहायक कलाकारों ने, डांसर्स ने बैकग्राउंड में फिल्माए गए हैं वो गीत, और ये गीत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी हुए हैं। आप समझ गए ना हमारा मतलब? मतलब फिल्मी पर्दे पर उन गीतों को, जो गीत आज हमने चुने हैं, किसी नायक या नायिका द्वारा उनका लिप मूवमेंट नहीं हुआ है, उन्होंने होंठ नहीं हिलाए हैं उन गानों पर, बल्कि साइड आर्टिस्ट जो होते हैं और डांसर्स जो होते हैं या बैकग्राउंड में उन गीतों को फिल्माया गया है, और वो गीत बहुत बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर इस गीत के साथ। ये गीत यकीनन आपकी प्लेलिस्ट में है, हमने देख लिया है।

0: से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में पहली बार बनी भाजपा की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। जेटेट भाषा विवाद सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने बनाई 5 मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी। भोजपुरी, मगही और अंगिका पर जल्द होगा फैसला। प्रदेश कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह शांत करने की कवायद तेज। स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी और पूर्व सांसद धीरज साहू ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से की लंबी चर्चा। पेयजल आपूर्ति में लापरवाही पर एजेंसियों का टेंडर होगा रद्द। नगर विकास सचिव सुनील कुमार ने सभी निकायों को दिए निर्देश। और रांची समेत राज्य के 5 जिलों में आज ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। कोडरमा के सतगावा में वज्रपात से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत। और अब समाचार विस्तार से। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में बंगला भाषा में शपथ ली। बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने शुभेंदु के अलावा 4 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्र पाल, अशोक कीर्तनिया और निशित प्रमाणिक के नाम शामिल हैं। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। शपथ के बाद शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जेटेट परीक्षा में भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी भाषाओं को लेकर जारी विवाद के बीच राज्य सरकार ने विसंगतियों पर विचार करने के लिए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस कमेटी में कैबिनेट मंत्री संजय प्रसाद यादव, दीपिका पांडे सिंह, योगेंद्र प्रसाद और सुदिव्य कुमार को शामिल किया गया है। झारखंड की राजनीति में गठबंधन के भीतर चल रही खींचतान के बीच विधायक सरयू राय के बयान ने सरगर्मी बढ़ा दी है। सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुझाव दिया है कि वे कांग्रेस माइनस सरकार बनाने पर विचार करें। उन्होंने तर्क दिया कि इससे सरकार की कार्यप्रणाली और छवि में सुधार हो सकता है।
1: मैंने उनसे जिक्र किया कि सुना है कि आप भाजपा के साथ सरकार बना रहे हैं। उन्होंने इनकार किया और कहा कि मीडिया में कई तरह से बातें आ जाती हैं। मैंने कहा कि एक विकल्प उन्होंने भी सुझाया है, विचार करें। तो उन्होंने कहा कि अभी तो जैसा स्थिति जैसी है वही बढ़िया से चले, हम सभी की कोशिश है।
0: हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया है कि फिलहाल राज्य सरकार में किसी भी प्रकार के बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि राज्य में गठबंधन पूरी तरह एकजुट है।
2: सलाह मानने वाला व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि मुफ्त की सलाह ठीक नहीं होती, या सलाह कोई दिया है उसको अभी रिजर्व रखते हुए काम करना है। हम समझते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी संजीदा हैं और जिस बात को लेकर सरकार बनी है वो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति को केंद्रीय बिंदु में रख के सरकार बनी।
0: कानून व्यवस्था के सवाल पर विपक्ष के आरोपों पर पलटवार करते हुए सत्ताधारी दल झामुमो ने स्पष्ट किया है कि हेमंत सरकार अपराधियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं देती है और कानून अपना काम पूरी सख्ती से कर रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मिथिलेश ठाकुर ने कुख्यात अपराधी प्रिंस खान की सक्रियता पर कहा कि पुलिस और खुफिया एजेंसियां उसके नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी हैं और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।
3: झारखंड में जीरो टॉलरेंस की जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार है, ये बहुत दिन तक ऐसे अपराधी बच नहीं पाएंगे और जब पुलिस के शिकंजे में आएंगे तो जेल की सलाखों के पीछे निकलेगी। ये अपराधियों को संरक्षण देना तो ये भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में होगा, ऐसी चीजें भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांतों में होगा। अब इतना दिन नहीं खराब आ गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा का और इंडिया गठबंधन का कि अपराधियों को संरक्षण दे।
0: झारखंड कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह को शांत करने की कवायद तेज हो गई है। पूर्व सांसद धीरज साहू और स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने कल रांची में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात के बाद वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि पार्टी के कुछ फैसलों से वे आहत जरूर हैं, लेकिन संगठन के हित में 18 मई तक कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वे अपनी बात पार्टी के प्रदेश प्रभारी के राजू के समक्ष विस्तार से रखेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया। दो दिनों तक चलने वाले इस उच्च स्तरीय शैक्षणिक समागम में देश के लगभग 200 प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ और सैन्य क्षेत्र के डॉक्टर हिस्सा ले रहे हैं। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का आयोजन आर्मी हॉस्पिटल और ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने सभी नगर निकायों को गर्मी के दौरान निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि पानी की आपूर्ति में लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों को न केवल दंडित किया जाएगा बल्कि उनका अनुबंध भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। बैठक में जल मीनारों की मरम्मत, होल्डिंग टैक्स वसूली और बस स्टैंडों के विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। प्रधान सचिव ने शहरों में कचरा उठाव और साफ सफाई की नियमित मॉनिटरिंग पर जोर देते हुए सामुदायिक भवनों के निर्माण में तेजी लाने को कहा। लौह नगरी जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की 3 गाड़ियां बरामद की हैं। एएसपी ऋषभ त्रिवेदी ने बताया कि जांच में पता चला है कि यह गिरोह सुनसान जगहों पर गाड़ियों के पार्ट्स अलग कर उन्हें बेचने का धंधा करता था।
4: तो मुख्य अभियुक्त 4 पकड़े गए, हम लोग उसमें अनुसंधान कर रहे हैं। चोरी करके ये लोग गाड़ी का पुर्जा तोड़ते थे कि गाड़ी का वो कभी हैंडल निकालेंगे, कभी पहिया निकालेंगे। वही हम लोगों ने जब उनसे कड़ी पूछताछ की तो यह पता चला कि वो गाड़ी के जो पुर्जे निकालते थे उसको कई सारे पुर्जों में बेचा जाता है।
0: राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने का भाव 1,40,500 रुपए है जबकि चांदी की कीमत 2,64,000 रुपए प्रति किलो है। कोडरमा के सतगावा में कल देर रात वज्रपात से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। लोहे की खिड़की के जरिए बिजली के कमरे के अंदर गिर जाने से यह हादसा हुआ। इधर मौसम विभाग ने आज रांची, हजारीबाग और बोकारो समेत 5 जिलों में ओलावृष्टि और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में पहली बार बनी भाजपा की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। जेटेड भाषा विवाद सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने बनाई 5 मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी, भोजपुरी, मगही और अंगिका पर जल्द होगा फैसला। प्रदेश कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह शांत करने की कवायद तेज, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और पूर्व सांसद धीरज साहू ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से की लंबी चर्चा। पेयजल आपूर्ति में लापरवाही पर एजेंसियों का टेंडर होगा रद्द, नगर विकास सचिव सुनील कुमार ने सभी निकायों को दिए निर्देश। और रांची समेत राज्य के 5 जिलों में आज ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। कोडरमा के सतगावा में वज्रपात से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
5: रंग भर देती है। ऐसी ही भावनाओं का प्रतिबिंब आज के शब्द गीतमाला में भी नजर आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के गीत शायद इस प्रकार से हो सकते हैं, आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है, आप भी सुनिएगा और इस सुरीले सफर में हमारे साथ आपको बने रहना है, ये देखने के लिए, ये सुनने के लिए कि आपकी पसंद हमारी पसंद से कितना मेल खा रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपका सुरीला सफर तय करने के लिए मैं आ गई हूँ, बहुत अच्छी इबारत लिखी है और इस इबारत से आपको कुछ गीत आए हैं याद आ गए हैं जिसका जिक्र आपने हमें किया है। तो आपको बताना क्या है कि फिल्म आजाद का ये जो गीत है इसमें ये नृत्य किन दो नर्तकियों ने किया है, इनके नाम आपको फटाफट हमें बताने हैं, फिर हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत और इस गीत को भी आप महसूस करेंगे कि ये किसी नायक या नायिका ने नहीं इसे फिल्मी पर्दे पर गाया है बल्कि समूह स्वर में ये गीत गाया गया है। आपके लिए सवाल ये है कि फिल्म किस्मत का ये गीत किसने गाया है, हम आपको बता देते हैं। इस गीत के गीतकार हैं कवि प्रदीप और संगीत दिया है अनिल विश्वास ने। आइए सुनते हैं ये गीत। अपने जमाने का बेहद मशहूर गीत, आपको इनके गायक कलाकारों के नाम बताने हैं। और इस गाने से क्या शब्द निकलता है, चोटी।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत दार्शनिक तथ्यों को उजागर करती है। कहा गया है कि निराश में जीवन में एक क्षीण प्रेम पूर्ण रोशनी मार्ग प्रशस्त कर देती है और मन बरबस आकृष्ट हो उम्मीद के साथ उस तरफ गतिमान हो उठता है। अपनी दृढ़ निश्चय संकल्प संग हासिल कर ही लेता है। इबारत गंभीर है मगर बहुत रोचक। संगीतमय प्रस्तुति का इंतजार रहेगा। इस कार्यक्रम का सुंदर पक्ष है कि मित्रों द्वारा प्रेषित कमेंट जो ज्ञानवर्धक और तथ्यपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आप जो इबारत लिखते हैं बहुत ही शानदार तरीके से कहते हैं और उसे पढ़ने में हमें भी बहुत मजा आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साधारण मनुष्य के सफल होने का राज किसी जादुई फार्मूले में नहीं बल्कि उन छोटी छोटी आदतों और दृष्टिकोणों में छिपा है जिनमें कोई भी अपना सफर शुरू कर सकता है। सफलता अक्सर असाधारण काम करने से नहीं बल्कि साधारण कामों को असाधारण निरंतरता के साथ करने से मिलती है। सफल और असफल व्यक्ति के बीच में सबसे बड़ा अंतर निरंतरता का ही है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने बहुत सारे गीतों को लिखा है कि ये गीत शायद आज की प्लेलिस्ट में शामिल हो सकते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं ये कार्यक्रम बहुत ही रोचक लग रहा है। मैं उत्सुक हूं कि आप लोग कैसे सोशल मीडिया के जरिए श्रोताओं को जोड़ेंगे और कौन से सुरीले गाने सुनवाएंगे। तो आप ये कार्यक्रम सुनिए और आपको पता लगेगा कि कैसे हम सोशल मीडिया से जुड़ते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों का फेसबुक से परिवार जुड़ा हुआ है। आप भी उस परिवार से जुड़िए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है ये और इस कार्यक्रम को समझने में हालांकि थोड़ा वक्त लग रहा है लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत में इतनी ताकत होती है कि आसमान से तारे भी नाचते हुए जमीन पर उतर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बेशक आत्मा की पुकार बड़ी शक्तिशाली होती है, सफल व्यक्ति वही होता है जो इस पुकार को सुनकर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलकर अपनी मंजिल को पाता है और आपके साथ ये सफर भी सुरीला ही होने वाला है। बिल्कुल सुरीला होगा अगर आप इस सफर में कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलेंगे। तो अब दो सवाल आपके लिए है ना। पहला यही कि फिल्म आजाद का जो नृत्य गीत अभी आपने सुना वो किस पर फिल्माया गया था, नृत्य जोड़ी कौन थी, और फिल्म किस्मत का जो गीत अभी आपने सुना ये हिंदुस्तान हमारा है ये गीत, उसमें चोटी शब्द से ये गीत आ गया था, इसमें गाने वाले कलाकार कौन थे। और बढ़ते हैं अब आगे। वही गीत हमने चुना है जो फिल्मी पर्दे पर कोई नायक या नायिका नहीं गा रही बल्कि अन्य कलाकार गा रहे हैं। फिल्म का नाम है तीसरी कसम। मन्ना डे और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र की बोल और शंकर जयकिशन की धुन।

0: बैठी बदजवा तो कन्या,
1: उड़ बैठी बदजवा तो कन्या,
0: उड़ उड़ बैठी बदजवा तो कन्या। अरे कपड़ा के सब

0: बैठी पनवड़िया तो कन्या,
1: उड़ बैठी पनवड़िया तो
0: कन्या, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, अरे बीड़ा के सब रस ले लिया।

जी तो हमारे श्रोताओं ने सही जवाब देने शुरू कर दिए हैं। आपने लिखा है कि फिल्म आजाद का ये गीत जो है दो अभिनेत्रियों डांसर पर अभिनेत्रियां जो डांसर अभिनेत्रियां थी उन पर फिल्माया गया, यानी जो डांसर्स थी नृत्य जोड़ी थी उन पर फिल्माया गया था, वो थी सई और सुब्बुलक्ष्मी। बिल्कुल सही कहा है आपने, आपका जवाब और कई सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि नृत्य जोड़ी थी सई और सुब्बुलक्ष्मी की।

और हमारा दूसरा सवाल था कि फिल्म किस्मत में जो गीत आपने सुना, दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, इस गीत में गाने वाले कलाकार कौन थे? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है हमारे श्रोताओं ने कि आवाजें प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी की थी जिन्होंने इस गीत को गाया था, और साथ में साथी भी थे जिन्होंने इस आवाज को मिलजुल कर आवाज दी थी, यानी प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी ने इस गीत को गाया था, दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि सही जवाब आपने हमें दे दिया है।

पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया करते थे। अच्छा, आपने पूरी कविता लिख डाली है, आप वही कवि श्रोता हैं हमारे। एक बेनाम जिंदगी जीता हुआ वो आदमी भीड़ में रहकर भी भीड़ से दूर था, चेहरे पर खामोशी की धूल जमी थी और दिल जाने कितने दुखों से चूर था। न कोई अपना उसे आवाज देता, न किसी चौखट पर उसका इंतजार था। वो चलता रहा उस उम्र भर में यूं ही तन्हा, जैसे रेगिस्तान में भड़का कोई गुब्बार था। पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया करते थे, रातों की चुप्पी में उसके आंसू तगे से लिपटकर सोया करते थे। फिर एक दिन किसी आत्मीय पुकार ने उसके सुने मन को छू लिया, जैसे बरसों से की धरती पर पहली बारिश ने प्यार लिख दिया। एक आवाज थी जिसमें अपनापन था, एक नजर थी जिसमें श्रद्धा का उजाला था। उसने पहली बार महसूस किया वो भी किसी के लिए अनमोल निराला था। क्या बात है, वो मुसाफिर फिर मुड़ पड़ा जीवन की ओर, पुरानी गलियों को पीछे छोड़ आया, टूटे हुए विश्वास के टुकड़ों को जोड़कर अपने भीतर नया सूरज उगाया। दर्द अब भी था उसके सीने में, मगर आंखों में उम्मीद का दीप जलने लगा। जो आदमी खुद को खो चुका था, कहीं वो फिर से खुद से मिलने लगा। क्या बात है, और देखो जिसे दुनिया ने बेनाम कहकर ठुकराया, वही एक दिन की चोटी पर मुस्कुराया, क्योंकि प्रेम और विश्वास का एक छोटा सा बीज है, पत्थर दिल में भी जीवन उगा जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर कविता आप रचते हैं, आपको मैं सैकड़ों साधुवाद देती हूँ। एक श्रोता लिखते हैं कि वे इस सप्ताह में तीसरी बार दर्शन देने के लिए, सुरीली आवाज के लिए, मधुर वाणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया हमारी ड्यूटी है ना, आप इसे लिख लेते हैं कि क्या हुआ कब आने वाले, लेकिन हमारी ड्यूटी है, जब जब ड्यूटी लगेगी तब तब हमें तो आना ही पड़ेगा। अब ज्यादा तारीफ नहीं करूंगी अपनी, फिर हमारे श्रोता शिकायत करेंगे कि मंदाकिनी जी तो अपनी तारीफ में लगी रहती है। बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत प्यार बरसाया है, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। चलिए तो इस सुरीले सफर में आगे बढ़ते हैं। आज हमने उन गीतों को चुना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर किसी नायक या नायिका ने उन गीतों को नहीं गाया है, बल्कि उनके साइड आर्टिस्ट जो हैं या अन्य कलाकार जो हैं, उन्होंने इन गीतों को गाया है, या बैकग्राउंड गीत के रूप में ये गीत कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं। चलिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए लेकर आई हूँ। सलिल चौधरी का संगीत है, शैलेंद्र के बोल हैं, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है दो बीघा जमीन।

0: हमारे और भी श्रोताओं ने सही जवाब हमें दे दिया है। आप लिखते हैं कि सही और सुबह लक्ष्मी दो नर्तकियां हैं जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर नृत्य किया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो आपने गीत सुनवाया था हिंदुस्तान हमारा है, उसे आवाज दी थी अमीरबाई कर्नाटकी और खान मस्तान ने। जी, इसमें प्रदीप कुमार की आवाज है। प्रदीप जो हमारे गीतकार प्रदीप हैं, कवि प्रदीप हैं, उनकी आवाज है और उनका साथ अमीरबाई कर्नाटकी दे रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गुमनामी के अंधेरे में खुद को समेटे हुए व्यक्ति भले ही दुनिया की नजरों से उजल हो, लेकिन जब कोई निस्वार्थ प्रेम और अपनेपन से उसे पुकारता है तो उसके भीतर की सोई उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं। वह आत्मीयता उसके मन में जीवन के प्रति एक नया आकर्षण पैदा कर देती है। और आप लिखते हैं कि वही पथिक जो कल तक ठहर चुका था, अब अतीत की संगीन गलियों और निराशा को पीछे छोड़कर अटूट आत्मविश्वास के साथ नई राहों पर निकल पड़ता है। यही संकल्प और श्रद्धा उसे साधारण से असाधारण बनाकर सफलता के शिखर तक पहुंचा देती है। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि श्रद्धा और विश्वास जो शब्द है वो अत्यंत गहरे, सकारात्मक और भावनात्मक है, जो एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इन दोनों ही शब्दों में आदर और निष्ठा की भावना छुपी होती है। श्रद्धा मन का वो भाव है जिसमें मनुष्य अपने विचारों और कर्मों को किसी उच्चतर सत्ता, ईश्वर, गुरु या आदर्श को समर्पित कर देता है और उसमें ही अपनी भलाई समझता है। बहुत सुंदर आध्यात्मिक तरीके से आपने अपनी बात हमें रखी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि यूं ही कट जाएगा सफर, सुरीला सफर के साथ चलने से कि गीत नजर आएंगे इबादत को पढ़ने से। बिल्कुल, इबादत पढ़ी। और देखिए, आज तो बहुत सारे श्रोता हमारी पसंद के करीब आ गए हैं। धीरे धीरे ऐसे ही होगा कि हम आपको एक इबारत देंगे और आप समझ जाएंगे कि भाई अब कौन सी गीत आज उद्घोषक लेकर आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान जी को हार्दिक धन्यवाद वो देना चाहते हैं। एक श्रोता ने जानना चाहा कि मैं बेनाम हो गया, ये आवाज क्या नरेंद्र चंचल की मधुर आवाज थी और वही पर्दे पर भी गा रहे थे? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, वो मखमली आवाज नरेंद्र चंचल साहब की ही है और पर्दे पर भी वही इस गीत को गा रहे थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज इस सुरीला सफर के अंक में हमने एक प्रयोग किया कि उन गीतों को चुना जाए जिन्हें किसी फिल्मी नायक या नायिका ने न गाया हो पर्दे पर, बल्कि साइड आर्टिस्ट जो हैं, अन्य कलाकार जो हैं, या बैकग्राउंड गीत के रूप में उस गीत को फिल्माया गया हो या किसी डांसर ने उस पर नृत्य किया हो, ऐसे कुछ गीतों को चुना जाए। तो आज हमने उन्हीं गीतों को चुना था। और आप हर एक गीत को सुनने के बाद समझ रहे होंगे कि पर्दे पर इस गीत को कैसे फिल्माया गया है। एक और गीत आपके सामने पेश कर रहे हैं, दत्ताराम का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है अब दिल्ली दूर नहीं। इस गीत में से शब्द आया है चिड़िया।
1: चुन चुन करती आई चिड़िया, सुन सुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। सुन सुन करती आई चिड़िया, सुन सुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

नाचो कालू, चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू, नाचो कालू, नाचो कालू, मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

तो हूँ मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, सीधा दिल्ली जाऊंगा तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

जी, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत काफी हद तक मेरे पर ही फिट बैठती है। अच्छा, आप पर फिट बैठती है कैसे? कि महंगी कॉन्वेंट स्कूल की मेरी पढ़ाई, पेरेंट्स पर आर्थिक बोझ, आगे मेरी हायर एजुकेशन बहुत खर्चीला। मैं कंफ्यूजन में था कि ये सब कैसे होगा। फिर मेरी इंटरनल आत्मी पुकार सुनकर मैंने ठान लिया कि मैं पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन और साइड बिजनेस करके अपनी हायर एजुकेशन का खर्चा निकालूंगा। ऐसा ही हुआ। उदासी की गलियां को छोड़कर जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ माता रानी के आशीर्वाद से सफलता हासिल करी और आज बच्चे भी अच्छी पोस्ट पर है। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छा, हमारे सवालों का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है कि साई और सुबह लक्ष्मी वो नर्तकियां थी और गायिका थी लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर। आपने एक ने सही जवाब दिया कि किस्मत के गायक प्रदीप, कवि प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी हैं। बिल्कुल सही बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि 20 मिनट शेष रह गए हैं, अभी भी ओल्ड सॉन्ग्स चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। अरे तो ओल्ड सॉन्ग ही तो चलने वाले हैं अंत तक, आप इस सफर में हमारे साथ बने हुए हैं ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आदमी बेनाम होकर मुख्य धारा से दूर होकर तब जीने लगता है जब वो सभी ओर से हताश हो जाता है। जीवन उसे निरर्थक लगने लगता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि ऐसी कोई रात नहीं जिसकी सुबह ना हो। हताशा के उस समय उसके किसी अपने की पुकार से उसके आत्मविश्वास में नई जान आती है और अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ वो अपनी आगे की मंजिल तय कर लेता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा दुख से भरी हो या सुख से ही भरी हो। जीवन नैया डगमग डगमग चलती है, कई हिचकोले आते हैं, उसी में फूलों भरी जिंदगी आती है, कांटो भरी शाम भी। व्यक्ति इन्हीं उतार चढ़ाव में अपने को एडजस्ट करते हुए चलता है। अगर जीवन के सफर में सिर्फ फूल ही फूल हो या कांटे ही कांटे हो तो एक रास्ता हो जाएगी, सुख दुख के अनुभव से वंचित रह जाएगा। खट्टा मीठा कड़वा कसेला सभी प्रकार के अनुभव जीवन में आते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो इस सुरीला सफर हमने रखा है जहाँ पर ये सारे स्वाद हमें महसूस करने हैं, है ना। और अंत तक हमें अपना साथ एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ना है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं फिल्म सफर के साथ मन्ना डे और साथियों की आवाजें, इंदिवर की बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन। याद कीजिए इस गीत को फिल्माते समय आपको किन का चेहरा याद आता है। हाँ, किसी नायक या नायिका ने तो इस गीत को पर्दे पर नहीं गाया है, है ना।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि चुन चुन करती आई चिड़िया जो गाना आपने दिल्ली दूर नहीं का सुनवाया था उसके मुखड़े में इबारत में कोई शब्द है ही नहीं, क्यों नहीं है? चिड़िया शब्द हमने आपको बताया था ना कि चिड़िया शब्द वहीं से उस गीत को लिया गया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत एकमात्र ऐसा माध्यम है जो दुखों के लिए भी काम कर सकता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है, मैं एक मुसाफिर बेशक पुरानी गली छोड़कर बेनाम जिंदगी गुजार रहा हूं, लेकिन मन में विश्वास और श्रद्धा के बल पर एक दिन सफलता जरूर हासिल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म 2 बीघा जमीन का ही गाना मेरे पिताजी आखिरी दिनों में हमेशा सुनते थे, उनकी मृत्यु मई महीने में हुई थी। बिल्कुल ये गीत है ही ऐसा जहां इंसान पुराने जो लोग हैं वो इसे सुनना पसंद करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम सभी भी तो यहां मुसाफिर ही हैं, हमें अपनी मंजिल का कुछ पता नहीं, जाने कब किस मोड़ पे मंजिल मिल जाए कुछ पता नहीं। बिल्कुल सही कहा। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सभी मित्रों को आज मैं नमस्कार कहता हूं, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। और विविध भारती जिसे सुनकर हम कहेंगे, हे विविध भारती, जिस गली में जिस घर में रेडियो बजने रहा हो उस गली से गुजरना नहीं, क्योंकि विविध भारती हमारी खास पसंद है। और अब हम इस सफर के आखिरी सोपान पर हैं, जहां पर हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की, फिल्म का नाम अपनापन। फटाफट जवाब भेजिएगा, ये बताइएगा कि आदमी मुसाफिर है जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इसमें शब्द आता है मुसाफिर और आदमी, ये मुख्य रूप से किस अभिनेता और बाल कलाकार पर फिल्माया गया था, और पर्दे पर इस दौरान आपको कौन से अभिनेता और अभिनेत्री बस में बैठे हुए दिखाई देते हैं? जी हाँ, ये गीत जो पर्दे पर गा रहे हैं वो अभिनेता कौन है और बाल कलाकार कौन है उनके साथ, और इसी गाने में मुख्य दृश्य के दौरान कौन से अभिनेता और अभिनेत्री बस में सवार दिखाई देते हैं? फटाफट लिखिएगा, बहुत कम समय बचा है।

एक श्रोता ने लिखा है कि कितना बढ़िया गाना है चुन चुन करती आई चिड़िया। इस चिड़िया के ऊपर कई कहानियां बनी हुई हैं जिसको बच्चे बड़े ध्यान से प्रेम से सुनते हैं।

तो इस सवाल का जवाब आपने दिया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आदमी मुसाफिर है गाना मुख्य रूप से अभिनेता सुधीर दलवी, जिन्होंने एक भिखारी की भूमिका निभाई थी, और बाल कलाकार निवेदिता जोशी थी जो बाद में निवेदिता सर्राफ के नाम से जानी गई, उन पर फिल्माया गया था। और इस गाने के मुख्य दृश्य के दौरान कौन थे? अभिनेता जितेंद्र और सुलक्षणा पंडित भी बस में सफर करते हुए दिखाई देते हैं, है ना? कुछ याद आया आपको?

तो सुरीला सफर में आज इतना ही। आज का ये सफर आपको कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ यूं सफर करना, और सुख दुख उतार चढ़ाव से भरी जिंदगी में इस तरह से गोते लगाना बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथी, हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं। तो बस आज का ये सफर यहीं तक। इस कार्यक्रम से, इस सफर से आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।

मित्रों, त्रिवेणी में आज विषय थोड़ा खास है, थोड़ा दिल से जुड़ा हुआ और शायद थोड़ा सा चुभने वाला भी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दोस्ती की, लेकिन सिर्फ दोस्ती की नहीं, सही दोस्त चुनने की। दोस्ती एक ऐसा शब्द जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आता है। बचपन की शरारतें, स्कूल की यादें, कॉलेज के किस्से, हर जगह दोस्त हमारे साथ होते हैं। लेकिन क्या हर दोस्त हमारे लिए सही होता है? शायद नहीं। इसीलिए दोस्त चुने, मगर ध्यान से। जरा एक पल के लिए सोचिए, आपके फोन में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? सोशल मीडिया पर आपके कितने फ्रेंड्स हैं? सैकड़ों, हजारों। लेकिन अगर रात 2 बजे आपको किसी की जरूरत पड़े तो आप किसे कॉल करेंगे? बस यही फर्क है दोस्तों की लिस्ट और सच्चे दोस्त में। साथियों, दोस्ती सिर्फ टाइम पास नहीं होती, ये एक जिम्मेदारी होती है। दोस्ती वो रिश्ता है जो हम खुद चुनते हैं। दोस्त हमारी सोच, हमारी समझ और हमारी पसंद का आईना होते हैं।

दोस्त वो नहीं होता साथियों जो सिर्फ खुशियों में साथ हो, बल्कि वो है दोस्त जो मुश्किल समय में भी आपके साथ खड़ा रहे, आपकी कमियों को जानकर भी आपको स्वीकार करे और जरूरत पड़े तो आपको सही रास्ता भी दिखाए। आज के समय में दोस्ती का एक नया रूप सामने आया है, ऑनलाइन दोस्ती। लोग एक दूसरे से मिले बिना ही दोस्त बन जाते हैं। यह गलत नहीं है, लेकिन इसमें सावधानी बहुत जरूरी है। हर प्रोफाइल के पीछे एक सच्चा इंसान ही हो, ये जरूरी नहीं। कभी कभी हम पूरी कोशिश के बावजूद गलत लोगों से जुड़ जाते हैं। ऐसे में सबसे पहले सच्चाई को स्वीकार करें, सबक लें और धीरे धीरे दूरी बनाएं। याद रखें, गलत दोस्ती कभी एकदम से नुकसान नहीं करती, वो धीरे धीरे असर करती है। आप जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप धीरे धीरे उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। अगर आपके दोस्त मेहनत करते हैं, सपनों को साकार करने की योजनाएं बनाते हैं, तो आप भी वैसा ही करेंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ वक्त बर्बाद करते हैं, तो आप भी वही करने लगेंगे। इसलिए दोस्त चुनना दरअसल अपनी जिंदगी का रास्ता चुनना है।

साथियों, सवाल ये उठता है, कैसे पहचाने कि कौन सही है और कौन नहीं? सिंपल सी बात, जो आपकी बुराई में साथ दे वो दोस्त नहीं, जो आपकी अच्छाई, सफलता, शोहरत और उपलब्धियों से ईर्ष्या करे वो दोस्त नहीं, जो आपकी गैर मौजूदगी में आपका उपहास करे वो दोस्त नहीं, जो आपको खुद से दूर कर दे वो तो बिल्कुल भी दोस्त नहीं। बात करें सच्चे दोस्त की, तो सच्चा दोस्त वो नहीं जो आपकी हर बात पर हाँ कहे, बल्कि वो है जो जरूरत पड़ने पर ना कह सके। सच्चा दोस्त आपकी गलतियों पर आपको रोकेगा, आपकी हार में आपके साथ खड़ा रहेगा, आपकी जीत में आपसे ज्यादा खुश होगा। सच्चा दोस्त आपकी इज्जत करता है, आपकी बातों को समझता है, और हाँ, सबसे जरूरी बात, वो कभी आपको अकेला महसूस नहीं होने देगा और हमेशा आपके साथ सच्चा रहेगा। साथियों, दोस्ती में भरोसा करने से पहले समय दीजिए, समझिए और फिर फैसला लीजिए। जिंदगी एक सफर है और सच्चे दोस्त इस सफर के साथी। दोस्त बनाइए लेकिन सोच समझकर, उनके साथ दिल से जुड़िए लेकिन समझदारी के साथ। जिंदगी को आसान बनाना है तो सही दोस्त का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
1: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से काशफिन नाहर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे वैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
0: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
1: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
4: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

किशोर कुमार की आवाज थी, फिल्म का नाम था मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। गीत आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी।

0: वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, यू नो शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उस आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

0: अच्छे हैं।
1: मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म का नाम गंगा जमुना, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद साहब की धुन।
2: होय गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं, क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में बंगला भाषा में शपथ ली। बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने शुभेंदु के अलावा 5 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल के विकास को नया आयाम मिलेगा।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने राज्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कल रांची के रातू में मत्स्य परियोजना का अवलोकन किया। इस दौरान श्रीमती तिर्की ने कहा कि राज्य में मत्स्य पालन की अपार संभावनाएं हैं। सरकार इसके लिए जरूरी सिस्टम तैयार करने की योजना बना रही है ताकि स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ सके। बिजली और पानी के मुद्दे पर भाजपा का चरणबद्ध आंदोलन जारी है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज संताल परगना के विभिन्न जिलों में जन सरोकार के मुद्दों को लेकर सड़कों पर हैं। कल भी राज्य के कई हिस्सों में पार्टी ने प्रदर्शन किया था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज झारखंड समेत देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। रांची सिविल कोर्ट परिसर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत विशेष बेंचों का गठन कर कई मामलों का निष्पादन हुआ है। लोक अदालत के दौरान कई लोगों को न्याय मिला है। इस दौरान लाभार्थियों ने राष्ट्रीय लोक अदालत की सराहना की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया थाना क्षेत्र में एक घर में चोरी मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी के पास से हथियार और चोरी के उपयोग में काम आने वाले कई सामान बरामद किए गए हैं।
2: इंटरसेप्ट किया गया, इसमें से 4 अपराध कर्मी जो है भागने का प्रयास किए उतर के, जिसमें से एक को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। उसके पास से हथियार मिला है, गाड़ी में जो है गृह वेतन के काफी सामान मिले हैं और उसकी निशानदेही पे कैश करीब 51,000 बरामद हो चुका है जो घटना में ले जाया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है, बाकी जो अभियुक्त है उनकी भी सबकी पहचान हो गई है। पुलिस लगातार छापामारी कर रही है, वो भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे।
0: पलामू में भी अपराधियों के खिलाफ पुलिस को सफलता मिली है। चैनपुर थाना क्षेत्र में फायरिंग मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। उधर लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में एक लूटकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर लूटे गए सामान और अन्य चीजों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर आज स्कूलों और सांस्कृतिक संगठनों की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई। इस मौके पर शांति निकेतन के गौर प्रांगण में 42 गीतों का आयोजन किया गया। उनकी जयंती पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने 25 वैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गुरुदेव टैगोर ने असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक थे और विचारक एवं कवि थे। जमशेदपुर में आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 487वीं जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। मरीन ड्राइव स्थित महाराणा प्रताप चौक पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के लोग, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं विभिन्न संगठनों के सदस्य शामिल हुए। इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में शहर के शिक्षाविदों एवं इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप के जीवन, शौर्य, त्याग और राष्ट्र रक्षा के प्रति उनके योगदान पर प्रकाश डाला। राज्य के कई इलाकों में 15 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, रांची, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद और खूंटी में आज आंधी, ओलावृष्टि और वज्रपात की भी आशंका है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी 15 मई तक तेज हवाओं के चलने और वज्रपात को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार 2 दिन बाद तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मन चाहे की मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
1: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। चलिए शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। ये पहला गीत सुनना चाहा है, ये है हमारे सुनने वाले श्रोता ककराला उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज खान, प्रवीण खान, अनिल नागर और इनके परिवार के दोस्त। और ये हैं विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारुल, पायल, श्वेता, उर्वी बेन अड़िया, इन्होंने ये खत लिखा है अकोला महाराष्ट्र से। आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया थोड़ा सा अपने जो शब्द हैं, जो राइटिंग है, उन्हें साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। फिर हम जब नामों को पढ़ते हैं और कोई गलत नाम हमसे पढ़े जाते हैं तो हमारे शिकायत श्रोता जो हैं भर भर के हमारी शिकायत करते हैं। तो कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ सुथरी लिखें, साफ तरीके से, ताकि हम आपके नाम को अच्छे से पढ़ सके। आपने अपने नामों को घुमा घुमा के लिखा है, कृपया इसी तरह से नामों को न लिखें, साफ सुथरे तरीके से लिखें ताकि हम सही नाम आप तक पहुंचा सकें। चलिए आप सभी सुनना चाहते हैं लैला मजनू फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं गांव दलपतपुरा से दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और इनके परिवार वाले। इसी गाने को जो अब हम आपको सुनवाने वाले हैं उसे सुनना चाहते हैं गांव सांकरा सोमनी जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी साहू, दिवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, रजनी देवी साहू और मास्टर प्रणय कुमार साहू ने। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले को फिल्म राम बलराम में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के लिए आप सभी हैं ख्वाहिशमंद। गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज इसी गीत को सुनना चाहते हैं। सिकंदर अली खान और बदरुद्दीन, ये खत है शमसुद्दीन की बाड़ी के पास अमर सिंहपुरा बीकानेर से। आप सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, जिसे आवाज किशोर कुमार ने दी है और फिल्म का नाम है दाग।

0: हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं ने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत। इसे सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ से सीमा, शिखा, सपना, प्रीति, संध्या, मोनस और शालू ठाकुर ने। मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है धर्मवीर, गीतकार आनंद बख्शी हैं। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: ओ मेरी महबूबा।

मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश नदीम श्रवण का संगीत, समीर के बोल, अलका याग्निक, कुमार सानू और अजय देवगन की आवाजें। फिल्म का नाम है दिलवाले। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप हैं छत्तीसगढ़ से संध्या सिंह, नीलेश सिंह, शैलेश सिंह, शैलू ठाकुर और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक का।

ये था फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी। नाटक का शीर्षक है पोस्टमैन। तो सुनिए नाटक पोस्टमैन का पहला भाग।

0: पोस्टमैन, चिट्ठी ले लीजिए।
1: आता हूँ पोस्टमैन भैया।
2: कौन? लगता है गांव के तुम नए पोस्टमैन हो।
3: जी हाँ, मैं नया पोस्टमैन कंदस्वामी हूँ। लीजिए, यह आपकी चिट्ठी है।
2: लाओ। अरे हाँ, याद आया, अब पुराना पोस्टमैन रिटायर होने वाला था ना।
3: जी हाँ, वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह मैं आया हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ श्रीमान।
2: अरे भाई, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? पुराना पोस्टमैन तो इस तरह कभी जल्दी नहीं मचाता था। हर घर में कम से कम आधा घंटा बैठता था, बातचीत करता था और फिर आगे जाता था।
3: जी हाँ, सब ऐसा ही कहते हैं। मेरे लिए तो एक एक मिनट सोने के बराबर है। सयानों ने कहा है ना कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए।
2: वाह वाह, तुम देखने में तो कम उम्र के मालूम होते हो, लेकिन बातें बड़ी समझदारी की करते हो। मुझे तो वक्त काटने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए। कुछ ना कुछ बोले बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैं तो बोलता ही रहूंगा। अच्छा तुम जाओ भैया, अपना काम देखो।
0: पोस्टमैन, मेरी कोई चिट्ठी है?
3: घर का क्या नंबर पता है श्रीमान?
0: नंबर 11 पश्चिमी गली।
3: इस पते का एक लिफाफा है श्रीमान, लीजिए।
0: मुझे पढ़ना नहीं आता है भैया, जरा तुम ही पढ़कर सुना दो।
3: लिखा है, पूज्य पिताजी प्रणाम, मैं सकुशल हूँ, आपकी कुशलता भगवान से चाहता हूँ।
0: मेरे बेटे मणि की चिट्ठी है। अच्छा आगे पढ़ो।
3: मैं यहाँ अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ, परीक्षा की फीस देनी है, कृपया 50 रुपए भेज दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, आपका प्रिय पुत्र मणि। बस इतना ही लिखा है, ये लीजिए चिट्ठी।
0: अगर कष्ट न हो तो डाक बांटकर मेरे घर आ जाना, मनियाडे लिखकर मेरे बेटे के नाम भेज देना, बड़ा उपकार होगा भैया।
3: मैं जरूर आऊंगा बाबा, अपना काम खत्म करके मैं सीधा आपके घर आऊंगा, तभी मनी ऑर्डर फॉर्म भर दूंगा।

0: मुकुंद स्वामी, आज मेल लेट थे क्या?
1: हाँ, आज जरा लेट ही आई है पोस्ट मास्टर साहब। अब तक तो सारी की सारी डाक गांव में बढ़ जानी चाहिए थी।
0: तो क्या हुआ, यहाँ तो सबके सब खेती बाड़ी करने वाले किसान ही रहते हैं। शहर की तरह व्यापार करने वाले लखपति थोड़ी रहते हैं जो डाक का इंतजार करते रहे।
1: आप ठीक कहते हैं, आप तो यहाँ बरसों से पोस्ट मास्टर हैं।
0: इस गांव से बहुत सी लड़कियाँ अपने अपने ससुराल चली गई है, बहुत से लड़के पढ़ने के लिए शहर गए हुए हैं। बस यहाँ के माँ बाप अपने अपने बेटे बेटियों के कुशल मंगल की चिट्ठियों की राह देखते रहते हैं। उन्हें ये चिट्ठियाँ मिल जानी चाहिए, बस देर सवेर की कोई बात नहीं। इसलिए जब चाहो आराम चैन से डाक बांट आना।
1: नहीं पोस्ट मास्टर साहब, मैं तो समझता हूँ कि गांव के लोग भले ही धनी व्यापारी न हो, इनके लिए सगे संबंधियों के प्रेम का कहीं ज्यादा मूल्य है। आप इनके उस

0: मनी ऑर्डर? हाँ एक है। ए? सैनिक ने रुपया भेजा है, शाबाश जवान।
1: कौन है वो सैनिक?
0: अरे वही तुम्हारा डुप्लीकेट।
1: मेरा डुप्लीकेट?
0: हाँ तुम्हारा हम शक्ल। तुम जब पहले दिन ड्यूटी पर आए थे तो तुम्हें देखते ही मुझे यही बात महसूस हुई थी। कंदस्वामी तुम्हारी शक्ल सूरत उस सैनिक से इतनी मिलती जुलती है कि तुम दोनों को अलग अलग खड़ा कर देखें तो ये कहना मुश्किल होगा कि कौन कंदस्वामी है और कौन कुमार स्वामी। एक ही सांचे में ढली दो मूर्तियां, एक सा चेहरा एक सा कद। अगर तुम्हारे चेहरे पर मूछें और गाल पर एक मस्सा हो तो तुम्हारी माँ भी तुम दोनों में फर्क नहीं कर सकती, वो हूबहू तुम जैसा है।
1: कौन है वो?
0: अरे शिवकामी नाम की बुढ़िया का बेटा कुमार स्वामी।
1: कौन शिवकामी? वो तो नहीं जो उस उत्तरी गली में 14 नंबर के मकान में रहती है, उसी की बात कर रहे हैं ना आप?
0: हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसका बेटा कुमार स्वामी बचपन से ही बड़ा उद्दंड और शरारती था, जब देखो कोई न कोई उपद्रव खड़ा किए हुए है। लोगों ने चैन की सांस ली जब किसी तरह सेना में भर्ती होकर गांव से चला गया। वहां वो बड़ा ही अच्छा और जिम्मेदार जवान बना, काफी तरक्की की है। साल में एक बार छुट्टी पर यहां आता है। दुश्मन ने जब से देश पर हमला किया था तब से वो छुट्टी पर नहीं आया, सीमा रक्षा के किसी मोर्चे पर लगा है। वो 3 महीने में एक बार 3000 या 4000 रुपए अपनी माँ को भेजता है। अब भी उसने 3000 रुपए भेजे हैं।
1: अच्छा, तभी वो बेचारी बुढ़िया माँ दरवाजे पर खड़ी होकर रोज मुझे घूर घूर कर देखती है। आज जब मैं उसे मनी ऑर्डर दूंगा तो वह कितनी खुश होगी।
0: आज क्या जल्दी है, कल जाकर दे आना।
1: क्या कह रहे हैं आप पोस्टमास्टर साहब, ये गलत बात है। डाक खाने का नियम तो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्थान पर मौजूद है तो उसके डाक उसे फौरन मिलने चाहिए।
0: मैं तो यूं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बस।
1: सभी पत्रों पर मोहर लगा दी है, तो मैं चलूं? और हाँ उस मनी ऑर्डर का रुपया दे दीजिए।
0: ये लो, ठीक तरह से गिन लो, डाक जल्दी बांट कर मेरे घर आ जाना। आज तुम मेरे साथ ही खाना खाओगे।

0: क्यों भाई सिंगारम, क्या हालचाल है? बड़े नाराज मालूम होते हो आज, क्या बात है? क्या एक कप चाय लाऊं? क्या सोच रहे हो? अरे भाई मैं अपने पैसे से चाय खरीद कर लाऊंगा।
1: अरे क्या बकता है मारी, आजकल मेरा हाथ जरा तंग है इसलिए तुझे मजाक की सूझ रही है। अरे तू क्या मुझे चाय पिलाएगा? मैं चाहूँ तो अब भी हजारों को चाय पिला सकता हूँ, समझे?
0: सो तो है, लेकिन जरा समय का फेर देखो। हनुमान जी तो एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका में पहुँच गए थे, और यहाँ तुम हो कि गांव के नाले को भी नहीं लांग सकते। है ना?
1: लगता है मारी आज तेरी चांद कुछ खुजला रही है। साले लगाओ।
0: अरे रे रे रे, जबान का काम हाथ से क्यों ले रहे हो भाई सिंगारम? कहो कुछ काम बना?
1: बड़ा आया है काम बनाने वाला। जब खुद मैं किसी की अंटी ढीली करूंगा तभी कुछ काम बनेगा। हाँ।
0: अरे भाई अपने राम का भी तो यही धंधा है, मेहनत मजदूरी तो हमसे होती नहीं, ये हाथ पांव काम करने के काबिल कह रहे। अगर कोई भूला भटका सामने पड़ जाए तो उसे छीना झपटी करके ही अपनी रोटी चलती है।
1: और चारा ही क्या है, अगर मेरी वो बुढ़िया बहन कृपा करके कुछ न कुछ देती रहे तो रोटी की कोई फिक्र ही नहीं रहेगी। लेकिन वो एक पैसे की दीवार नहीं, मोर्चे से बेटा रुपया भेजता है तो उन्हें संदूक में रखकर ताला लगा देती है और कहती है मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है।
0: सिंगारम, सिंगारम उधर देखो, नया डाकिया कंद स्वामी आ रहा है।
1: अरे यही है वो? अरे ये तो हूबहू मेरी बहन के बेटे कुमार स्वामी जैसा दिखता है।
0: अरे कुछ मत पूछो दोस्त।
1: क्यों?
0: फौजी आदमी भी इसके सामने कोई चीज नहीं है, अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा और ईमानदार समझता है।
1: क्यों, कोई झगड़ा तकरार?
0: मेरे साथ तो अभी कुछ नहीं हुआ,
1: तो?
0: सुनी सुनाई कह रहा हूँ, तुम जरा बात करके देखो पता चल जाएगा।
1: अच्छा ऐसी बात है।
2: अजी पोस्टमैन साहब जरा इधर तशरीफ तो लाइए।
3: कहिए क्या बात है? कैसे बुलाया आपने?
1: अजी बैठिए भी। अरे मारी भाग कर एक कप चाय तो लाना।
3: क्षमा कीजिए श्रीमान, इस समय बैठने की फुर्सत नहीं, डाक बहुत है हाथ में।
1: वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अच्छा कोई मनी ऑर्डर है?
3: है क्यों नहीं,
1: तो लाइए दे दीजिए ना, मेरा ना।

0: सिंगारम है।
1: आपके नाम का तो कोई मनी ऑर्डर नहीं है।
0: अजी किसी के भी नाम का हो क्या फर्क पड़ता है, जिसके नाम मनी ऑर्डर है उसी के नाम के यहाँ मैं दस्तखत कर देता हूँ। आपको तो मनी ऑर्डर पाने वाले के सिर्फ दस्तखत ही चाहिए ना, और कुछ तो नहीं। लाइए लाइए मनी ऑर्डर।
1: वाह, ऐसे कैसे दे सकता हूँ मैं, ये तो जालसाजी हुई जो कानूनन जुर्म है।
0: अरे आप भी कानून का क्या पचड़ा ले बैठे। मनी ऑर्डर दरअसल है किसके नाम?
1: शिवकामी अम्माल के नाम। उन्हीं को देना है मुझे, मैं चलता हूँ।
0: सुनिए सुनिए सुनिए,
1: बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है।
0: पोस्टमैन, इस गांव में नए आए मालूम होते हो, उस पर ये छोटी उम्र और जवानी का उबाल, इसीलिए अक्खड़ बने फिरते हो। लेकिन शायद तुम सिंगारम को नहीं जानते, जिस शिव कामी के नाम ये मनी ऑर्डर है वो मेरी बड़ी बहन है, समझे? उसका मनी ऑर्डर फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना
1: वरना क्या होगा?
2: अरे भाई क्यों उलझते हो इनसे, ये चाहे तो इस गांव से तुम्हारा नाम और निशान मिटा दें। इसलिए भाई बेकार झगड़ा मोल ना लो इनसे, अपनी बहन के नाम के दस्तखत ये खुद किए देते हैं, तुम चुपचाप मनी ऑर्डर के रुपए इन्हें दे दो।
0: लाओ रुपए, लाओ लाओ लाओ।
1: सिंगारम, ये ना भूलो कि बलि से भी बड़ा बलि वो है जिसे भगवान कहते हैं। तुम्हारी धमकियों से मैं तो डरने वाला नहीं, तुम मेरी इज्जत रखोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत रखूंगा, अगर तुम मेरी इज्जत उतारना चाहोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा।
2: अरे बाप रे, ये पोस्टमैन छोकरा तो तूफान की तरह गरजता हुआ चला गया।
0: अरे जाने दे जाने दे जाने दे, आखिर बच के जाएगा कहाँ? देखना ये श्रृंगार

0: जी मैं पोस्टमैन। क्या शिवकामी अम्माल आप ही हैं? क्या बात है माई, आप इस तरह चकित क्यों रह गई? आप मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हैं?
1: क्या कहा तुमने? तुम सचमुच पोस्टमैन ही हो ना? तुम जरा इधर मेरे पास आकर बैठो। क्षण भर में ही मेरी क्या हालत हो गई। एकाएक मुझे ऐसा लगा मानो मेरा बेटा कुमार स्वामी ही मेरे सामने आ गया हो।
0: कुमार स्वामी नहीं, आपके नाम ये मनी ऑर्डर भेजा है माई।
1: अच्छा,
0: 3000 रुपए भेजे हैं। यहाँ इस जगह दस्तखत कर दीजिए। और यहाँ भी। ठीक, ये लीजिए रुपए। 100-100 रुपए के 30 नोट हैं। अच्छी तरह गिन लीजिए। और ये रहा कूपन।
1: बेटा, मुझे सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, पढ़ना नहीं आता। जरा पढ़कर सुना दो कूपन पर मेरे बेटे ने क्या लिखा है। तुम शायद जानते नहीं, मेरा बेटा फौज में है। हाँ, तो पढ़ो।
0: लिखा है, प्रिय माताजी प्रणाम।
1: अरे, तुम्हारी आवाज भी कुमार स्वामी जैसी ही है। तुम्हारे अगर मुझे हो और गाल पर मस्सा हो तो तुम में और मेरे कुमार स्वामी में कोई फर्क नहीं होगा। ओह, भगवान की कैसी लीला है। अच्छा, आगे पढ़ो बेटा।
0: मैं यहाँ सकुशल हूँ। मेरा विश्वास है कि आप और नीला भी सकुशल होंगी। मुझे घर का खाना बार बार याद आता है। आपके हाथ से बना खाना खाने की बहुत इच्छा होती है। जब छुट्टी मिलेगी तब जरूर आऊंगा। आपका बेटा कुमार स्वामी।
1: बेचारा अब फौज में जाकर मेरे बनाए खाने के लिए तरस रहा है। किसने कहा था फौज में भर्ती होने को?
0: ऐसा ना कहिए माँ जी, निकम्मों की तरह गांव में आवारागर्दी करने की अपेक्षा सीमा रक्षा के मोर्चे पर जाकर देश सेवा करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो कहूँगा आपका बेटा धन्य है।
1: क्यों बेटा, मेरे कुमार स्वामी के लिए वहाँ कोई खतरा तो नहीं?
0: देखिए माँ जी, खतरा कहाँ नहीं है। अगर हर कोई आदमी अपनी जान की चिंता करने लगे तो देश की चिंता कौन करेगा, सीमा रक्षा की चिंता कौन करेगा? आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो देश के शुभ काम में लगा हुआ है।
1: बेटा, ये कहकर तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। मुझे इस तरह धीरज बंधाने वाले, तसल्ली देने वाले तुम इस गांव में पहले आदमी हो। इस गांव में मेरा अपना कोई नहीं, दूर के रिश्ते का एक भाई है जो आवारा और बदमाश है।
0: सिंगारम, अभी आते आते उसे देखा था।
1: वो हमेशा मुझसे कहता है कि मेरा बेटा मोर्चे से वापस नहीं आएगा। हमेशा ऐसे ही अशुभ बातें उसके मुंह से निकलती हैं।
0: माँ जी, अगर एक आदमी के कहने से दूसरा आदमी मर सकता है तो इस संसार में कोई भी जिंदा ना बचे। और रहा वो सिंगारम, उसके कहने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। आप चिंता न कीजिए।
1: जियो बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही बेटे से मिलकर बातें कर रही हूँ। अच्छा, ये लो 10 रुपए, कुछ खा पी लेना।
0: पैसे रहने दीजिए माँ जी, मेरे लिए तो आपका प्यार ही बहुत है। आपकी कृपा से सरकार जो वेतन देती है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। और फिर मनी ऑर्डर देकर बदले में किसी से कुछ पैसा लेना डाक आने के कानून के खिलाफ है।
1: क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? शादी हो गई है?
0: मैं तो एक तरह से अनाथ हूँ माँ जी, और शादी की क्या जल्दी है अभी। अच्छा तो चलता हूँ माँ जी, बहुत सी डाक बांटनी है अभी।
1: जब कभी समय मिले तो इधर आ जाया करो, और नहीं तो मेरे मन को कुछ तसल्ली ही मिलती रहेगी। हाँ, आओगे ना बेटा?
0: आऊंगा माँ जी।

0: अरे जरा देख कर चलना चाहिए। अच्छा हुआ कि आपका घड़ा नीचे नहीं गिरा।
1: माफ कीजिए, मैं अपने ध्यान में चली जा रही थी कि कोई चिट्ठी है।
0: आपके लिए तो नहीं है,
1: मेरा मतलब है शिवकामी अम्माल के नाम कोई चिट्ठी है।
0: तो क्या आपको उस बुढ़िया की चिंता है?
1: वो मेरी नानी लगती है ना।
0: आपकी नानी? ओह समझा, आपका नाम।
1: मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे?
0: जी जी, वो जब कभी आपकी चिट्ठी आएगी तो।
1: मेरा नाम नीला है।
0: इस गांव में इतनी सुंदर लड़की, इसका नाम नीला नहीं चांदनी होना चाहिए था। अरे ये मैं क्या सोचने लगा। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं इस गांव का डाकिया हूँ, डाकिया।

0: कहो जी जी, कैसा हाल चाल है?
1: कौन? शिंगारक? अरे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे घर आकर बीड़ी ना पिया कर। ओह, मेरा तो दम घुट रहा है।
0: मेरी हैसियत तो बीड़ी ही पीने की है जीजी। तुम्हारा बेटा सेना में खूब कमाता है। वो नीला कहाँ गई है?
1: उसकी चिंता तू क्यों करता है? तुझे अपने काम से।
0: अरे अरे अरे, नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है। इतनी लापरवाही ठीक नहीं है जीजी। जवान लड़की है और अच्छा, कल तुम्हें कोई मनी ऑर्डर मिला था क्या?
1: क्या तुझे भी मालूम हो गया?
0: कैसी बातें कर रही हो जीजी? भले ही प्राण यमराज की जानकारी के बिना निकल जाए, लेकिन इस काम में कोई भी काम मेरी जानकारी के बिना नहीं हो सकता है। नहीं जानती क्या?
1: मेरे लिए तो तू यमराज ही है। अच्छा, तब चलता फिरता नजर आ।
0: इस तरह क्यों दुत्कारती हो जीजी? बड़े जोर की प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो ना।
1: अच्छा अच्छा, ये ले पानी। और अब
0: जी जी, इस उम्र में तुम खुद क्यों काम करती हो? नीला कहाँ गई? मैंने पानी ये सोचकर मांगा था कि तुम नीला को ही पानी लाने के लिए कहोगी।
1: मुझे भी मालूम था कि तूने पानी क्यों मांगा। मैंने नीला से कह रखा है कि वो तेरे सामने कभी ना आए।
0: तुम तो नीला को इस तरह से सहेज संभाल कर रखती हो मानो तुम्हारा बेटा कल परसों आकर उससे शादी कर लेगा और वो तुम्हारी बहू बन जाएगी। अरे वो कुमार स्वामी नीला से शादी करेगा या मोर्चे पर दुश्मन की गोली से मरेगा? कौन जाने।
1: शिंगारम, सवेरे सवेरे आकर तू क्यों इस तरह मेरा दिल दुखाता है? तुम्हारी ये ऊल जलूल बातें मुझे अच्छी नहीं लगती।
0: मैं क्या करूं जीजी, मेरी जबान जरा लंबी है, वो हमेशा कुछ न कुछ बोलती।

0: ही रहती है। मैं तो यही कहना चाहता था कि तुम अगर नीला की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं उसे रानी की तरह रखूंगा।
1: अरे मैं अंधी नहीं जो तोता पालकर बंदर के हाथ में दे दूं।
0: अच्छा खैर कोई बात नहीं, ये बात तो फिर कभी होती रहेगी। पहले ये बताओ लड़के ने कितने रुपए भेजे हैं?
1: कितने भी भेजे हो तुझे क्या मतलब?
0: मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ। सब रुपए अभी तो खर्च करोगी नहीं, अगर मुझे भी कुछ रुपए दे दो तो मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा। यकीन मानो मुझे रुपए देना बैंक में जमा करने के बराबर है।
1: नहीं अंधे कुएं में डालने के बराबर है। अब कान खोल के सुन ले, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी, चला जाए यहाँ से।
0: मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझकर आदर दे रहा हूँ।
1: तू मेरा कुछ नहीं लगता, अब जाता है यार।
0: अच्छा, बहुत जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मैं तुम

0: सामने वो बदमाश शिंकारम खड़ा है। अब मैं क्या करूं? नानी ने इसके सामने ना पढ़ने को कहा था। अरे मुझे देखकर ये इधर ही आ रहा है, यहाँ तो एकदम सुनसान है। अब क्या करूं? सिर पर पानी का घड़ा और अच्छा पेड़ों की झुरमुट की आड़ लेकर भागती हूँ।
1: अरे नीला, क्यों तुम हिरनी की तरह भाग रही हो? रुको, मैं कहता हूँ रुको।
2: क्या नल से पानी लाई हो? अरे घबराती क्यों हो? मैं भाग थोड़ी ही हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा। चलो हंसकर दो बातें करो। और
0: मुझे घर जाना है, नानी अकेली है।
2: मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ तुम्हारे साथ।
0: मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे रास्ता मालूम है।
2: मैंने कब कहा कि तुम्हें रास्ता मालूम नहीं है? देखो नीला, जमाना बहुत बुरा है, तुम जवान लड़की हो, गांव में बदमाशों की कमी नहीं है। रास्ते में कहीं भी किसी ने छेड़छाड़ की तो
0: और कोई क्या करेगा?
2: ये बात है, बहुत ही बढ़ चढ़ कर बातें करने लगी हो। कल ही तुम्हारी नानी के पास पहुंचूंगा और डरा धमका कर जैसे भी हो शादी की बात पक्की करके रहूंगा। देखना, तुम मुझसे ही शादी करोगी।
0: जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये कभी नहीं होने का।
2: अच्छा?
0: मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ज्यादा किया तो मेरी लाश को ही शायद मंगलसूत्र बांध सकोगे।
2: अच्छा, ये बात है?
0: छोड़ दे, छोड़ दे मुझे।
3: जहाँ कोई नहीं बचाएगा तुझे, दिन भर एक अपने लड़की से छेड़छाड़ करता है, तेरी ये हिम्मत? बदमाश कमीना कहीं का, तू जैसे लफंगों की वजह से सारी पुरुष जाति की बदनामी होती है।
2: अरे बकवास बंद करो डाके, गांव में नया नया आया है और मुझ पर तो हाथ उठाता है। अच्छा देख लूंगा तुझे।
3: अरे अभी देख लेना अच्छी तरह से, अभी जो तेरी धुनाई की है अगर वो काफी नहीं तो लगाऊं तो चारों हाल धर कर रख दूंगा। क्या समझ रखा है तूने?
2: अगर मैं अपने दलबल के साथ होता तो जरूर समझा देता तुझे। तुम जैसे कल के छोकरे से क्या भिड़ो, तुझसे उलझना मेरे लिए बेइज्जती की बात है। अच्छा अभी तो जाता हूँ, लेकिन एक दिन तुझसे बदला जरूर लेकर आऊंगा।
0: मैं किस मुंह से आपको धन्यवाद दूं? आपने ठीक समय पर आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो ना जाने वो बदमाश क्या कर बैठता।
4: भगवान सबका रक्षक है। आओ नीला, तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में किसी बदमाश की इतनी जरूरत हो।

0: सकती है।
1: जी, इस गांव के सब लोग अच्छे हैं, ना कोई किसी से झगड़ा करता है ना लड़ाई। सिर्फ यही एक शिंगारम ही ऐसा आदमी है जो सबको डराता धमकाता फिरता है। इसका अपना कोई आगे पीछे है नहीं, सो
0: तुम्हारी नानी इसकी बहन जो लगती है।
1: अरे नहीं, मेरी नानी का ये बहुत दूर के रिश्ते का भाई लगता है, इसी नाते ही हमारे घर आता जाता है। पहले ये मेरी माँ से शादी करना चाहता था।
0: हाँ, हमारे यहाँ मामा भांजी की शादी जायज मानी जाती है।
1: लेकिन मामा ढंग का तो हो, मेरी नानी ने शिंगारम की बात नहीं मानी और अपनी बेटी यानी कि मेरी माँ की शादी दूसरी जगह कर दी। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी।
0: ओह, तो तुम्हारी माँ नहीं है?
1: अब तो बाप भी नहीं है, लेकिन नानी ने मुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वो मुझसे माँ की तरह प्यार करती हैं। अब वो बदमाश शिंगारम मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है।
0: तुम्हारा अपना इरादा क्या है?
1: मैं किसी भी हालत में इससे शादी नहीं करूंगी।
0: हाँ हाँ, रिवाज के मुताबिक तुम तो अपने फौजी मामा कुमार स्वामी से ही शादी करोगी।
1: अरे अरे, बातों बातों में घर तक पहुंच गए, अब कोई डर नहीं। मैं जाती हूँ, समय पर आकर आपने मुझे इस बदमाश से बचा लिया, इसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी।
0: अरे रहने भी दो, ऐसा कौन सा बड़ा उपकार किया है मैंने। चली गई, कितनी सुंदर है ये, और सुशील भी, बोली ऐसी मानो कानों में मिश्री घोल दी हो। अगर कहीं ये, छी छी, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा सोचना पागलपन है, पाप है, ये कैसे संभव हो सकता है। जब उसका मंगेतर है तब ओह, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जब से मैंने नीला को देखा है तब से मेरा मन उसी की ओर खींचता जा रहा है। लेकिन मैं तो एक डाकिया ठहरा, घर घर डाक बांटने वाला। मेरे मन में किसी लड़के के बारे में ऐसा ख्याल आना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। घर के अंदर जाऊं या कोई अर्ज नहीं, नीला को मैंने अभी अभी कहीं बाहर जाते देखा है। मैं तो शिवकामी अम्माल से मिलना चाहता हूँ, अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। उससे बातें करता हूँ तो लगता है जैसे अपनी माँ के पास बैठा हूँ। मैं अनाथ कब से अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रहा था। माँ जी।
2: कौन? कंद स्वामी, आओ बेटा, बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनाई दी है।
0: माँ जी, आज आपके लिए कोई चिट्ठी नहीं है।
2: अरे अगर चिट्ठी नहीं है तो तुम अपनी माँ से मिलने ही नहीं आओगे, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना।
0: ये खांसी, आप लेटी हुई क्यों हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
2: कल रात से सिर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, साथ ही कुछ खांसी बुखार भी है।
0: मैं आपका सिर दबाता हूँ। नहीं नहीं, पहले मैं जाकर डॉक्टर को बुलाता हूँ।
2: डॉक्टर सवेरे आया था, कुछ गोलियां दे गया था, बाकी दवाई
0: मैं लाता हूँ। दवाई?
2: नहीं नहीं, नीला नुस्खा लेकर डॉक्टर की दुकान पर गई है। तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए? मरने से पहले मैं तुम्हें।
0: ये आप क्या कह रही हैं माँ जी, मामूली खांसी बुखार है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी।
2: बेटा, तुम्हारी भावना को मैं समझती हूँ, तुम्हें मैंने अपना दूसरा बेटा मान लिया है।
0: माँ, आप जैसी माँ को पाने के लिए कई जन्मों तक पुण्य कर्म करने चाहिए। आज मैं कितना खुश हूँ, अब मैं अनाथ नहीं हूँ।
2: अरे खुश तो मैं हूँ जिसके एक नहीं दो बेटे हैं। जरा जरा मेरे पास आओ।
0: लो माँ।
3: के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे, पोस्टमैन। इस नाटक का पहला भाग हमने आपको सुनवाया, हिंदी अनुवादक थे पीएस कृष्णस्वामी और निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। आकाशवाणी उदयपुर की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में बांग्ला भाषा में शपथ ली। बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने शुभेंदु के अलावा 5 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल के विकास को नया आयाम मिलेगा। बिजली और पानी के मुद्दे पर प्रदेश भाजपा का चरणबद्ध आंदोलन जारी है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आज संताल परगना के विभिन्न जिलों में जनसरोकार के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरे और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। झारखंड उच्च न्यायालय में आज महिला पर्यवेक्षक नियुक्ति में दस्तावेज सत्यापन के बाद भी अब नियुक्ति नहीं दिए जाने से संबंधित एक मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायालय ने जेएसएससी को निर्देश दिया कि यदि नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थी हैं तो उन्हें नियुक्ति के लिए तुरंत अनुशंसित किया जाना चाहिए। पलामू पुलिस ने अलग अलग मामलों का खुलासा करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने 3 मई को हुई गोलीबारी में एक आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं पिपराटांड थाना में हुई हत्या मामले में एक आरोपी को पकड़ा गया, जबकि लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में हुई लूट मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा चैनपुर थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी मामले में 1 आरोपी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। सिमडेगा जिले के बोलवा थाना क्षेत्र के निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पिछले दिनों करीब 15 लाख रुपए मूल्य के पाइप को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने पाइप चोरी में शामिल अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रमिला दातार जी का, प्रमिला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: नमस्कार मेरे सब विविध भारती के दर्शकों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और आज यहाँ पे आने का मुझे मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमारे सुनने वालों से जुड़ जाऊंगी
1: जी।
2: हालांकि 25 साल प्रोग्राम करने के बाद बहुत सारे लोग मतलब जो आके बोलते हैं आपका शो देखा, इतने साल पहले आपका शो देखा, तो मुझे जी, बहुत जी। अच्छा लगता है।
1: हाँ।
2: और उससे ज्यादा खुशी आज यहाँ आने से मुझे मिली है कि और दर्शकों तक मैं पहुंच जाऊंगी और गाने भी पेश कर पाऊंगी।
1: क्या बात है,
2: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: प्रमिला जी, सुनहरी यादें की शुरुआत जब हुई थी, असल में आपके करियर की शुरुआत उससे भी पहले हुई थी
2: जी,
1: तो हम तब से बात शुरू करें
2: जी
1: कि वो पहला कौन सा मौका था कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने का मौका मिला।
2: फिल्म इंडस्ट्री के गाने का, तब के बहुत ही मशहूर संगीतकार वसंत देसाई जी थे, सी रामचंद्र थे
1: जी,
2: उनके पास मैंने मराठी फिल्मों में गाने गाए।
1: हाँ।
2: और फिर थोड़ा सा मेरा नेचर ऐसा था कि किसी के पास जाए और मुझे आप काम दे दे या कोई मुझे गाना दे दे, ये मेरा नेचर नहीं था।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
2: तो मेरे हस्बैंड को भी वो मालूम था कि ये ऐसी नहीं बनने वाली। तो एक बहुत अच्छी यादगार है कि मराठी ड्रामा जो हमारे हैं उसमें मुझे काम करने के लिए पूछा गया था। वो प्रभाकर पणशीकर जी हैं, राजा राम शिंदे जी थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं करूं क्या, तो बोले तेरा मन है तो कर, लेकिन तुम अपना कुछ शुरू करो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा।
1: वाह।
2: तो वो हिसाब से फिर सोचते सोचते भी सुनहरी यादें, फिर नाम क्या रखे।
1: हाँ।
2: तो एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, अभी वो दिल्ली में, उनका नाम नहीं मुझे याद, अशोक जैन करके
1: जी, जी, जी।
2: तो उन्होंने ये नाम का सुझाव दिया कि आप ज्यादातर पुराने गाने लोग पसंद करते हैं तो आप सुनहरी यादें नाम रखिए।
1: हाँ।
2: बहुत यूनिक और थोड़ा अलग सा है, प्रमिला नारायण ऑर्केस्ट्रा, और इससे सबसे पहले ही वो थोड़ा सा अच्छा लगता है नाम, क्योंकि पुराने गाने ज्यादा पेश करने का इरादा था उसमें।
1: वाह वाह
2: जी।
1: तो पहला शो कब हुआ था सुनहरी यादें?
2: पहला शो 1975 14 अप्रैल
1: जी,
2: जो दिन गुड़ी पाड़वा था, हमारे साल शुरू होता है गुड़ी पाड़वा के दिन।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
2: तो उस दिन 14 अप्रैल को मैंने पूना के बाल गंधर्व थिएटर में पहला शो किया।
1: क्या बात है
2: जी,
1: हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है।
2: मुहूर्त माना,
1: क्या बात,
2: हमारे 3.5 मुहूर्त बोलते हैं अच्छे जिस दिन, उनमें पाड़वा बहुत अहमियत रखता है, गुड़ी पाड़वा।
1: क्या बात है
2: जी।
1: ये सिलसिला शुरू हुआ मगर उससे पहले आप मराठी फिल्मों के लिए गा चुकी?
2: हाँ, फिल्मों के लिए गा चुकी हूँ। जैसे मैं कहना अन्ना जी के साथ घरकुल करके पिक्चर था अन्ना जी का, वो हाउस ऑफ बैम्बू मन्नादा के साथ गाना था।
1: हाँ, हाँ,
2: तो मेरे लिए तो इतना अच्छा मौका था, वो सुवर्ण संधि बोलते हैं कि मन्नादा के साथ मैं गाना गा रही हूँ। वो गाना अभी भी लोग याद करते हैं, पप्पा संगा कुणा से, वो जो गाना है मुझे देखते ही पप्पा संगा, छोटे बच्चे भी पप्पा संगा कुणा। मुझे याद है, छोटे से किस्सा है, मैं अमेरिका गई थी
1: जी।
2: मेरी एक पोती वहां रहती है, मैं छोटी सी थी, 4-5 साल की। तो मुझे देख के ऐसे हो गई, तो क्या हुआ उसको? तो बोले हमने उनको बोल दिया है कि पप्पा संगा को ना चाहिए, ये आजी ने गाना गाया है। तो वो इतनी खुश हो गई, मुझे बोली तू मेरे लिए गाओगी? तो मैंने हाँ जरूर गाओगी।
1: क्या बात।
2: बहुत मजा आया उस दिन बच्चों से लेकर।
1: तो 14 अप्रैल को जो पहला शो सुनहरी यादें का हुआ
2: जी,
1: तो पहले शो के लिए आपने गीतों की जो फहरिस्त बनाई होगी, लिस्ट बनाई होगी, आपको याद है?
2: इतना सा तो नहीं, लेकिन एकदम मराठी लावणी और पुराने गीतों में वो जो तुम न जाने किस जहां में खो गए, अजीब दास्तां है ये, इस तरह के सब पुराने गाने हुआ करते थे उस वक्त।
1: बिल्कुल। जो आपने जितने शो किए हैं उसकी बातें होंगी, बहुत से कलाकारों के साथ आपने टूर्स किए हैं उनकी भी बातें होंगी, मगर साथ में आपके पसंदीदा गीतों की भी बात होगी। आप किसी गायिका से ये पूछना कि आपके पसंद का गाना कौन सा है जरा मुश्किल है,
2: राइट?
1: तो फिर भी पहला गाना इस कार्यक्रम के लिए आप कौन सा चुनना चाहेंगे?
2: मैं ऐसे एक नॉन फिल्मी गीत है मुझे हाँ। वो बहुत पसंद है, वो आज जाने की जिद ना करो।
1: क्या बात,
2: आई लव दैट सॉन्ग। बहुत अच्छा।
1: अलग अलग गायिकाओं ने अलग अलग मौके पे
2: ऐसे मैं
1: है।
2: मेरे शो में एक मेडली करके एक आइटम पेश कर दी थी, अलग अलग गायिकाओं के गाने हुए
1: जी,
2: उसकी झलक उसमें मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, रेशमा
1: जी
2: और ऐसे सब गायिकाओं के, सलमा आगा गाने एक एक अंतरा, वो लोग बहुत पसंद करते थे उस आइटम को जी।
1: तो आप एक लाइन इसकी गुनगुनाइए।

0: प्रमिला जी, अब आपके बचपन की ओर चलते हैं। बचपन कहाँ बीता?
1: बचपन बहुत मतलब जैसे मध्यम वर्ग बोलते हैं।
0: जी जी।
1: मेरे पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे, उसी स्कूल में मैं पढ़ी।
0: ये किस शहर की बात हो रही है?
1: बम्बई।
0: अच्छा, मुंबई। मुंबई में?
1: गिरगांव में।
0: गिरगांव
1: में हमारा रहना भी वहाँ था।
0: मुंबई
1: सब चाल थे सब
0: जी,
1: ऐसे
0: जी, जी, जी।
1: और वैसे चाल थे लेकिन पूरा चाल एक कुटुंब जैसा था।
0: हाँ, हाँ।
1: किसी घर में कोई कुछ कार्य हो जाए पापड़ बेलना सब
0: मिलकर
1: सब मिलकर काम करते थे, बहुत मजा आता था। लेकिन पूरा एक चाल कुटुंब जैसा था और सब सब गणपति दिवाली सब त्योहार इतने अच्छी तरह से मनाए जाते थे कि जैसे कि लगता था हम सबका एक ही त्योहार है और सब लोग मजे कर रहे हैं, बहुत ही मजा आता था। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, मेरे पिताजी ने बाहर होटल में चार आने की चाय कभी नहीं पी जाके।
0: अच्छा।
1: लेकिन घर में दूध सब सब इतना खाना का माहौल इतना अच्छा सकस खाना मिलता था घर में। बाहर खाने का उस वक्त इतना सा बहुत शौक नहीं था लोगों को, जो घर में बनता था वो ही अच्छा बनता था। तो बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं थी इसलिए कि स्कूल के दिन से मुझे गाने का जो शौक था, मुझे गाने तो पसंद थी मेरी। तो हमारे स्कूल में नाश्ता नवरंग करके बहुत ही बड़े अच्छे गुरुओं के हिसाब से बहुत अच्छे थे।
0: अच्छा।
1: तो उनके क्लासेस चलते थे मेरे स्कूल में।
0: अच्छा।
1: तो इसीलिए जाना हुआ।
0: हाँ।
1: कहने का मतलब यह है कि हम गिरगांव में रहते थे और गिरगांव से दादर भी नहीं भेजते थे अगर दादर में क्लास होता तो।
0: अच्छा, अच्छा।
1: तो बहुत ही स्कूल में था और स्कूल खत्म करके अपना क्लास खत्म करके घर आ जाए और घर का स्कूल 5 मिनट का रास्ता था चलने का।
0: अच्छा।
1: तो इसलिए वो सब इतना सुविधाएं थी तो उसकी वजह से वो हो गया। पहली बार मैं मुंबई से बाहर गई, मैंने SNDT कॉलेज में गई क्योंकि वहां म्यूजिक एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स था।
0: जी, जी।
1: तो SNDT कॉलेज में गई तो यूथ फेस्टिवल हुआ करता था दिल्ली में। तो यूथ फेस्टिवल में हमारा एक नाटक करके
0: संगीत शारदा। जी, जी।
1: तो स्कूल के दिनों में मैंने उसमें कोदंड की भूमिका निभाई थी।
0: अच्छा।
1: मेरी आवाज जरा भारी थी, जाड़ी थी।
0: हाँ,
1: तो पुरुष के गायक के लायक थी।
0: अच्छा।
1: और हाइट भी अच्छी थी।
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: मैं कोदंड और दूसरी शारदा, फिर मैं कोदंड का रोल किया है, कृष्ण का रोल किया है, नारद का रोल किया है स्कूल में। तो स्कूल
0: के ये महिला विश्वविद्यालय
1: स्कूल की बात कर रही हूँ, महिला विश्वविद्यालय में हमने वो शारदा नाटक, शारदा का भी एक हल्दी कुंकू जो होता है उसका सीन था।
0: अच्छा।
1: तो वो हमने उधर किया यूथ फेस्टिवल में। तो पहले बार मैं बम्बई छोड़ के अकेली दिल्ली गई यूथ फेस्टिवल के।
0: अच्छा,
1: बाकी
0: अच्छा।
1: फ्रेंड्स वगैरह थे साथ, बहुत मजा आया दिल्ली में। और पहली बार गए थे तो ऐसा क्या देखो और क्या नहीं ऐसा हुआ था।
0: क्या बात है,
1: बहुत मजा आया।
0: उस संगीत शारदा से कोई नाट्य पद जिसकी एक लाइन आप सुना
1: जरूर सके? जरूर।

0: वाह वाह, क्या बात है।
1: बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि संगीत नाटक जो हुआ करता था मराठी में महाराष्ट्र के मंचों पर, उसका एक स्वर्णिम युग था। और तब स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, भूमिका नहीं करती थी,
2: नहीं करती,
1: पुरुष पर, तो पुरुष किया करते थे, जिसके लिए नारायण राजहंस यानी बाल गंधर्व जाने जाते हैं।
2: राइट, राइट।
1: और बहुत से केशवराव भोसले हुए, बहुत से ऐसे कलाकार प्रसिद्ध हुए अपनी उन स्त्री भूमिकाओं के लिए।
2: यहाँ उल्टे मामला हुआ,
1: और मामला उल्टा हुआ, आपने पुरुष की भूमिका इस नाटक में निभाई थी।
2: हाँ जी।
1: जीवन में वो कौन सा अवसर था, वो कौन सा समय था जब पहली बार संगीत उद्योग से या फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ एक अवसर आपकी झोली में ऊपर वाले ने डाल दिया?
2: एक तो एक यूथ फेस्टिवल का ये था, हमारे जब मैंने जो पेश किया उसको बख्शीश भी मिला, प्राइज भी मिला। और बाद में मैं एक फिल्म डिवीजन की छोटी सी वुमेन्स एजुकेशन करके फिल्म बनाई थी उन्होंने, तो उसमें भी मैंने रोल किया था।
1: अच्छा।
2: क्योंकि एक वहाँ के लोग, दो तीन लोग हमारे स्कूल में आए थे शाला में कि किसको मतलब चुना जाए इस रोल के लिए, तो हम 10-12 लड़कियां खड़ी थी तो उन्होंने मुझे चुना। और वुमेन्स एजुकेशन करके एक शॉर्ट फिल्म थी। पहले जमाने में पिक्चर से पहले ये सब फिल्म डिवीजन वाली छोटी छोटी फिल्में दिखाते थे, अभी तो वो मामला बंद हो गया शायद, फिल्म डिवीजन भी चालू है नहीं पता। तो वो पहला मौका मिलना चाहिए ऐसा कहना चाहिए।
1: हाँ।
2: फिर बाद में कॉलेज में गई मैं, तो कॉलेज में बीए किया मैंने म्यूजिक लेके, तो म्यूजिक एक सब्जेक्ट था, बाकी और भी सब्जेक्ट थे उसमें बीए तक। और बीए का वो एग्जाम हुआ और इंटर में जब थी मैंने 16 साल की, तब शादी हो गए।
1: अच्छा।
2: 42 साल का मेरा जन्म है।
1: हाँ।
2: और 58 को शादी हो गई, 16 साल की।
1: हाँ।
2: तो 58 को शादी हो गई, फिर मैं ऐसे घर में, तो बीए हो गया और मैं बैठ गई घर में, मतलब अभी 20 साल की मैं हो गई तो पहली बेटी हो गई। तो 1962 में
1: जी
2: उसका बेटे का जन्म हुआ। फिर बाद में इन्होंने ही मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने
1: जी,
2: कि अभी तुम्हारा गाना इतना अच्छा है, तुम कर रही हो तो क्यों रोकती हो, एमए करो। एमए में इंटायर म्यूजिक था एसएनडीटी में।
1: हाँ।
2: तो उनकी बदौलत मैं एमए करने के लिए गई।
1: वो
2: घर में भी ऐसा सुविधा थी कि मेरी सासू जी थी।
1: हाँ।
2: और बहुत अच्छी तरह से वो, मतलब बेटी घर में हो तो थोड़ा सा मतलब जिजिक होती है।
1: हाँ।
2: कि जाओ कि नहीं, तो वो तरफ से कोई मुझे चिंता नहीं थी, कि वो बहुत अच्छी तरह मुझसे भी ज्यादा अच्छा संभालती थी बच्चों को। तो 62 में मैंने एमए किया फिर।
1: वाह।
2: और फिर एमए किया और फिर 68 में पहला मौका आया तलत साहब के साथ।
1: अच्छा।
2: हाँ, तलत साहब के साथ एक नंदी दुगल करके प्रमोटर थे, तो मेरे हस्बैंड लायंस क्लब के मेंबर थे। तो वहां पे मैं इधर उधर एक दो गाने चली, प्रमिला जी आप गाने गाइए, कुछ फंक्शन हुआ लायंस क्लब का, तो नंदी दुगल जी ने सुना मुझे और मुझे आए, उन्होंने पूछे कि आप चलेगी कि हमने चलेगी
1: दौड़ेगी
2: जाऊंगी कूदते जाऊंगी। तो तलत साहब के साथ ये ऐसा अच्छा मौका मिला। 3 महीने का वो टूर था हमारा।
1: क्या बात।
2: और 2 बेटियां, एक 4 साल की, एक 6 साल की, लेकिन सासू जी थी तो वो कोई चिंता नहीं थी घर की। मैं बिंदास चली गई और बहुत कुछ सीखने को मिला तलत साहब से। और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे जो प्लेबैक बड़े बड़े लेजेंड्स है
1: जी जी,
2: उनका यहाँ वहां इतना नाम था वेस्ट इंडीज में, हमको मतलब देखा हुआ जाके कि कोई गाने ऐसे थे तो तलत साहब हमको ये गाना मेरा है ऐसा पूछते, इतना उनको भी याद नहीं थे उनके गाने, ऐसे ऐसे गाने को लोग फरमाइश देते थे। बहुत मजा आया टूर में, उनसे वो सीखने को मिला।
1: तलत साहब को आपने याद किया तो कोई गाना उनका इस वक्त हम सुनाए अपने श्रोताओं को। तलत साहब ने मराठी में भी गाने गाए हैं।
2: मराठी में गाने थे
1: जी। हाँ। जी।

0: बहुत ही सुंदर सा ये गीत सुजाता फिल्म से अपने श्रोताओं को हमने सुनाया। प्रमिला जी, फिर एक बार सुनहरी यादें के बारे में हम बात करते हैं कि इस शो को लेकर के आप अलग अलग देशों में घूमी हैं।
1: घूमी
0: जी, तो पहला टूर जो था वो किस देश का था?
1: नहीं, सबसे
0: पहले वेस्ट इंडीज के बारे में बताया।
1: ज्यादा तो जी
0: वेस्ट इंडीज आप तलत साहब के साथ,
1: तलत साहब के साथ गए।
0: हाँ।
1: फिर उसी को नंदी दुगल जी ही थे
0: जी
1: प्रमोटर अगली बार।
0: हाँ, हाँ।
1: तो उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ,
0: हाँ हाँ,
1: जाने के लिए। मैंने कहा बाबा भाई, मेरे जीवन में इतना अच्छा मौका और किसको नहीं मिलेगा।
0: जी, जी।
1: तो किशोर दादा के साथ ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया हमने, टूर किया।
0: अच्छा,
1: ईस्ट अफ्रीके का।
0: हाँ, हाँ।
1: उनके तो क्या एक किस्से में, सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी, नाम भी नहीं था, ना तो प्लेबैक गाया हुआ था फिल्मों के लिए। तो उन्होंने पहले ही शर्त डाली कि मैं दो गाना डुएट नहीं गाऊंगा।
0: हाँ।
1: मैंने कहा बाबा दादा आप बड़े हैं।
0: हाँ।
1: और आपको कोई बोलेगा नहीं मेरे साथ डुएट गाए। तो मैं अपने गाने गा के, मतलब शो की शुरुआत में पहली एंट्री मेरी होती थी।
0: जी,
1: तो उस वक्त ये गाना बहुत मशहूर था, दम मारो दम। तो दम मारो दम गाना उषा उत्तम जी की रेंज और आशा भाई की रेंज,
0: हाँ।
1: तो दोनों में मैं संभालती थी कैसे भी करके।
0: अच्छा।
1: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो गाना, तो इनवेरिएबली हर प्रोग्राम में वो गाना वंस मोर होता था।
0: अच्छा।
1: दम मारो दम।
0: हाँ, हाँ, हाँ।
1: तो किशोर कुमार जी मेरे बाद उनकी एंट्री थी
0: जी, जी।
1: तो स्टेज पे आए थे, दम मारो दम ऐसा करते थे।
0: अच्छा।
1: तो वो कहा मैं कहा, फिर भी मुझे मतलब, और बहुत बहुत अस्वस्थ रहते थे उनको, जो मैंने नोटिस, हाँ, किया। हाँ, उनको
0: जी, जी।
1: इतने बड़े, बहुत बहुत ही बड़े सर, सब गायक कलाकार लेजेंड्स हैं, लेकिन शो शुरू होने से पहले जो स्टेज के बाजू में जगह रहती वहां शेर कैसा है, इधर उधर इधर ऐसा घूमते, बहुत अस्वस्थ रहते थे।
0: जी, जी।
1: और उनका अब्दुल था मैन फ्राइडे, वो अब्दुल मेरा टॉवल का है, अब्दुल मेरा ये का है, अब्दुल मेरा। और एक बार स्टेज पे गए, छूट गए फिर। मेरी ये नसीब में इतना अच्छा है थे कि आपने तीन चार गाने गा के,
0: हाँ,
1: ये लोगों को सामने से सुनते बैठू, बहुत ही भाग्य था मेरा इस बारे में। रफी साहब को,
0: किशोरदा ने फिर मंच पर कोई ड्यूएट आपके साथ?
1: ड्यूएट नहीं गाया,
0: नहीं गाया। अगर किशोरदा को याद करने के लिए कोई गीत हम सुने तो कौन सा होगा वो?

0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और लोगों ने क्या कहा जब आपने मंच पे प्रस्तुत
1: लोगों ने
0: किया?
1: बहुत नाम भी रखे,
0: हाँ।
1: क्योंकि ये क्या है, बोल
0: मतलब टीका टिप्पणी की, आप जो
1: टीका टिप्पणी की,
0: जी, जी, जी।
1: वो मेरे लिए अच्छी थी, साबित हुई।
0: हाँ।
1: उसकी वजह ये है कि लोगों टीका टिप्पणी मतलब ये, अब 3 घंटे स्टेज पे खड़ा होना, कंपेयरिंग मैं ही करती थी,
0: अच्छा,
1: खड़ा होना, गाने गाना, फिर बाकी सब म्यूजिशियन को संभालना, ये भी बातें आती थी उसमें।
0: जी, जी।
1: तो ये जिनको मालूम नहीं कि इसमें कितने कष्ट है या इसमें कितनी कठिनाइयां हैं, तो लोग क्या, हाँ हाँ, वो दूसरे के गाए हुए जो पॉपुलर गीत है वही गाती है,
0: अच्छा,
1: हाँ, मतलब अपना कुछ नहीं, ये उनका शायद रोक होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन फिर उसमें मैं किसी की नकल नहीं कभी करती थी,
0: हाँ।
1: लता जी, आशा जी, गीता दत्त, मैं अपने ढंग में। फिर अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं एक पिछले 4 साल से
0: जी।
1: लोगों ने कहा कि अब तू खाली बैठे बैठे क्या कर रही हो, इतने सालों से शोध बन के इतने साल हुए, कि कुछ करो, कुछ लिखो, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस,
0: अच्छा।
1: कितने होंगे जो 25 साल के टूर किए या प्रोग्राम किए। तो मुझे उससे ये मिल गया कि सूचना कि कुछ तो करना चाहिए अभी बैठ के नहीं काम। तो मैंने अपना ये लिखना शुरू किया, एक छोटा छोटा एक्सपीरियंस,
0: अच्छा।
1: जो मुझे बहुत सारे दरमियान आए
0: हाँ,
1: थे,
0: हाँ, हाँ।
1: तो वो शुरू किए। बाद में वो किसी

0: में प्रेम, शांति और खुशियों का वातावरण बना रहता है। वो परिवार को एकजुट रखने वाली शक्ति होती है, इसलिए
1: मेरी आवाज नहीं जाती। आशा भाई जो रेंज में मतलब उनके सबके रेंज में, अभी उम्र के हिसाब से भी पहले मैं उनके रिकॉर्ड के स्केल में गाती थी पहले
2: जी,
1: गाने
2: जी।
1: अभी नहीं आवाज जाती है, काली एक, काली पांच, काली हाँ, एक तक जाती हाँ, हाँ। तो मैं अपने हिसाब से वो गाना गाती हूँ ना, थोड़ा सा मैं अपनी वैरायटी करती हूँ जो मुझे ज्ञान मिला है क्लासिकल म्यूजिक का
2: हाँ।
1: तो इसलिए लोगों ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि तुम जो गाना गाती हो वो तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि मेरे स्टाइल में वो मैं गाती हूँ। ये मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है और वो उसको मेरा उत्साह और बड़ा करीब करीब अभी मैंने 700 गाने रिकॉर्ड करके हारमोनियम पे से
2: क्या बात है
1: भेजे।
2: अच्छा।
1: कभी कभी अगर फास्ट गाना हो तो तबला मशीन साथ में लेके उसके साथ गाए, लेकिन बहुत सारे गाने मैंने ऐसे ही गाए बजाता है, मुझे भी अच्छा लगता है।
2: तो इसमें आपने किसी नए सिंगर का गाना गाया हो ऐसा भी होगा?
1: नए में मुझे नहीं याद आता है, अलका याग्निक का एक गाना गाया शायद, अलका याग्निक का।
2: अच्छा।
1: मोह मोह के धागे,
2: मोह मोह के धागे दम लगा के रहेशा, इस फिल्म
1: दम लगा के रहेशा उसका
2: गीत, लेकिन आपने ट्राई किया है, आप पे गाया है हारमोनियम पे
1: मोह मोह के है
2: तो और इसकी एक झलक हमारे श्रोताओं को।

आप जब सुनहरी यादें में गीतों का चयन करती थी कि आज मंच पर ये गीत हमें प्रस्तुत करना है, तो अलग अलग गायिकाओं के गीत, उस हर गीत को अपने ढंग से अपनी तरह से गाना है, ये आपका हमेशा से।

0: जिसमें तुम कंफर्टेबल हो उसी रेंज में गाओ ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल, ये नए गाने सीखने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है।
0: ऐसा लगता है कि मैं अनुभव से ये कह रही हूँ।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल अनुभव।
0: क्योंकि आजकल वो जो कैरियों के जो प्रकार आया है ना,
1: जी जी
0: आई हेट दैट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी गाता हूँ, मैं भी गाता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ सीखो, अच्छी तरह से तालीम पाओ, और इतना आसान नहीं है। नहीं तो एक ही लता मंगेशकर, एक ही आशा भोसले नहीं होती थी, बहुत सारे निकलते थे गली चौड़े में।
1: क्या बात है, तालीम बहुत जरूरी है। क्लासिकल बहुत ही सीखना कितना जरूरी है आपको लगता है?
0: बहुत, पहले 3-4-5 साल तो, फिर साइड बाय साइड तुम गाते रहो लाइट म्यूजिक
1: जी,
0: लेकिन आवाज की तैयारी, जो हरकतें मुरकतें, फिर अपने गले से नहीं है तो कोई अपने हिसाब से लेता है। दैट इज नॉट, मैं अलग गाती हूँ वो बात अलग है, लेकिन ओरिजिनल उनका गा के फिर मैं जो मेरा मेरे हिसाब से करना होता है कुछ जो वैरायटीज वो करती हूँ। बहुत सारे गाने ऐसे उसमें मैं करती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले उनके जैसा गाओ, मतलब वो जो हरकत है वो ऐसी ही आनी चाहिए,
1: जो ओरिजिनल है पहले वो तो गाओ।
0: हाँ। नकल नहीं आती उसमें जी, लेकिन जी, जी। उसमें आवाज की तैयारी भी हो जाती है।
1: हाँ।
0: और वो हिसाब से बहुत जरूरी है। आवाज अच्छी है मैं भी गाती हूँ वो गाना नहीं होता, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं।
1: बिल्कुल सही।
0: तो ये जो बड़ो बड़े जो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गवाई तपस्या में
1: जी जी,
0: वो क्यों कर देते इतना?
1: बिल्कुल
0: ऐसे ही गाते थे ना।
1: सही बात, बिल्कुल सही। मन्नता की बात करते हैं, आपने पहला गाना मराठी में उनके साथ रिकॉर्ड किया, संगीतकार थे श्री रामचंद्र, तो मन्नता को किस तरह से आप याद करना चाहेंगी? आपने उनके साथ शो भी किया?
0: एक शो किया बड़ौदा में।
1: अच्छा,
0: मन्नता ने मुझे एक मतलब एक उनको मैंने पूछा था कि मेरी प्रॉब्लम थी कि हम लोग बड़ौदा में बाय ट्रेन जा रहे थे।
1: हाँ।
0: तो मेरी आवाज में वो जो मॉड्यूलेशन होता है।
1: हाँ।
0: जो लाइट म्यूजिक के लिए बहुत ही जरूरी है।
1: जी, जी।
0: क्लासिकल में आप प्लेन सुर लगाओ और वही सुर अगर आप लाइट में गाते हो तो उसमें मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है।
1: हाँ।
0: तो फ्लैट लगेगा और
1: जी,
0: भाव
1: जी।
0: नहीं आएंगे उसमें। हाँ। तो मेरी आवाज में नहीं था, किसी के आवाज में जाता होता है किसी के आवाज में। तो मैंने मन्नता को पूछा कि मन्नता ये कैसा लाने का अपने आवाज में।
1: हाँ।
0: तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे बताया कि एक सुर लगाओ और उसमें ऐसे आघात करते जाओ।
1: अच्छा।
0: और मेरे आवाज में अपने आप आ गया वो सब रियाज करके।
1: क्या बात,
0: बहुत ही अच्छा। फिर भी उन्होंने ये भी बोला।
1: हाँ।
0: कि ज्यादा नहीं करना।
1: हाँ, हाँ।
0: लेकिन कंप होगा तेरे आवाज में। बहुत ही
1: अच्छा।
0: उनका और मेरा जो डुएट है हाउस ऑफ बैम्बू,
1: जी जी,
0: तो ये नॉन मराठी लोग जो उनके च मराठी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
1: हाँ।
0: तो एक लाइन थी ऐसी वो गाने में,
1: जी जी,
0: बांबू चा वना च ज बहुत से, बांबू चा वना झऱ्या चा काठी, ये शील सजणे सजने माझाच पाठी।
1: बिल्कुल, उनके लिए टंग ट्विस्टिंग
0: बहुत बहुत। तीन बार हुआ, चार बार हुआ, इतने या अन्ना तेरी मराठी भाषा मेरे को नहीं होगा। अन्ना बोले डरो डरो डरो, मैं कुछ करता हूँ। तो उन्होंने वो नीचे डांट वगैरह देते हैं उनको बराबर करके लाइन में।
1: क्यों ना इस गीत की एक झलक आप सुनवा दे हमें,
0: हाउस ऑफ बैम्बू।
1: जी जी,
0: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर, नंबर 54 द जिसे मॉड्यूलेशन फोर की उसके कम करना, उससे ज्यादा फोर्स में गाना वो भी डिपेंड करता है।
1: जी जी जी,
0: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर, हो बांबू चे घर बांबू चे दार, बांबू ची जमीन पिवळी शार, बांबू चे घर बांबू चे दार, बांबू ची जमीन पिवळी शार, बांबू चा घरात आहा आहा स्वप्नाचा झुला लला लला, झुलवित राहील पापा पापा तुला ने मला, नंबर 54 है द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर, नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर।
0: उनका तो क्या,
1: वाह वाह। मन्नता अपने क्लासिकल सिंगिंग के लिए ज्यादा जाने जाते हैं।
0: जी जी जी,
1: हालांकि हर गाना क्लासिकल बेस ही होता है।
0: हाँ।
1: मगर प्योर क्लासिकल गाने प्योर जिनको कहा जाए, जो लाइट कमर क्लासिकल ज्यादा लगते हैं, ऐसे उनके कई गाने।
0: लेकिन दूसरे सिंगरों में भी लक्ष्मी साहब थे, क्लासिकल गाने हैं, ऐसी बात नहीं।
1: बहुत से भी,
0: लेकिन उनका जो आवाज में जो ये था दर्द या भारीपन था आवाज में, वो उसमें बहुत असर करता था गाने पे, ऐसा मुझे लगता है। मुझे उनका एक गाना बहुत पसंद है, मेरे प्यारे वतन।
1: वाह,
0: बहुत अच्छा, थोड़ा सुना था।

0: क्या बात है,
1: बहुत अच्छा। ये गाना गाते वक्त रोना आता है, जो एक अंतरा है माँ का दिल बन के कभी तू सीने से लग जाएगा, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता।
0: वाह वाह,
1: बहुत अच्छा
0: लिखावटी गाना।
1: गाने लिखे जाते थे, गाए जाते संगीतकार।
0: जी जी जी, प्रमिला जी इतने शोज आपने किए हैं और बहुत नामचीन कलाकारों के साथ भी आपको मंच पर गाने का मौका मिला है। हम रफी साहब को अभी याद करते हैं, रफी साहब के साथ।
1: रफी साहब तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर है उनके। उनके साथ बहुत सारे टूर किए, साउथ अफ्रीका, फिजी, मिडिल ईस्ट, फिर जाम्बिया, मलावी, बहुत टूर किए रफी साहब के साथ। और जो उनसे सीखा है ना, मतलब सिर्फ गाना नहीं, स्वभाव के हिसाब से भी इतने नम्र, और जितना ऊंचा आदमी उतना नम्र स्वभाव। और उनको किसी ने सवाल पूछा है, पत्रकार परिषद थी, कि आप गायक तो मतलब चोटी के हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप साथ साथ थोड़ा कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन में क्यों नहीं आप हाथ अपना आजमा दे? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो कर रहा हूँ, मतलब मेरा गाना, उसमें ही मुझे नहीं लगता कि मैं परिपूर्ण हूँ, तो मैं और क्या करूँ, और किसमें हाथ क्यों डालूँ?
0: विनम्रता की हद है,
1: हद है, हद है।
0: ओ, ओ, ओ, ओ।
1: और इतने नम्र दूसरे अपने साथ में कलाकार, मैं तो उनके सामने बहुत ही छोटी थी, लेकिन जो तारीफ करनी होती है। तो एक दिन मैंने नए नए गाने हम लोग चुनते थे, वो मैंने वो कव्वाली गाई, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, तो उसमें एक तो बड़ी लंबी चौड़ी, उसमें सरगम भी थी, उसमें तान भी थे, तो वो गाया तो लोगों को भी बहुत, साउथ अफ्रीका की याद है
0: जी जी,
1: बहुत पसंद आया लोगों को, वो गाना ही ऐसा है। तो रफी साहब सब लोग बैठे थे, हम प्रोग्राम खत्म हुआ, तो प्रमिला जी आजकल बहुत कठिन कठिन गाने चुन रही है अपनी तरफ से उन्होंने जो दाद दी है।
0: जी जी, क्या बात, वाह वाह,
1: बहुत अच्छा लगा।
0: रफी साहब के इतने सारे गाने हैं
1: जी,
0: मगर उनका कौन सा गाना आपको ज्यादा पसंद है?
1: ज्यादा पसंद नहीं बोलूंगी, सबसे सब पसंद कि ये जो गाना है उनका, तुम जो मिल गए हो,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: जो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो गाने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी है, और तुम जो मिल गए हो
0: जी जी,
1: हाँ, हंसते जख्म
0: जी जी,
1: तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है,
0: हंसते जख्म फिल्म का। जी बिल्कुल वही सुनते हैं।

0: और दूसरे दिन मुझे टूर पे जाना था, 8 दिन का टूर था।
1: अच्छा।
0: घर में सासू जी थी।
1: हाँ।
0: लेकिन मैंने बोला नहीं अम्मी मैं टूर कैंसिल, क्योंकि वह सब अचानक आया।
1: हाँ, हाँ।
0: प्रीप्लान तो हमारा टूर था, तो बोला नहीं मैं कैंसिल करती हूँ, कोई बात नहीं जो नुकसान होगा वो भर देंगे उनका।
1: अच्छा।
0: और बहुत जल्दी इत्तला कर रहे हैं तो उनको भी सुविधा हो जाएगी कैंसिल करने की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: अच्छा।
0: तुम कैंसिल नहीं करोगी, तुम जाओ वही नहीं, मतलब हम सासू जी को वही नहीं बोलते थे।
1: अच्छा।
0: वही नहीं मेरे पास है, वो देखेगी, तुम बिंदास जाओ।
1: ओहो।
0: उस वक्त फोन भी ये भी कुछ नहीं था।
1: हाँ,
0: तो बीच में प्रोग्राम के बाद ट्रंक कॉल बुक करो।
1: हाँ,
0: फिर वो आधे पौने घंटे के बाद लगे।
1: हाँ,
0: तो ऐसे सब होके भी उन्होंने, ऐसे एक इंसिडेंस है।
1: हाँ,
0: ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए जिसमें उन्होंने जो मेरा साथ दिया है।
1: हाँ, हाँ,
0: वो मेरे लगा दुनिया में किसी हस्बैंड अपनी वाइफ को देगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कितनी भाग्यशाली आप हैं।
0: बहुत बहुत, मैं तो बोलूं आपको हर स्तर में मैं भाग्यशाली हूँ।
1: जी जी जी।
0: बचपन से गाना सीखने को उत्तेजन मिला, फिर मौके मिलते गए, कंपटीशन में भाग लिए, फिर प्रोग्राम शुरू किए।
1: हाँ।
0: फिर रसिकों के आग्रह से और रसिकों के मिला मुझे उनका साथ मिला, उससे वो चले, बहुत चले, 25 साल तक किए। बीच में ये सब रफी साहब जैसे उनके साथ ये टूर हुए
1: जी।
0: तो मेरा जो एक आयुष्य का आलेख बोलते हैं जिंदगी का
1: जी।
0: वो चढ़ उतार रहता है, ऐसा बोलते हैं कभी कभी चढ़ कर, तो मेरा शुरू से लेकर चढ़ता ही जा रहा है।
1: वाह वाह।
0: इसलिए मैं ईश्वर के भी आभार और बाकी मेरे आसपास जो लोग हैं बाकी के,
1: हाँ, हाँ।
0: उनके भी आभार मानने चाहिए कि उनकी सबकी बदौलत ये सब हुआ।
1: क्या बात। परिवार की बात चली है
0: जी,
1: तो आपकी अगली पीढ़ी में
0: मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ गाती थी।
1: अच्छा।
0: शो में।
1: हाँ,
0: शुरू
1: हाँ,
0: से
1: हाँ।
0: मतलब उन्होंने तब कुछ कि मेरा ही वक्त हुआ, मैं कंट्रोवर्स कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने तब कोई सिखा नहीं था गाना।
1: अच्छा।
0: वो छोटी थी दोनों।
1: हाँ, हाँ।
0: तो उनका जाते उनके पास मतलब वो हुनर था, तो दोनों मेरे शो में गाती थी।
1: अच्छा।
0: हाँ, मतलब बाद में बड़ी बेटी की शादी हो गई तो छोटी पे बाहर आ गए।
1: बचपन से ही उन्होंने आपको गाते उन्होंने हुए देखा,
0: गाते देखा
1: है।
0: तो उन्होंने
1: तो वो
0: भी
1: गाती
0: वो
1: आप...
0: और लोग पसंद भी करते थे, ऐसे नहीं कि कचरा क्यों आए ऐसे ऐसे नहीं। और हम तब तो जब वो बड़ी हो गई तो मैं थोड़ी सी मतलब उनकी जैसी, हम तीनों जैसे, तो किसी ने एक बार स्टेज पे बोला, किसी ने आदमी ने आके बाद में, तुम तीनों बहने कितनी अच्छी दिखती हो स्टेज पे।
1: क्या बात।
0: बड़ी बेटी एकदम, ए हमारी माँ है वो, हमारी बेटी नहीं, हमारी बहन नहीं, बहन नहीं है।
1: क्या बात है, क्या बात, कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट।
0: बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट।
1: जी जी जी। अगर आपसे कहा जाए कि अपने परिवार के लिए एक गाना चुनिए तो कौन सा गीत होगा, आप तीनों ने मिलके जो स्टेज पर गाना गाया होगा?
0: हाँ,
1: ऐसा
0: हम लोग तीन डुएट भी गाते थे
1: जी,
0: वो
1: जी।
0: मन क्यों बहका रे बहका वो है, फिर कजरा मोहब्बत वाला वो है, फिर अन्ना जी का अपलम चपलम उस पे डाल भी होता था मेरे शो में, ऐसे सब डुएट गाने हम लोग ने। तो उसका पैटर्न गाना मेरी बड़ी बेटी का, पंख होती तो उड़ाती रे। फिर उसकी शादी हो गई तो दूसरे ने लिया वो, पंख होती तो, लेकिन वो गाना जरूरी था हमारे शो में, बहुत लोगों को पसंद।
1: यही गीत सुनवा दिया जाए श्रोताओं?
0: अरे बापरे।
1: रामलाल जी का कंपोजिशन है।

ये थी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। आज इस बातचीत का पहला भाग आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग अगले

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: ये है विविध भारती,
2: विविध भारती देश का रेडियो।
3: ओ मेरे पिया दे रंगून, पिया है वहां से टेलीफोन।
4: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें,
6: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
4: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
7: आज के फनकार।
4: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
7: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
8: सुनिए,
7: कहिए,
9: सुनिए एक खुशखबरी,
7: कहिए ना,
9: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
7: शुक्रिया, शुक्रिया।
9: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: प्रस्तुत है मुख्य समाचार। नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में बांग्ला भाषा में शपथ ली। बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने शुभेंदु के अलावा 5 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल के विकास को नया आयाम मिलेगा। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने आज गिरिडीह में सिविल सोसाइटी के साथ स्वच्छता को लेकर समीक्षा बैठक की। नगर निगम कार्यालय में हुई इस बैठक में उन्होंने शहर की साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर चर्चा की। इस मौके पर मंत्री ने बताया कि बैठक में जो विचार सामने आए हैं उसके अनुपालन को लेकर नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। डोरंडा स्थित पुराने हाईकोर्ट भवन में आज वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी ने शिक्षक नियुक्ति से जुड़े मामले में सुनवाई की। इस दौरान न्यायालय के समक्ष कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए गए जिसे अदालत ने लेने से इनकार कर दिया। कमेटी ने सरकार और जेएसएससी को अंतिम मौका देते हुए आगामी 16 मई से पहले मांगे गए दस्तावेज शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करने का निर्देश दिया। उत्पाद विभाग ने रांची में अवैध नकली विदेशी शराब के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 940 पेटी शराब बरामद की है। उत्पाद विभाग के अवर सहायक निरीक्षक दिलीप कुमार साहू ने बताया कि छापेमारी के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान एक चार पहिया वाहन और एक मालवाहक वाहन समेत 3 वाहन जब्त किए गए हैं। गढ़वा जिले के केतार थाना क्षेत्र में आज एक वाहन के पलटने से उस पर सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दोनों घायलों को भवनाथपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:02 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: कार्यक्रम किसानवाणी सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के अलका बहन दने से जोहार प्रणाम, और साथ ही वीरेंद्र भाई तो तोरा भी जोहार प्रणाम।
1: हाँ, जोहार प्रणाम अलका बहन। कार्यक्रम किसानवाणी सुनने सभी किसान भाई बहन के कार्यक्रम में स्वागत हन, जोहार हन, प्रणाम हन। और आज देखा कि हम बहुत कुछ बात करबे, लेकिन एकर जो प्रायोजक हथिन तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। तो सबसे पहला चीज है कि हम जो भी बातचीत आज करबे प्याज के भंडारण के बारे में, तो सबसे पहला किसान भाई बहन के दो तीन बात के हमेशा ध्यान देख चाहिए। जब भी हम कोई भी फसल के उत्पादन कर हुए, उत्पादन के साथ में ओकरा हम कब कटाई करबे, ओकरा रख रखाव कैसे करबे, ओकरा भंडारण कैसे करबे, ओकरा साफ सफाई कैसे करबे, आज ओकर बारे में हम चर्चा करबे।
0: बिल्कुल, देखा कि सबसे ज्यादा जरूरी ये है ना वीरेंद्र भाई, कि कोई भी फसल के जब हम भंडारण कर रहे हैं तो उसका सही तरीका से उसका सुखल रहे, नमी की मात्रा कम रहे, जगह के ध्यान रखिए, बहुत सारा चीज के बात के ध्यान रखे पड़ो है।
1: तो सबसे पहला चीज है, जैसे प्याज का जो हम भंडारण करबे तो उसका सबसे पहले प्याज के जो हम कोड़ाई करो है, सबसे पहला चीज ये ध्यान देवे की बात है कि हमारे तो प्याज तैयार हो जाए। तो प्याज जैसे जैसे हरियर रहे तो बी नीचे के भाग जो हुआ है, मतलब जरा तना कहल जाए है, जड़ से ऊपर मतलब प्याज के ऊपर के भाग है, धीरे धीरे पतला होके प्याज धीरे धीरे जब सूख के गिरे लग तो तब तू समझ जाएगा हमारे प्याज तैयार होल कोड़े लायक। अब उकरा जैसे प्याज जब कोड़ाई करके तू घर लानो हा तो उकरा दो बात का ध्यान रखे, सबसे पहले प्याज के पत्ता काट के हटा दा, और उकर बाद घर में एक बार उकरा रख के और आठ दिन बाद पुनः जो है फिर से एक बार सफाई कर रहा है। काहे कि आठ दस दिन बाद जब सूख जाए चौका जो हुए है खासकर पानी वाला वो पत्ता सब छोड़ दे। अब उकरा का करना हो भंडारण, हमारे यहाँ अगर देहाती रूप से उकरा भंडारण करल जाए, बांस के बढ़िया से बिचा ली, फटरी बना दिए हर एक दो दो फीट पर, यानी कि दो फीट का चौड़ा रखिए, और ओकर में मतलब चार इंची के लेयर से प्याज के हम रखिए एक पर एक करके, अगर ओकर में रखिए फिर एक लेयर के बाद फिर दूसरा तीसरा बांस के फटरी में रह तो ओकर में सबसे बेटर का ओकरा हवा लगो है, ओकरा गले का मौका ना मिले, और प्याज के स्टोरेज के क्षमता हो। सबसे पहले किसान भाई बहन के एक बात का यार ध्यान देख चाहिए कि अगर हम प्याज की खेती करोगे, प्याज वो वैसा प्याज लगे चाहे जे हमारे अंकुरित ना के बराबर हो, तो इस सब भंडारण के व्यू से देखल जाए। एक सिर्फ अगर उत्पादन का तुरंत बेचेक हो तो चला उत्पादन का तुरंत बेच, लेकिन कुछ प्याज पर निर्भर करो है, जैसे अंकुरित ना हो तो तुहर सड़तो ना, ये सब बीज के ऊपर डिपेंड करो है। बाजार में तो जब कि हमारा प्याज चाहिए भंडारण करे के रखे के है तो वही तरह तुम्हारा बिहन दे तो थोड़ा महंगा बिहन मिलते, तो शुरुआत ही दौर से ओकरा हमें देखे के चाहिए। प्याज में एक एक चीज के जो हो ध्यान दिया लायक बात जो हो अलका बहन, कि जब प्याज तू दोबारे अगर ओकरा साफ कर रहा है, यानी एक बार या आठ दिन बाद, फिर एक महीना बाद, ओकरा डेढ़ महीना बाद एक बार और सफाई करके ओकरा भंडारण के लिए रख सको। हाँ
0: बिल्कुल, देखा भंडारण के वास्ते कुछ कुछ छोटे छोटे बात जो हमने के ख्याल रखना चाहिए कि जमीन से ऊंचा पे रखना चाहिए, कहे कि डायरेक्ट जमीन पे नहीं रखना चाहिए, ताकि जे ओकर में नमी मतलब हवा मिलते रहे, और जालीदार रैक के उपयोग करे के चाहिए। और एक बारे में हमने और भी बातचीत दूसरा भी चर्चा करबे, लेकिन अभी रुके ही सुनाइए कुछ जरूरी संदेश।
1: तो सुनल जाए।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।
6: मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता।
5: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
7: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
5: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
7: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
5: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
7: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
5: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
8: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
9: तो अभी हमने सुना लिए जरूरी संदेश। एक पहले हमने जब बातचीत कही थी कि प्याज के भंडारण के बारे में, यानी कोई भी फसल के भंडारण में हमने कौन कौन सा तरीका अपनाइए कि हमने के फसल सुरक्षित रहते हैं। और वीरेंद्र भाई, आज के समय है कि खेती में आधुनिक तकनीक के प्रयोग करके हमने फसल के उत्पादन बढ़ाइए और खेती के तरीका बदलिए। तो आज के समय में है खेती के जो आधुनिक तकनीक, जो लोग क्या कहते थे कि लीज पर जमीन लेके खेती करते थे, बहुत मतलब आधुनिक जितना भी मशीनरी है उसके प्रयोग करके अपन फसल के उत्पादन करवेते थे। तो एक जो आधुनिक तकनीक है ओके में सबसे ज्यादा का चीज है कि कम लागत में अधिक उत्पादन हो जाए। जैसे कि अगर हमने कहला कि बीज हमने एकदम इलाज का अच्छा आधुनिक बीज हुए थो, सिंचाई के वास्ते ड्रिप सिंचाई हुए थो, यानी कि पानी के भीतर कम खपत हो, मल्चिंग और अच्छा मशीन के उपयोग करे से हमने के का हो जाए कि पानी के कम खपत हुए है, खाद के कम खपत हुए और समय के भी बचत हुए है। और नया तकनीक में तो सबसे बड़ी एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि मौसम के जानकारी भी आसानी से मिल जाए कि अभी के कुछ दिन के बाद कैसन मौसम रहतो। और कहला कि मोबाइल ऐप और जो कृषि वैज्ञानिक के सलाह रही है उस सब के माध्यम से भी किसान भाई बहन देखबा कि समय पर बुआई, सिंचाई और सही मात्रा में दवाई के छिड़काव पर भी निर्णय लेवो थी।
10: देखा कि सही बात तो बतेला है, लेकिन एकर में क्या है कि अपन मतलब समय में कृषि के नया तकनीक में जैसे कि कह लिए है, पहले हम बैल के माध्यम से खेती कर रही, अभी ट्रैक्टर के माध्यम से खेती कर रही है। पहले हमें अगर खेत में दवाई छिड़काव कर लिए, झाड़ू से दवाई का छिड़काव कर रही है, अभी नेक्सेप या गटोर या फिर ड्रोन के माध्यम से दवाई के छिड़काव कर रही है। उसके बाद देखा कि सबसे पहला कि तकनीक में बहुत कुछ चेंजिंग अले है कि पहले हमें घर के बीज लग बोलिए, अब है कि मतलब हाइब्रिड बीज के इस्तेमाल करो, संकर बीज के ज़्यादा इस्तेमाल हो ताकि उत्पादन अच्छा हो। और अब देखा कि बहुत तरह से आर चीज़ भी चेंजिंग भले है कि जहाँ पर हमें जैसे कि ज़्यादा रासायनिक खाद का जब प्रयोग कर लिए, अभी धीरे धीरे जैविक खाद के प्रयोग में हमें आवे लगल है, ओकर में सबसे बदलाव अभी होवे लगल है। ओकर बाद देखा कि अभी ड्रिप इरीगेशन मल्चिंग के माध्यम से जो खेती के प्रचलन हो, और एक अभी नया अभी आवे ला हो ईजाद हो हाइड्रोफोनिक तरीके से भी तो ओकर खेती कर सको, यानी कि पाइप के माध्यम से भी ओकर में खेती कर सको, बहुत तरह का भी ईजाद हो तो ओकरा कहल जाए नया तकनीक। और देखा कि सबसे बड़ा है कि किसान कम जगह में अधिक अगर उत्पादन करो, वो भी नया एक तकनीक हो है, और एक साथ तीन अगर फसल ले वो भी नया एक तकनीक हो है, जैसे कि एक साल में तीन फसल में ले सको ये। अगर टमाटर लगे लिए तो ओकर में अगर चाहिए कहीं कहीं हम अगर में अगर यदि फरसबीन के पौधा अगर दे दे जहाँ टमाटर मर गए तो ओकर से भी एक उत्पादन के जरिया बढ़ो है, जैसे से राइजो भी हम कल्चर मिलो ओकर से उत्पादन बढ़ो है। एक और हम तुम्हारा बात बतावे चाहबो कि खास करके एक उत्पादन बढ़ावे खातिर बहुत कुछ चेंजिंग करल गेल है भी, है ना?
9: बिल्कुल कि अभी समय के अनुसार देखे था कि बहुत कुछ बदलाव कर गए है। आधुनिक तकनीक में नया नया मशीनरी के भी प्रयोग होवे थे, जैसे खेती के मतलब स्तर काफी अच्छा हो गए है। लेकिन अभी हमने एक सुना ही एक जानकारी, जो जानकारी है
10: देखा कि जानकारी है, मेरा गांव मेरा गौरव योजना है भारत सरकार के, और ये जानकारी जो देवल हथिन डॉक्टर विशाल नाथ गौरियाकर्मा के हथिन, वहाँ पे पदस्थापित हथिन, प्रिंसिपल हथिन कॉलेज का और एक बड़ी वैज्ञानिक भी हथिन, तो इनकर जानकारी की सुनो ही
9: और इनका से बातचीत कर ले हथिन वीरेंद्र साहू, तो सुने जाए जानकारी भरल बातचीत इस योजना के बारे में।
11: किसान भाइयों नमस्कार, जोहार। और आज हम आए हुए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड गौरियाकर्मा हजारीबाग में स्थित है। तो आज हमारे साथ जो बातचीत करेंगे डॉक्टर विशाल नाथ, जो कि यहाँ के प्रधान वैज्ञानिक के साथ साथ प्राचार्य महोदय भी हैं, तो सबसे पहले कार्यक्रम में आपको स्वागत है, जोहार है।
12: जोहार सभी किसान भाइयों को, वो भी हमारे तरफ से जोहार।
11: तो डॉक्टर साहब, अभी कुछ योजना भारत सरकार का है, मेरा गांव मेरा गौरव करके एक योजना है सरकार की, तो इस योजना में भारत सरकार के माध्यम से किसानों को क्या क्या चीज के बारे में जानकारी दिया जाएगा, इसका बारे में संक्षेप में आप जानकारी दें।
12: जी बिल्कुल, ये बहुत ही एक अच्छी योजना है, जहाँ तक किसानों के हितों को ध्यान में रख करके जो योजना भारत सरकार द्वारा बनाई गई है, और इसका मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मेरा गांव मेरा गौरव। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश गांव में बसता है और गांव में हमारे किसान होते हैं, तो किसानों का मुख्य व्यवसाय या मुख्य पेशा कह लीजिए खेती का होता है। तो कृषि संस्थानों के लिए, विशेष करके हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के लिए, यह योजना एक बहुत ही बेहतर कनेक्ट के तौर पर किसानों से जुड़ने के उद्देश्य से ये बहुत ही एक साकार योजना है। और इस योजना के माध्यम से हम लोग गांवों को, डिफरेंट भिन्न भिन्न प्रकार के गांव को, जिसमें कहीं पशुपालन हो रहा हो, कहीं पर बागवानी हो रही हो, कहीं पर अन्य फसलों की खेती हो रही हो, ऐसी जगह पर हमारे वैज्ञानिक जा करके और किसानों से सीधा संवाद स्थापित करते हैं, और उसमें हमारा ये उद्देश्य होता है, हमारा ये प्रयास रहता है कि हम किसानों के छोटे छोटे जो प्रश्न, जिसको लेकर के किसान कहीं पर संस्थान नहीं जा सकते हैं, कहीं सरकारी संस्थाओं पे नहीं जा सकते हैं, वो खेती में अपने लगे रहते हैं, उनको वहीं पर जा करके उनके बीच में हम लोग बात करके उनका समाधान निकालें और उनको सही रास्ता बताएं। इसमें जो मुख्य उद्देश्य है, एक तो है कि आप जो कर रहे हो उसमें बेहतर कैसे किया जा सके, दूसरा जो आप नहीं कर रहे हैं और करने से आपकी लाइफ स्टाइल बेहतर हो सकती है, ऐसी चीजों की जो अद्यतन जानकारी है उसको भी हम किसानों के बीच में दें, जिससे कि आने वाले समय में वो उसका बेहतर उपयोग कर सकें और बेहतर तरीके से उसको लागू कर सकें। और मैं बताना चाहता हूं कि ये योजना कोई एक दिन की योजना नहीं है कि एक बार गए किसी गांव में और उसके बाद में वहां पर बात करके आगे, ये जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि एक कनेक्ट है, एक हमारा संबंध उस गांव से स्थापित हो जाता है, फिर वहां के किसान जो भी दिक्कत उनको होती है, कोई परेशानी होती है, कोई कीड़ा रोग बीमारी किसी चीज में आ जाता है, या उनको जिस भी तरीके की सलाह की आवश्यकता है कृषि या कृषि से संबंधित विषयों पर, वो हमारे वैज्ञानिक दल के साथ में, हमें जो बनाया है, डिफरेंट दल बनाए हैं वैज्ञानिकों के, करीब 5-6 ग्रुप हमारे बने हैं और उसमें हर विषय के वैज्ञानिक है, तो जो गांव में जो दल का कनेक्ट है वो उसके जो अध्यक्ष हैं उनसे बात स्थापित करके, वस्तु विषय जो विशेष विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं उनसे उस बारे में जानकारी प्राप्त करके और अपनी चीजों को बेहतर कर सकते हैं, तभी हम जो हमारा इस योजना का उद्देश्य है कि मेरा गांव और मेरा गौरव, यानी हमारा गौरव तभी बढ़ेगा जब हमारा गांव गौरवान्वित होगा, और इसी उद्देश्य से हमारा ये योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोचा था और इसको लेकर के हम लोग किसानों के बीच में जा रहे हैं।
11: यानी कि ये योजना का मतलब है कि सीधे मतलब हमारे कृषि वैज्ञानिकों के साथ और किसानों के साथ संवाद होगा, बातचीत यानी गांव में जाकर। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किसानों को किस प्रकार की सहायता किसानों के दिया जा सकता है इस योजना के माध्यम से।
12: अब आप देखिए, एक तो इसमें है कि जो ज्ञान तो ही है, जो हम किसानों के साथ, एक जैसा हमने बताया कि उनके साथ हमारा एक कनेक्ट, एक परिवार के तरीके से एक संबंध स्थापित हो जाता है। आपको कोई दिक्कत है, किसान को कोई दिक्कत है, आप उसको आकर के पूछ सकते हैं, टेलीफोन से उसका हम जवाब दे देंगे। इसके साथ ही साथ अभी हम लोगों का एक जो संदेश पूरे देश में हम लोगों का चल रहा है वो ये है कि हम लोग धीरे धीरे, जो हमारा संस्थान भी हमारा उसी उद्देश्य से बनाया गया था कि पूर्वी भारत में द्वितीय हरित क्रांति लाने के लिए जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों को बिना किसी क्षरण के, बिना किसी उनमें घटोत्तरी के हम विकास को सुनिश्चित करें। ये हमारा मैंडेट है हमारे संस्थान का। और देश के स्तर पर भी ये चीज देखी जा रही है कि आज हम रसायन मुक्त खेती के तरफ बढ़ रहे हैं, और उसमें विशेष करके ऐसे क्षेत्र जहां पर रसायनों का कम उपयोग है वहां पर ये चीज ज्यादा आसान हो जाता है, ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। और इसलिए जो हमारा अभी वर्तमान में जो इसका संदेश है कि हम किसानों को रसायन मुक्त खेती की तरफ किस प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं और उनको क्या क्या विकल्प दे सकते हैं, क्या विकल्प उनके पास उपलब्ध होगा, जो कि जिसे हम उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं खाद के बारे में बात करें। हर किसान अपने खेत में आजकल जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स है, रासायनिक खाद है, उसका उपयोग करते हैं, चाहे यूरिया है, डीएपी है, एमओपी है, और तमाम प्रकार के जो रासायनिक उर्वरक है उनका उपयोग अपनी फसल उत्पादन में करते हैं। तो अब क्या है कि किसानों में एक ऐसी मतलब समझ जैसी चीज विकसित हो गई है कि अगर हम ज्यादा डालेंगे तो हमें ज्यादा पैदा हो जाएगा, और इसका नतीजा ये निकलता है कि वो खेत में ज्यादा डालते हैं तो खेत में ज्यादा डालने से उनको पैदावार में थोड़ा सा बढ़ोतरी होती है, लेकिन हमारी जो मिट्टी की गुणवत्ता है वो घट जाती है,
11: धीरे धीरे
12: वो उनका धीरे धीरे क्षरण हो जाता है, उनमें कमियां आ जाती है। और उसका नतीजा हमने देश के स्तर पर देखा, कई सारे ऐसे राज्य हैं कि जहां पर हमने देखा है कि ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल करने से वहां पर उत्पादकता एकदम स्थिर हो गई है या घटने लगी है। तो हम चाहते हैं कि हम इस योजना के माध्यम से किसानों को इस विषय में जागरूक करें कि उन्हें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नंबर एक बात पर तो कम करना है, और दूसरा अगर करना है तो संतुलित तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि केवल एक ही नाइट्रोजन फर्टिलाइजर दे रहे हैं, दूसरे फर्टिलाइजर नहीं दे रहे हैं, तो संतुलित मात्रा में दें, कम मात्रा में दें, और उसको सही समय पर दे करके अपनी फसल को बढ़ाएं। साथ ही साथ विकल्प के तौर पर जैसे हम हरी खाद का प्रयोग करके नत्रजन को कम कर सकते हैं, हम तमाम प्रकार का जैसे गर्मी की जुताई, हमारे देश में पहले अक्षय तृतीया के आसपास में खेत की जुताई होती थी और मिट्टी पूरा जून में जलती थी और फिर धान की फसल अच्छी होती थी। जब मिट्टी जलती है तो उस समय जो है उसमें उर्वरा शक्ति की वृद्धि होती है। तो ये जो हम चीजों को छोड़ गए हैं, जो भूल रहे हैं, धीरे धीरे आने वाली जनरेशन हमारी उसको भूल रही है, इन चीजों को भी हमें उन्हें बताना है कि हम अपनी जो जैविक स्रोत से कैसे हम खाद का प्रयोग कर सकते हैं, हरित जो हमारी ग्रीन मैन्योरिंग कहते हैं, हरी खाद का कैसे प्रयोग कर सकते हैं, कंपोस्ट। अब बहुत सारे हमारे देखते हैं पराली जलाने की समस्या लोगों के पास में है, बहुत सारा क्रॉप रेजिड्यू कहते हैं, फसल का जो वेस्ट होता है उसको सब लोग तो जला देता है या फेंक देता है, मूलतः उसको जला ही देते हैं, जबकि उसको चाहे तो हम सड़ा करके अच्छी खाद बना सकते हैं, उसमें थोड़ा गोबर मिला के वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं, नाडेप कंपोस्टिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे जैविक उपादान है उसका उत्पादन किस तरीके से करें और उसको जमीन में किस तरीके से प्रयोग करें, ये मुख्य उद्देश्य है अभी का हमारा कि हम किसानों को एक टिकाऊ खेती की तरफ में कैसे ज्ञान से उन्हें बता सकते हैं। और इसमें विशेष रूप से हमारे दल में जो मृदा वैज्ञानिक हैं, जो फसल के वैज्ञानिक हैं, जो अन्य वैज्ञानिक इसके विषय में जा करके किसानों को मिलते हैं, उन्हें बताते हैं, उसके तौर तरीके बताते हैं, उनको उनको हम कुछ पंपलेट्स, हमने कुछ अच्छे अच्छे पुस्तिकाएं बना रखी हैं जिसमें हर चीज का तैयार करने की विधि है कि आप कंपोस्ट कैसे तैयार करेंगे, खेत में हरी खाद का कैसे प्रयोग करेंगे, ये सब भी उनको हम दे रहे हैं और उनको बता रहे हैं। और वहाँ पर हम लोगों को बीच में कुछ प्रत्यक्षण भी करने का हमारा योजना है कि आने वाले समय में हम इसको लेकर के कुछ प्रत्यक्षण भी करेंगे। और इसको लेकर के हम चाहते हैं कि पूर्वी भारत, विशेष करके जो हमारा झारखंड राज्य है, इसमें कृषि एक टिकाऊ कृषि की तरफ आगे बढ़े, ना कि रसायन आधारित कृषि की तरफ आगे बढ़े। तो ये इस योजना के माध्यम से हम किसानों में इस संदेश का भी प्रचार और प्रसार कर रहे हैं।
11: अब हम आपसे एक बात और करना चाहते हैं सर, जो हमारे यहाँ किसान रासायनिक खाद का लत चुका है, उसको हम जैविक खाद में कैसे तब्दील करेंगे, थोड़ा सा इसमें संक्षेप में आप जानते
12: हैं। जी देखिए, रासायनिक खाद जिसे मान लीजिए आपको सबसे इजी फार्म में होता है, मैं आपको थोड़ा उस तरीके से समझाऊंगा कि जैसे आप कोई भी व्यक्ति अगर बीमार होता है तो सबसे पहले वो सोचता है कि एक तो टेबलेट खा लीजिए, बुखार हुआ है तो एक टेबलेट खा लीजिए और उस टेबलेट से आप तुरंत राहत मिल जाएगी। लेकिन उस टेबलेट का जो आपके शरीर पर प्रभाव पड़ा है, आप तो ठीक हो गए तात्कालिक रूप से, लेकिन उसका जो प्रभाव पड़ा है आपके शरीर में, बहुत सारे अंगों में उसका प्रभाव, जिसको साइड इफेक्ट कहते हैं, हो जाता है। तो अब हम चाहते हैं कि आप अपने बुखार को आयुर्वेदिक चीजों से ठीक करें या अपने पोषण को, भोजन को इस तरीके से व्यवस्थित करें कि आपका बुखार भी ठीक हो जाए और आपको कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। सेम उसी प्रकार से आपकी जैविक खेती का जो मजा है वो इसी प्रकार से है कि आपको फसल के उत्पादन के लिए पोषण भी मिल जाए और मृदा में उसकी खराबी ना हो। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को, जैसे यूरिया में देखिए 46% नाइट्रोजन होता है, यानी 100 में 46 ही भाग नाइट्रोजन है। हाँ। बाकी जो 54 भाग है वो क्या है और वो कहां जाता है? नाइट्रोजन मान लीजिए जिस भी तरीके से फसलों के लिए काम आ गया, बाकी का क्या हुआ? तो ये जो धीरे धीरे धीरे धीरे सॉइल में, मिट्टी में जमा होता रहता है। जबकि आप ये देखो कि आपके गोबर की खाद में 0.5%, वर्मी कंपोस्ट में 1.5 to 2%, या और खली की खाद है उसमें इतना होता है, कम होता है। लेकिन जब ये गोबर जब सड़ता है, भले आपको आधा प्रतिशत ही नाइट्रोजन दे रहा है, लेकिन जो मिट्टी जो आपका मिट्टी की जो भौतिक दशा है वो सुधर जाती है, उसमें जल शोषण क्षमता बढ़ जाती है, उसमें जो है तो रंध्रावकाश बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो जैविक खाद है वो हमारे फसलों को ज्यादा और मिट्टी को ज्यादा टिकाऊ बनाती है। दूसरी चीज, हम जिसे हरी खाद का प्रयोग कर सकते हैं, हरी खाद में विशेष करके वातावरण में जो नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन है उसको एकत्रित करने के लिए ऐसी कुछ फसलें, दलहनी फसलें विशेष रूप से हैं जो अपने जड़ों में गांठ बनाती हैं और उस गांठ में वातावरण का नाइट्रोजन इकट्ठा होता है और जब उन गांठों को मिट्टी में जोत करके मिला दिया जाता है तो वो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देती है। और इसमें भी वही चीज होता है, जो जब सड़ता है कोई भी, चाहे मूंग का है या ढैंचे का है, ये सब फसलें हैं जो हरी खाद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो जब ये सड़ता है तो इसके अंदर जो सेलुलोज होता है, इसके अंदर जो अन्य कंपोनेंट्स होते हैं वो मिट्टी में मिलते हैं और मिट्टी में मिलने के बाद मिट्टी की भौतिक दशा को सुधारते हैं। तो विशेष रूप से अगर हम रासायनिक खेती और जैविक खेती की तरफ तुलना करें तो विशेष रूप से हमें हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जैविक उपादानों का प्रयोग करना चाहिए और उसमें जिसमें आपका गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, नाडेप कंपोस्ट है, इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर कीड़े और बीमारी लगते हैं तो आज के टाइम में बहुत सारा इंसेक्टिसाइड आपको बाजार में मिल जाएगा। अब किसान लोग सब लाते हैं, कहते हैं जहर मिलेगा, जहर जहर कह करके उसको लाते हैं। जो जहर फसल पर कीड़े को मारता है वही जहर आपके शरीर में भी तो जाता है, तो ये जानने की बहुत जरूरत है। तो इसमें हम जहर को के बजाय हम जो बोटेनिकल्स हैं, जो जिसे नीम का तेल है उसको आप छिड़काव करके कंट्रोल कर सकते हैं कीड़े बीमारी का, या गाय आधारित जिसे पंचगव्य, गौमूत्र, वर्मी वास, ऐसे तमाम उत्पाद हैं जिसको कि हम तैयार करके और और किसान भाई इसमें कोई ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च करना है, इसको आप थोड़ा प्रशिक्षण ले लें, थोड़ा अपना सेटअप एस्टेब्लिश कर लें, गौ पालन करें, गोबर भी मिलेगा, गौमूत्र भी मिलेगा, दूध घी और ये सब मिला करके उसमें पंचगव्य बनाने का, ब्रह्मास्त्र, अग्नास्त्र, ये सारे जो है इस पर भी हम लोग किसानों को बताते हैं और हमारे यहाँ इस पर विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं वो यहाँ पर प्रशिक्षण लेके अपने यहाँ स्वयं इस तरीके के जैविक उपादान बना सकते हैं और प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इन अगर हम संक्षेप में जो हमारी वार्ता आपसे हुई अगर इसको हम समझें तो हमारा जो मेरा गांव मेरा गौ का जो उद्देश्य है वो बहुत दीर्घकालीन है और हमारा यह है कि पूर्वी भारत विशेष करके झारखंड राज्य एक टिकाऊ खेती की तरफ आगे बढ़े जिसमें रसायनों का कम प्रयोग करें, जैविक उपादानों का ज्यादा प्रयोग, हमारे किसान सशक्त हों। जब हमारे किसान सशक्त होंगे तब हमारा गांव सशक्त होगा, तब हमारा देश सशक्त होगा और जो हमारा सपना है कि 2047 तक हम एक विकसित राष्ट्र का निर्माण करेंगे, मुझे लगता है कि ये योजना मेरा गांव मेरा गौरव योजना आगामी 2047 तक विकसित भारत को बनाने के लिए एक आवश्यक एक योजना के तौर पर, एक महत्वपूर्ण योजना के तौर पर उभर के आएगी। इसीलिए हम किसान भाइयों के साथ लगातार संपर्क में हैं, हमारे वैज्ञानिक दल संपर्क में है और हम आशा करते हैं कि सब लोग इस योजना का लाभ लेके वैज्ञानिक विधि से कृषि को आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में मदद करेंगे।
11: तो डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मेरा गांव मेरा गौरव योजना के बारे में, अब बहुमूल्य समय देते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
12: धन्यवाद, जोहार।
10: तो देखा किसान भाई बहन, बड़ा बढ़िया बात हम इन सुन लिया अभी, मेरा गांव मेरा गौरव भारत सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है ले, और ये जानकारी दे देते हैं डॉक्टर विशाल नाथ
9: और इनके से बातचीत कर ले थी वीरेंद्र साहू। तो अभी समय हमने के मौसम की जानकारी और बाजार भाव की, तो सबसे पहले जानिए कि बाजार भाव अभी कैसे चले लगल है।
10: सबसे पहले देखल जाए कि आज हम बातचीत करो बाजार भाव के बारे में, हम अपन हजारीबाग के बाजार भाव के बारे में बतावे है ना। सबसे पहले कि लाल आलू 14 से 15 रुपया प्रति किलो, सफेद आलू 10 से 12 रुपया प्रति किलो, प्याज 15 से 20 रुपया प्रति किलो, फूलगोभी 30 से 40 रुपया प्रति किलो।
9: अब पत्ता गोभी के बाजार भाव चले लगल हो 15 से 20 रुपया किलो, पटल के दाम हो 20 से 30 रुपया प्रति किलो, भिंडी भी 20 से 30 रुपये प्रति किलो है, नेनुआ 20 से 25 रुपये प्रति किलो मिले लगल हो, कद्दू के दाम है 15 से 20 रुपये किलो, हरा मिर्ची 30 से 40 रुपये किलो, शिमला मिर्च 40 से 50 रुपये किलो और गाजर 20 से 22 रुपये किलो।
10: और देखा कि बीट 15 से 20 रुपये किलो, सेम 50 से 60 रुपये किलो, बीन 30 से 40 रुपये किलो, मूली 15 से 20 रुपये किलो, धनिया पत्ता 60 से 70 रुपये प्रति किलो,
9: और अदरक के दाम हो 70 से 80 रुपए प्रति किलो, खीरा 10 से 15 रुपए किलो मिले थे, टमाटर 15 से 20 रुपए किलो, लाल साग 15 से 20 रुपए किलो और पालक साग 16 से 20 रुपए किलो। और आज के मौसम है अधिकतम तापमान हो 30 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता हो 51%।
10: मौसम पूर्वानुमान यानी कि मौसम में बादल थोड़ा छावल रहते हैं, कल के जो है अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम यानी कम से कम 19 डिग्री सेल्सियस तापमान रहते हैं। तो आज के बाजार भाव और आज के मौसम की जानकारी इस प्रकार रह ले हैं।
9: और अब हम बात करवे कि भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में, आज एक बारे में बात करवे कि इस योजना के वीरेंद्र भाई की कहला के कर जे मुख्य उद्देश्य हो या फिर सरकार की इच्छा है कि हर खेत के पानी मिले और प्रति बूंद अधिक फसल हो।
10: तो एकर में देखा कृषि सिंचाई योजना के तहत में है कि ड्रिप इरिगेशन से आप तो खेती करा ओकर में है, कुछ एकर में सरकार के माध्यम से अनुदान राशि पर पंप मशीन भी दिया जा है। तो इस तरह करके बहुत तरह के योजना है सरकार के है ना, खासकर सिंचाई संबंधित जैसे कि कुंप निर्माण है ना, तालाब निर्माण, डैम चेक डैम का निर्माण करके जल के मतलब बचाव करके एक कम से कम रूप में हम कैसे सिंचाई करके अधिक फसल के उत्पादन लिए, तो एक सबसे आसान तरीका हो अगर कम उत्पादन कम पानी में अधिक उत्पादन लिए खुद ड्रिप इरीगेशन और मल्चिंग के माध्यम से ले सको।
9: बिल्कुल, और फिर ये योजना के है कि स्प्रिंकल सिंचाई जैसा सूक्ष्म जो सिंचाई प्रणाली है ओकरा में सरकार के द्वारा अनुदान देवल जा है जेकरा से पानी बचत होवे है। और ये योजना के जैसे कहला के लाभ लेवे वास्ते किसान भाई बहन अपन नजदीकी कृषि विभाग या प्रखंड कार्यालय या कृषि समन्वयक से संपर्क कर सके थे और अपन जो जरूरी दस्तावेज के साथ आवेदन करल पर किसान भाई बहन के योजना के लाभ मिले हैं। तो एक साथ कार्यक्रम किसानवाणी से विदा लेवे के भी समय हो गए है, तो हमरा अलका
10: और वीरेंद्र की अनुमति दा जोहार।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अभी आप सुन रहे थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला दैनिक कार्यक्रम खेती बारी।

0: कार्यक्रम खेतीबारी सुन रहे तमाम श्रोताओं को मेरे तरफ से नमस्कार जोहार। और आज हमारे साथ आए हुए हैं अलका, तो आपको भी नमस्कार जोहार।
1: नमस्कार वीरेंद्र जी, और कार्यक्रम खेतीबारी सुन रहे सभी ग्रामीण श्रोताओं का भी अपने इस कार्यक्रम में स्वागत है और अलका की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में हम लोग हाजिर हो चुके हैं बातें करने के लिए खेती गृहस्थी के बारे में, पशुपालन के बारे में या अपने आसपास के बारे में। तो आज सबसे पहले हम लोग जो बातें करेंगे वीरेंद्र जी कि फसल में जो हम लोग कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं फसल उत्पादन के लिए, कि मेरा फसल अच्छा से उत्पादन हो, बीमारी कम रहे, फसल को देखने में मतलब अच्छा लगे कि बाजार में दाम मिले, तो इसके लिए हम लोग काफ़ी दवाई वगैरह को छिड़काव करते हैं, वो तो सही नहीं है, लेकिन अगर उचित मात्रा में छिड़काव करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है।
0: सबसे पहले कि हम लोग दवा की मात्रा को कम करना चाहें तो हम लोग जैविक खेती को अपनाएं, वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, जैविक दवा को अपनाएं। जैसे कि हम लोग बातें करेंगे आज मुख्य तौर से, जैसे कि गाय की गोबर जो

0: जैविक दवा का ज्यादा इस्तेमाल करके अधिक उत्पादन, जैसे अब रासायनिक दवा की हम बात करते हैं, किसानों के बीच में होता क्या है अलका जी, आप देखते होंगे कि कभी कभी नई कीड़ा मरता है तो बोलता है कि आज हम 10 ml या 20 ml चला दे, नहीं मेरा कहना है कि दवा को आप चेंज करके चलाइए, कोई जरूरी कि एक ही दवा को हम चलाते रहे। होता क्या है कि बहुत सा कीड़ा मतलब है कि दवा जो हम देते हैं डायरेक्ट, यानी उसको जो कॉन्टेक्ट दवा होती है वो एक बार मारता है दोबारा वो नहीं मार पाता, उसका रेजिस्टेंस में आ जाता है। हमको वैसे स्थिति में क्या करना, सिस्टमैटिक दवा को चलाना है, और सिस्टमैटिक दवा अगर हम चलाते हैं तो अगर यदि उसमें भी 3-4 टेक्निक का 5 टेक्निक का आता है बाजार में, अगर एक टेक्निक का एक बार हम इस्तेमाल किए हैं तो उसको हम कोशिश करेंगे 15-20 दिन बाद पुनः दूसरे टेक्निक का हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि किसानों में होता क्या है कि बार बार एक ही बात को हम वो बोलते हैं कि मतलब आज 10 ml दिया कल 15 ml करा दिया बढ़ते के लिए, तो उससे क्या कीड़ा का रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाता है, वो कीड़ा मरता नहीं है, उसमें अधिक दवा अंधाधुंध पड़ जाता है, तो उससे क्या होता है मानव जीवन पर, पशु जीवन पर, पक्षी जीवन पर बहुत ही असर पड़ता है। तो हम लोग कोशिश करें कि कोई भी दवा को कम मात्रा में और वैज्ञानिक सलाह के माध्यम से या फिर आपका कृषि सलाहकार के माध्यम से हम लोग दवा का प्रयोग करेंगे तो हमारा कम दवा का इस्तेमाल होगा खेतों में।
1: बिल्कुल, और ये हमारे और हमारी जमीन के लिए काफी स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। तो हम लोग आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश और एक गीत।

0: किसको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे
2: सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: तो अभी हम लोगों ने सुना जरूरी संदेश और एक गीत, और अभी हम लोग जानकारी की तरफ मुड़ेंगे कि गौ पालन के बारे में एक बेहतर किस तरीका से विधि अपनाया जाए, या फिर एक गौ पशुपालक जो है वो अपने अनुभव को बता रहे हैं, और उनका नाम है प्रीतम यादव और उनसे बातचीत की है
2: अलका कुमारी। इनकी बातों को हम लोग सुनते हैं और समझते हैं।
1: बिल्कुल।
3: नमस्कार किसान भाई बहन, हमेशा समय समय पर हम आपको ऐसे किसान या पशुपालक भाइयों से मिलाते हैं जो या तो कृषि कार्य काफी अच्छे से कर रहे होते हैं या फिर पशुपालन का काम अच्छे से कर रहे होते हैं। तो आज हम आए हुए हैं टाटीझरिया प्रखंड में, तो आज हम ऐसे ही एक किसान भाई से आप लोगों को मिलाएंगे कि जो पशुपालन का कार्य काफी अच्छे से कर रहे हैं, और हम इनके गौशाला में देख रहे हैं कि बहुत ही तरह की गाय इनके पास में है, कह लीजिए जर्सी है या फिर रेड सिंधी है या फिर क्रॉस ब्रीड है। तो ये किस तरीके से गायों का देखभाल करते हैं और कैसे पशुपालन का कार्य करते हैं, जिससे और भी किसान या पशुपालक भाई को लाभ होगा, तो इनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इनका परिचय। नमस्कार, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका नाम क्या हुआ?
4: मेरा नाम प्रीतम यादव हो गया।
3: अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं?
4: ग्राम छोटा ढहरबंगा, पोस्ट टाटीझरिया, थाना टाटीझरिया, जिला हजारीबाग के निवासी हूँ मैं।
3: अच्छा, तो आप पशुपालन का कार्य करते हैं, बहुत अच्छे से हम देख रहे हैं कि सारे पशु आपके काफी अच्छे। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपके पास कौन कौन से पशु हैं?
4: मेरा गाय फ्रीजियन भी रखे हैं, जर्सी भी रखे हुए हैं, क्रॉस भी है और रेड सिंधी वाली भी है।
3: आप हर तरह की गाय?
4: हर तरह से मेरा गाय, हर तरह का गाय रखे हुए हैं।
3: अच्छा, तो इन गाय की देखभाल आप कैसे करते हैं? सबसे पहले जैसे कि बहुत सारी गाय हैं आपके पास, तो जरूरत होती है कि अच्छे गौशाला की, मतलब अगर हम पशु रखना चाहते हैं कोई पशुपालक भाई, तो गौशाला किस तरीका से रखा जाए?
4: देखिए, गाय का रखने के लिए तो कम से कम उसका रखने का जगह अच्छा होना चाहिए।
3: अच्छा,
4: कम से कम 30 फीट, 30 फीट लंबाई और 25 फीट चौड़ाई कम से कम होना चाहिए। तो उसमें कम से कम 10 वो गाय अच्छा आराम से अपना रहेगा।
3: अच्छा।
4: और इसका जो है
3: हाई जमीन।

0: का जो है वो पूरा पक्का भी होना चाहिए ताकि कोई कीचड़ नहीं होवे और इसका सर सफाई अच्छे से होना चाहिए।
1: मतलब पक्का मोटा होना चाहिए,
0: पक्का ये होना चाहिए,
1: मोटा पक्का
0: मोटा होना चाहिए
1: और नहीं होना चाहिए,
0: नहीं स्लोप पर नहीं होना चाहिए, पूरा थोड़ा रहना चाहिए उसका, उसका बैग ढलाई करके छोड़ देना चाहिए।
1: अच्छा तो एक चीज और बताए कि हाइट ऊंचाई कितनी होनी चाहिए?
0: हाइट कम से कम 12 से 13 फीट हाइट होना चाहिए। उसमें क्या है कि चारों पर तरफ से खिड़की का हवा भी आ सकता है,
1: मौसम के अनुसार,
0: मौसम के अनुसार में अच्छा रहेगा। अब गर्मी का टाइम जैसे हो गया तो गर्मी में उसमें गर्म नहीं लगेगा जानवर का, इसके लिए खिड़की भी कम से कम 2-3 होना चाहिए और हाइट में पूरा होना चाहिए, कम से कम 13 फीट हाइट होना चाहिए। देखिए चौड़ाई तो कम से कम आपका 20 फीट तो होना चाहिए, हाँ, ताकि उसमें नाला भी रहे 20 से, कि दोनों तरफ से गाय अगर ये साहब पेशाब करता है तो निकल जाना चाहिए। और कम से कम 2 रोज पर 1 रोज पर सफाइया भी होना चाहिए, वो भी फनेल डाल करके, ताकि मक्खी उखी नहीं लगेगा।
1: अच्छा तो गाय को जैसे साफ रखने के लिए गाय को स्नान या नहलाना?
0: नहीं, नहलाने का देखिए गर्मी का समय जो हो गया तो कम से कम रेगुलर को धोना ही चाहिए। अगर नहीं धो पाते हो तो एक दिन छोड़ करके एक दिन माने जर्सी गाय का धोना चाहिए।
1: अच्छा तो जर्सी गाय को गर्मी काफी लगती है?
0: हाँ, गर्मी जर्सी गाय का थोड़ा गर्मी ज्यादा लगता है, इसके लिए उसका धोना भी नहवाना भी चाहिए उसका।
1: अच्छा मौसम के अनुसार जैसे गाय को गर्मी के लिए और क्या करते हैं?
0: गर्मी में तो मेन है उन लोग का थोड़ा सुबह शाम बढ़िया से खाना दीजिए, दोपहर में नहवा दीजिए।
1: अच्छा जैसे कि आप बोले सुबह या शाम भोजन के लिए, तो सुबह एक बार भोजन शाम में दिया,
0: शाम को दोपहर में पानी उसका दीजिए, सफाइया पानी पिला दीजिए,
1: साफ सुथरा
0: पानी होना चाहिए,
1: ताजा पानी होना चाहिए,
0: हाँ रोज ताजा पानी होना चाहिए सब जानवर के लिए।
1: अच्छा तो जैसे कि गाय है, बहुत तरह की गाय होती है, कोई गाभिन गाय है या फिर कोई दूध देने वाली गाय है या फिर कोई ऐसी
0: बकेन, अगर बकेन गाय हो गया है उसका थोड़ा सा सुधा दाना जो आप कपिला जो खिलाते हैं उसका थोड़ा कम देना चाहिए।
1: अच्छा,
0: और बच्चा देने का समय तो उसका बहुत सा खाना जो है
1: गर्भवती जो गाय है
0: उसका थोड़ा बढ़िया से खाना टाइम टाइम से होना चाहिए।
1: अच्छा तो उसके लिए क्या खास खाना कुछ रहता है?
0: ऐसा तो कुछ नहीं है, हरा घास भी दे सकते हैं। अच्छा। और ये कुटी चोकर जो हो वो तो आप खिला सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है।
1: अच्छा तो जैसे कि आप गाय को कौन सा खाना मतलब कौन सा चारा खिलाते हैं, कैसे
0: चारा तो हम खिलाते हैं वही धान वाला जो कहिए बिचाली वाला जो होता है कुट्टी,
1: हाँ।
0: वो कुट्टी खिलाते हैं।
1: अच्छा,
0: प्लस कपिला पशु आहार जो आता है वो देते हैं।
1: अच्छा।
0: और चोकर भी देते हैं।
1: अच्छा,
0: चोकर थोड़ा बढ़िया होना चाहिए,
1: चोकर अच्छा होना,
0: हाँ जैसे हनुमान चोकर जो है वो अभी देश पे है।
1: अच्छा, हनुमान चोकर अच्छा होता है, तो वो आप चोकर को दो टाइम खिलाते हैं?
0: हाँ, वो दो टाइम खिलाते हैं। और जो दूध देने वाली गाय है उसका कम से कम तो 4 किलो सुधा दाना होना चाहिए, 4 किलो 3 किलो चोकर होना चाहिए।
1: अच्छा, तो जो
0: टाइम पर
1: जो दूध देने वाली है
0: और जो दूध देने वाली नहीं है उससे उसका थोड़ा सा कम दीजिए चलेगा।
1: अच्छा, तो जैसे गाभिन गाय के बारे में आप बता रहे थे कि उसे सुधा दाना नहीं देना या फिर कुछ कम मात्रा में देना, कैसे क्या उसके बारे?
0: गाभिन अवस्था में जैसे हो गया दूध थोड़ा कम कर दिया तो उसका ऑटोमेटिक ऐसे ही कम हो जाता है सुधा दाना खिलाने का, उसका थोड़ा कम खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है।
1: लेकिन जो दूध देने वाली,
0: और उसका ठंडा थोड़ा खाना जैसे घास हरा घास हो गया ये सब थोड़ा देना चाहिए।
1: अच्छा, घास देना चाहिए?
0: हाँ, थोड़ा घास खिलाना चाहिए।
1: लेकिन जो मतलब जो दूध देने वाली है उनके खाने का मतलब उनका चारा का खास ख्याल रखना चाहिए?
0: हाँ, उसका जैसा खाना खिलाइएगा वैसा दूध देगा, उसका अच्छा से खाना टाइम टाइम से दीजिएगा तो दूध भी अच्छा देगा और स्वास्थ्य भी गाय का अच्छा रहेगा।
1: अच्छा, तो फिर जैसे कि आप एक होता है
0: मौसम के अनुसार हो गया, जैसे अभी जैसे गोबर है, ये गोबर जो है गोबर हम लोग इसका उठा करके मैंने सुखा देते हैं, सुखा देने के बाद में उसका जो है धुआं कर दीजिए, मच्छर भी भाग जाएगा।
1: हाँ,
0: और कोई दिक्कत नहीं है जानवर का।
1: अच्छा, गर्मी के लिए
0: हाँ, गर्मी का समय में मच्छर हो गया ज्यादा।
1: हाँ,
0: और ठंडी में भी ठंडी में उसका थोड़ा धुआं दिखाना चाहिए।
1: अच्छा, ठंडा में भी धुआं,
0: ठंडा में दिखाना चाहिए ताकि ये आपका गर्म भी रहेगा थोड़ा सा और मच्छर भी नहीं लगेगा।
1: अच्छा, तो मतलब इस तरीका से गाय
0: इस तरीका से
1: लोग इस तरीका से देखभाल कर सकते
0: कर सकते हैं।
1: अच्छा, तो आप जैसे कहे कि भोजन या फिर ये करना नवजात जो बछड़ा होता है मौसम के अनुसार कभी ठंड में या गर्मी में, तो क्या बच्चों का कुछ खास ख्याल रखा जाता है?
0: बच्चे का खास ख्याल है कि देखिए ठंडी में जो है तो बच्चे का उसका देखभाल थोड़ा बढ़िया से होना चाहिए। आप दूध जो है वो थोड़ा दो टाइम उसका दूध जितना पिलाइएगा उतना अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा बच्चा।
1: अच्छा, तो जितना उसको दूध गाय का पिलाया जाए उतना ही अच्छा,
0: उतना ही अच्छा।
1: अच्छा, जैसे बहुत दिन हो जाता है कि कहा जाता है कि 8 या 10 या 12 दिन गाय का दूध नहीं दिया जाता, उस समय कैसे बछड़े को कितने बार पिलाते हैं?
0: बछड़े का बच्चा जब बच्चा देता है उस समय तो कम से कम 3 टाइम उसका दूध पिलाना चाहिए।
1: 3 टाइम?
0: हाँ, सुबह शाम और दोपहर में।
1: अच्छा,
0: ये जरूरी है पिलाना।
1: और गर्मी के मौसम में तो नवजात बछड़ों का देखभाल के लिए कुछ खास ख्याल रखने की जरूरत नहीं होती होगी?
0: नहीं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर खाना खाने लगा बच्चा तो उसका थोड़ा दूध कम भी होगा, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
1: हाँ, लेकिन
0: ठंडी में थोड़ा बचाने पड़ता है बच्चे को।
1: ये है कि एक मौसम के अनुसार आपसे पूछते हैं कि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, गर्मी खत्म हो रहा होता है, तो पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए काफी
0: बारिश का समय जैसे आ रहा है ना, बारिश जैसे चालू होता है उस समय तो गाय को तो भींजना नहीं देना चाहिए। बाहर का जो बारिश का पानी हो रहा है उसमें तो बिल्कुल नहीं भींजाना चाहिए गाय का, क्योंकि एक बैग अगर बारिश होता है तो मौसम के अनुसार उस समय में गाय बीमार पड़ सकता है।
1: तो मतलब कि जैसे गर्मी के बाद बारिश आ रहा है तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि पशुओं को भीगना नहीं चाहिए। अच्छा, और टीका वगैरह कुछ?
0: टीका जो हो गया वो बारिश में जो मौसम के अनुसार से एक बार साल में टीका जरूरी
1: जरूरी
0: होता है।
1: अच्छा, तो आप कैसे टीका लगवाते हैं ये थोड़ा सा पशु?
0: टीका हम देखिए अपने तो ये पाते हैं, बच्चे हमको है और वो समय डॉक्टर रखे हैं, डॉक्टर आकर के देख करके जाते हैं।
1: अच्छा, तो आप वो टीका बारिश शुरू होने से पहले ही लगवा?
0: हाँ, बारिश होने का पहले देते।
1: अच्छा, सारे पशुओं को टीका कर
0: पशुओं का।
1: अच्छा, तो एक चीज और पूछना है प्रीतम यादव जी कि जैसे बहुत पशुपालन कर रहे हैं हाँ और करना चाहते हैं तो वो पशुओं को खरीदने के लिए बाहर जाते हैं, तो बहुत बार क्या हो जाता है कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि कौन सा पशु ले, जब देखते हैं कि काफी अच्छा पशु है और जब लेकर आते हैं तो घर में पता चलता है या तो बीमार है या तो दूध नहीं दे रही है या तो काफी उम्र हो गया है कि ज्यादा दिन वो गाभिन नहीं हो पाएगी, तो ऐसे में पहचान के लिए लोगों को क्या करना चाहिए?
0: देखिए, ये सब पहचान के लिए तो मेन होता है कि नया जगह में अगर नया कहीं मतलब बाहर से आया है तो वो गाय अगर नहीं जान रहे हो तो खरीदना नहीं चाहिए। फर्स्ट बात तो ये है पहले कि खरीदना नहीं चाहिए वो जानवर, जब तक अगर उसका अपना कोई परिचय वाला नहीं है, अपना जानकारी नहीं है तो वो आदमी को तो खरीदना नहीं चाहिए। और जानकारी वाला जो इसका जो जानकारी है वो जानकारी आदमी ले करके और पशु को खरीदना चाहिए। प्लस उसका जो आंचल है क्या है, कैसा मतलब है, पतला चमड़ी वाला है ना, कैसे दूध देने वाली है या नहीं है, वो देख के खरीदना चाहिए।
1: अच्छा, तो इसका पहचान के लिए आप कुछ बातों को बताएंगे?
0: इसका पहचान के लिए तो ऐसे देखिए, जानवर का पतला चमड़ी होना चाहिए।
1: अच्छा,
0: कान छोटा होना चाहिए,
1: कान छोटा,
0: और गर्दन जितना लंबा रहेगा तो समझ जाइएगा कि गाय वो अच्छी गाय है।
1: अच्छा, गर्दन लंबा होना चाहिए,
0: गर्दन थोड़ा लंबा होना चाहिए,
1: चमड़ा पतला होना चाहिए,
0: चमड़ा पतला होना चाहिए। और आंचल वो जो है, बहुत सा गाय में क्या है कि आदमी जिसका जानकारी नहीं वो तो गाय खरीद लेता है, बाकी खरीदने के समय बहुत सा गाय का है कि आंचल खराब हो गया है तो कारण से और इसी में वो लोग ठका जाता है।
1: अच्छा,
0: तो इसके लिए आंचल थोड़ा देख करके जानवर खरीदना चाहिए।
1: तो उसमें क्या पहचान होता है?
0: पहचान उसमें है कि उसका देखने से
1: पता चल जाएगा,
0: पता चल जाता है जिनका जो जानकारी है उसका देखने से मालूम पड़ जाता है कि ये आंचल सही है या नहीं है।
1: अच्छा, सींग से भी पता चलता है क्या?
0: नहीं, सींग ऐसा कुछ नहीं है, सींग तो
1: सींग या खुर से पता चलता है,
0: खुर और सिंह से ऐसा कुछ नहीं है।
1: अच्छा, सिंह और खुर से नहीं,
0: नहीं।
1: चमड़ा पतला, अच्छा,
0: चमड़ा पतला
1: होना चाहिए।
0: हाँ, दांतों का है, जो भी पशु आहार अगर खरीदने चाहता है तो जानवर तो कम से कम देख करके खरीदना चाहिए कि दांत में कितना है।
1: अच्छा, कितना दांत?
0: हाँ, 4 है या 6 है।
1: हाँ,
0: तो उसका खरीदना चाहिए। अगर दो पूर तीन पूर हो गया
1: हाँ।
0: तो उसका तो नहीं खरीदना चाहिए। अगर
1: तो सही बहुत अच्छी बात है कि जैसे अगर हम दांत का भी संख्या देखेंगे कि चार छह है तो वो गाय अच्छी है,
0: अच्छी
1: आंचल अच्छा है।
0: मतलब अगर दो बयान तीन दो बार तीन बार तक बच्चा दे दिया है
1: हाँ।
0: तो उसका खरीद सकते हैं आंख मूंद करके, जैसा उसका आप सेवा होगा
1: वैसा
0: वैसा वो गाय रहेगा। आप धर लीजिए कि कोई ऐसा है कि चार दांत के गाय ले लिया और उसमें खान पियन मतलब अच्छा से नहीं होगा करेगा तो फिर तो वो गाय टिकेगा नहीं। इसके लिए उसका देख रखाव अच्छा होना चाहिए।
1: अच्छा, अब जैसे गाय की बीमारी होती है तो उसको पहचान कैसे होता है कि वो गाय बीमार है, उसको क्या देखभाल करना चाहिए?
0: उसका गाय का देखिए, अगर खाना मतलब अच्छी से नहीं खा रही है
1: हाँ?
0: तो समझ लीजिए उसका कोई तो माने दिक्कत है
1: हाँ।
0: इसके लिए उसका रुचि पाउडर जो आता है
1: हाँ?
0: वो पाउडर भी आप उसका थोड़ा सा खिलाइए
1: हाँ?
0: खिलाने से देखिए उसका भूख जगेगा
1: हाँ?
0: भूख जगेगा तो ऑटोमेटिक खाना खाएगी। तो यही सब देख रखो करना चाहिए जानवर का।
1: तो इस तरीके से अगर हम लोग गाय को रखे और जागरूक तरीके से गाय का देखभाल करें तो गाय पशुपालन का कार्य काफी लाभप्रद हो सकता
0: है। नहीं, फायदा तो बहुत है। फायदा देखिए, इसमें एक तो बच्चा हो गया आपका, उसके बाद में दूध भी दे रही है, गोबर भी है, गोबर भी आदमी उसका उससे खाना भी बनता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए बहुत आदमी क्या है, गैस पर खाना बनाता है, ये बनाता है तो उससे पता ये जो गोबर वाला जो होता है
1: गोबर गैस,
0: इसका गोबर गैस भी बनता है, इससे बहुत फायदा है।
1: अच्छा, इससे
0: हाँ। और रह गया गौमूत्र
1: हाँ?
0: गौमूत्र तो यहाँ पर आदमी बिहार में क्या है झारखंड में इतना आदमी के सब जानता नहीं है, बल्कि गौमूत्र जो क्या होता है वो बहुत लाभ।
1: अच्छा, वहाँ कोई जीवामृत वगैरह हाँ। भी बना के खेत के लिए अच्छा से
0: पूजा के लिए हो गया, हर चीज के लिए हो गया हाँ। गौमूत्र बहुत शुभ चीज है।
1: बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। अब बहुत अच्छे से गायों को रखे हैं, इसके लिए आप इतनी सी जानकारी जिससे हमारे पशुपालक भाई काफी लाभ उठाएंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो अभी हम लोगों ने सुना जानकारी कि गौ पालन किस तरीका से करें, हमें किस विधि से अपनानी चाहिए, करनी चाहिए, बता रहे थे प्रीतम यादव, उनसे बातचीत कर रही थी
2: अलका कुमारी। तो बहुत अच्छी जानकारी था, यही जानकारी के साथ कार्यक्रम मतलब
1: खेती बाड़ी से विदा लेने
2: का समय हो गया है।
1: तो हमें अलका
2: और वीरेंद्र को अनुमति दे।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बारी, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रादेशिक मुख्य समाचार के लिए अगला प्रसारण हमारे रांची केंद्र से।
1: आप सुन रहे थे हमारा औद्योगिक प्रसारण श्रमिक लोक, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं, प्रस्तुत है मुख्य समाचार।
2: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों सुलहनीय मामलों का विशेष बेंचों का गठन कर निष्पादन किया गया और करोड़ों रुपए की राजस्व वसूली हुई। इस मौके पर कई लोगों को लंबे समय बाद न्याय मिला। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने आज गिरिडीह में सिविल सोसाइटी के साथ स्वच्छता को लेकर समीक्षा बैठक की। नगर निगम कार्यालय में हुई इस बैठक में उन्होंने शहर की साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर चर्चा की। इस मौके पर मंत्री ने बताया कि बैठक में जो विचार सामने आए हैं उसके अनुपालन को लेकर नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने राज्य में बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त और आवश्यक मानकों के संचालित हो रहे फार्मेसी कॉलेजों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने इस मामले में विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार से सभी फार्मेसी कॉलेज की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने संगठित अपराध पर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। श्री मरांडी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि आमतौर पर पुलिस अपराधियों का पर्दाफाश करती है, लेकिन राज्य में गैंगस्टर ही पुलिस के कथित काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि धनबाद के कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान का मीडिया में वायरल हो रहा एक ताजा वीडियो न केवल पुलिस को चुनौती दे रहा है बल्कि वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यकाल का मूल्यांकन भी कर रहा है। लोहरदगा एसपी कोठी के समीप हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 अन्य घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। दुर्घटना के कारण कुछ देर तक सड़क पर यातायात प्रभावित रहा। बाद में दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सड़क से हटाया गया और आवागमन शुरू किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:02 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मेहनत कश।

0: मेहनतकश कार्यक्रम में सभी मेहनतकश भाइयों को मासूम का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सब अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त करते हैं, अपनी मेहनत और लगन के माध्यम से अपनी आय में बढ़ोतरी करते हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ जानकारी भरी बातें भी होंगी, साथ ही कुछ मधुर और सुरीले गीतों से करेंगे आपका भरपूर मनोरंजन भी। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: डेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: मेहनत कश भाइयों, हस्तशिल्प, रेशम कीट पालन और लाख उद्योग, ये तीनों क्षेत्र दरअसल भारत के पारंपरिक ग्रामीण उद्योग हैं और लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार और जीवन यापन के अवसर प्रदान करते हैं। विशेष रूप से झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और बंगाल में इन क्षेत्रों में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। जहां तक हस्तशिल्प की बात है तो इसमें विशेष रूप से बांस शिल्प, मिट्टी के बर्तन, डोकरा कला, सोहराय पेंटिंग, लकड़ी नक्काशी के क्षेत्र आते हैं। इनमें इनके उत्पादों की मांग ज्यादातर झारखंड, बिहार, ओडिशा, यूपी, राजस्थान आदि राज्यों में है। इस कला में पारंगत कारीगर प्रतिमा 8,000 से 25,000 रुपए तक की कमाई कर लेते हैं। वहीं इस कला में नए डिजाइन बनाने वाले डिजाइनरों की मांग काफी है और वो 20 से 25,000 महीने तक की कमाई भी कर लेते हैं। वर्तमान में इस कला के उत्पाद ऑनलाइन माध्यम से और मेला आदि के माध्यम से इनकी बिक्री होती है और इससे भी अच्छी कमाई की जाती है। इन क्षेत्रों में अगर खुद का यूनिट यानी इकाई लगाई जाए तो ऐसे उद्योग से 5-10 लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराने की क्षमता होती है। जहां तक इस कला से जुड़े लोगों को सरकारी योजनाओं के की लाभ पहुंचाने की बात है तो NHDP, अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना आदि के माध्यम से इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण, टूल किट्स और ऋण की सुविधा भी उपलब्ध होती है। जहां तक रेशम की बात है तो झारखंड में तसर सिल्क, कर्नाटक में मलबरी सिल्क और असम में मूंगा सिल्क, इनकी डिमांड इन राज्यों में काफी अधिक है और रोजगार प्रदान करने की इसमें अवसर लोगों को मिलते हैं। जहां तक कीट पालन की बात है तो किसान शहतूत और अर्जुन के पेड़ लगाकर कोकून उत्पादन के माध्यम से 1 एकड़ जमीन से सालाना करीब 1 से 2 लाख रुपए की कमाई भी कर लेते हैं। इसके अलावा इसमें रीलर, जो कोकून से धागा निकाला जाता है, तो ऐसे लोगों को भी 12 से 20,000 महीने तक की कमाई हो जाती है। और जहां तक हैंडलूम से साड़ी या कपड़ा बुनने की बात है तो इससे जुड़े जो कारीगर होते हैं उन्हें भी 15 से 35,000 महीने की कमाई हो जाती है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड से ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद इसमें अनुदान और बीमा की भी सुविधा मिलती है। झारखंड की बात करें तो मुख्यमंत्री तसर विकास योजना का लाभ कारीगर ले सकते हैं। जहां तक लाख उद्योग, जिसे लाह भी कहा जाता है, इसकी बात है तो इसकी ज्यादा डिमांड झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में है। इसमें रोजगार के अवसर काफी अधिक है। जो लाख कृषक होते हैं वो पलाश, बेर, कुसुम पेड़ पर कीट पालन के माध्यम से 100 पेड़ की सहायता से सालाना 40 से 80,000 रुपए तक की कमाई कर लेते हैं। इसके अलावा इसकी जो प्रोसेसिंग है इससे जुड़े लोगों की भी अच्छी खासी कमाई होती है। लाख के द्वारा चूड़ी और आभूषण बनाने, ज्वेलरी बनाने वाले कारीगरों को भी अच्छी खासी कमाई मिलती है। तो मेहनतकश भाइयों, अगर इस क्षेत्र की बात करें तो इसमें रोजगार प्रदान करने की असीम संभावनाएं हैं। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम इस बारे में समुचित जानकारी प्राप्त करते हुए इस दिशा में आगे बढ़ें और अपने जीवन में खुशहाली लाएं। और अब मेहनतकश भाइयों, आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: निश्चित रूप से मेहनतकश भाइयों, आपने इस गीत को जरूर पसंद किया होगा। निश्चित रूप से सपने सभी को देखना चाहिए और अगर हम सब सकारात्मक सोच रखें तो सपने धरातल पर अवश्य उतरते हैं। जहां तक रोजगार और काम की बात है तो कार्यक्रम की शुरुआत में हम सब चर्चा कर रहे थे हस्तशिल्प से जुड़े रोजगार के बारे में। तो दोस्तों, रोजगार किसी भी क्षेत्र में हासिल किया जा सकता है। अगर हम खुद का रोजगार, खुद की इकाई लगाना चाहते हैं तो इस दिशा में हम सबको पहल करनी चाहिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में वर्तमान में स्टार्टअप को काफी महत्व दिया जा रहा है। किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में या रोजगार के क्षेत्र में हम पहल करें और इकाई को लगाने के लिए जो भी सरकारी सहायता है उसका लाभ लें। मेहनतकश भाइयों, आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं स्टार्टअप एक उज्जवल भविष्य विषय पर देविका वर्मा की वार्ता का पुनर्प्रसारण।
1: क्या आपने कभी स्टार्टअप के विषय में सोचा है? क्या आपने सोचा है कि इसे शुरू किया जाए? क्या आपके मन में ख्याल आया कि फंड कहाँ से जुटाया जाए? तो श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास पेशकश जिसमें इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। एक्चुअली स्टार्टअप, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मौजूदा बाजार में कुछ नया लाने का प्रयास है। चाहे वो कोई नया उत्पाद हो, नई सेवा या फिर व्यवसाय करने का नया तरीका। भारत सरकार की स्टार्टअप योजना ने युवाओं के लिए रोजगार का नया वातावरण सृजित कर उन्हें एक नई राह दिखाई है। आज के प्रतियोगी युग में नौकरियां हासिल करना सभी के लिए आसान नहीं है और कुछ युवाओं का रुझान नौकरी करने से ज्यादा सफल व्यवसायी बनने की ओर होता है। 16 जनवरी 2018 को लॉन्च की गई स्टार्टअप योजना देश के युवाओं को उद्यमी बनाने की दिशा में अनूठी पहल है। सरकारी पहल, प्रोत्साहन और सहयोग का ही परिणाम है कि आज देश की युवा पीढ़ी इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। स्टार्टअप ऐसी कंपनी होती है जो अपने व्यवसाय के प्रारंभिक चरण में होती है। स्थापित कंपनियों से अलग, ये ऐसे उत्पाद या सेवा विकसित करती है जिसकी जरूरत समाज में है और जिनकी बाजार में मांग की जाती है। स्टार्टअप इकाई प्रौद्योगिकी तथा बौद्धिक क्षमताओं से प्रेरित है जो नए उत्पादों या सेवाओं के नवाचार, विकास या व्यवसायीकरण की दिशा में काम करती है। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना और भारत में नवाचार व उद्यमिता के लिए एक मजबूत एवं समावेशी इकोसिस्टम का निर्माण करना है। भारत दुनिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम में 3रे स्थान पर है। ये टैक्सन की नवीनतम रिपोर्ट है। आज शिक्षा से लेकर कृषि, खाद्य एवं पेय, स्वास्थ्य देखभाल, आईटी, एविएशन, फार्मास्यूटिकल, स्पेस टेक्नोलॉजी सहित तमाम क्षेत्रों में नए विचारों से लैस युवा सफलता की नित नई कहानियां रच रहे हैं। वे न केवल रोजगार प्रदाता बन रहे हैं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में योगदान भी दे रहे हैं। इससे देश में उद्यमशीलता का एक नया वातावरण तैयार हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी कहना है कि मेरा सपना है

देश का युवा नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। सचमुच स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत युवाओं के इनोवेटिव आइडिया को प्लेटफॉर्म मिलने और फंडिंग की व्यवस्था होने से न केवल महानगरों बल्कि छोटे शहरों के युवा भी स्टार्टअप बनाने के लिए प्रेरित हुए। आज देश के 656 जिलों में 1.5 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप हैं। देश में 27,459 स्टार्टअप के साथ तमिलनाडु सबसे आगे है, जबकि कर्नाटक दूसरे और दिल्ली तीसरे स्थान पर है। कुल मिलाकर आज देश में 1,70,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है। आज भारत में दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इसमें लगभग 12 से 13 लाख युवा सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। देश में तेजी होती स्टार्टअप क्रांति ने महिला उद्यमशीलता को भी बढ़ावा दिया है। यूं तो स्टार्टअप शुरू करने की कोई उम्र सीमा नहीं है, पर युवाओं के लिए यह बेहतर करियर विकल्प है। आज के दौर में जब तकनीक मदद के लिए हमेशा साथ खड़ी है, हमारी नई पीढ़ी स्टार्टअप के जरिए अपनी करियर को ऊंची उड़ान दे सकते हैं। वे अपनी रुचि के अनुसार किसी भी क्षेत्र को चुन सकते हैं। भारत सरकार स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के माध्यम से लोगों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। आज भारत में कई ऐसी स्टार्टअप कंपनियां हैं जिनके नाम लोगों की जुबान पर हैं। किसी भी स्टार्टअप को सफलतापूर्वक चलाने के लिए एक सुदृढ़ योजना तैयार करने की जरूरत होती है। इस योजना में कंपनी के लक्ष्यों, उसके विजन और मार्केटिंग रणनीतियां आदि शामिल होती है। स्टार्टअप एक ऐसी राह है जिसमें सफलता के लिए किसी कॉलेज की डिग्री से अधिक महत्वपूर्ण होता है उत्पाद या सेवा से संबंधित ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा, जो लोगों को यह विश्वास दिला सके कि वह जिस उत्पाद या सेवा को उन्हें मुहैया कराने का प्रस्ताव दे रहा है उसकी उन्हें जरूरत है, और वही सफल स्टार्टअप निर्माता बन सकता है। एक सफल व्यवसायी में लोगों को समझने और उन्हें समझाने की प्रतिभा अनिवार्य रूप से होनी ही चाहिए, ताकि वह उनका विश्वास जीतकर उन्हें ग्राहक बना सके। एक बिजनेसमैन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपनी कंपनी द्वारा ऐसी वस्तु का निर्माण करना जो लोगों के बीच जाए तो प्रशंसा पाए और लोग उसे मन से अपनाए। स्टार्टअप किसी अन्य बिजनेस की तरह ही काम करता है। यहाँ भी उत्पाद बनाए जाते हैं और लोग उन्हें खरीदते हैं, जिससे उनकी आय होती है और स्टार्टअप का व्यापार चक्र चलता है। इस पूरे चक्र में महत्वपूर्ण घटक हैं लागत, राजस्व और लाभ। लागत किसी उत्पाद को बनाने में लगाई जाने वाली राशि है। प्रत्यक्ष लागत किसी उत्पाद को बनाने में लगती है। इसमें उत्पाद के निर्माण और पैकिंग से लेकर लेबर और उनका वेतन सम्मिलित होता है। अप्रत्यक्ष लागत में विज्ञापन, प्रमोशन, विपणन, किराया इत्यादि सम्मिलित होता है। राजस्व वह पैसा है जो कोई स्टार्टअप अपने उत्पाद बेच कर कमाता है। राजस्व के आकलन से ही पता चलता है कि कोई व्यवसाय किस गति से आगे बढ़ रहा है और उसकी प्रगति क्या है। जब तक राजस्व लागत से ज्यादा नहीं आता, लाभ नहीं हो सकता है। उत्पादों की कीमत सोच समझ कर इस तरह रखनी चाहिए कि उन्हें अधिक से अधिक लोग खरीद सके, ताकि घाटे जैसी स्थिति से बचा जा सके। व्यवसाय के लिए स्थान का अधिक महत्व होता है। उत्पाद या सेवा के अनुरूप स्थान का चयन जरूरी है। व्यवसाय ऑनलाइन किया जाएगा या किसी कार्यालय से अथवा किसी स्टोर के माध्यम से संचालित होगा, यह बात पहले ही तय हो जानी चाहिए। स्टार्टअप का मूल मंत्र है कड़ी मेहनत और सही रणनीति। जिस प्रकार पौधों को रोपने के बाद उसे सही खाद, समय से पानी और उचित देखरेख की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शुरुआती दौर में इसकी अत्यधिक देखभाल की जरूरत है। स्टार्टअप की सफलता उसके प्रति पूर्ण समर्पण, कड़ी मेहनत, रचनात्मकता, सामने आई परिस्थितियों से निपटने की क्षमता आदि शामिल है। स्टार्टअप व्यक्ति को खुद की क्षमताएं प्रदर्शित करने, बेहतर कमाई करने और एक शानदार भविष्य निर्माण की राह दिखाता है।

तो मेहनत कश भाई, आपने देखा कि स्टार्टअप के माध्यम से आप कैसे अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके माध्यम से आप दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैला सकते हैं। और अब आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

और मेहनतकश भाइयों, अब देखिए कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने को है, तो अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेहनत कश, आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। शाम के 6:30 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन्स लाइव।

0: मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: फिल्म संगीत कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं कुमार शानू की आवाज में ये गीत। फिल्म का नाम है 1942 अ लव स्टोरी।

आज का अर्जुन। अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में इस फिल्म का गीत। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और अमित कुमार को। फिल्म का नाम है बागी।

और इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल के लिए हमारा अगला प्रसारण हमारे रांची केंद्र से होगा। कृपया कुछ पल करें इंतजार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, कर्नाटका के एक दंपति सुपारी के रेशे से बनी कई यूनिक प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटका में शिवमोगा में ये दंपति हैं, श्रीमान सुरेश और उनकी पत्नी श्रीमती मैथिली। ये लोग सुपारी के रेशे से ट्रे, प्लेट और हैंडबैग से लेकर कई डेकोरेटिव चीजें बना रहे हैं। इसी रेशे से बनी चप्पलें भी आज खूब पसंद की जा रही है। उनके प्रोडक्ट्स आज लंदन और यूरोप के दूसरे बाजारों तक में बिक रहे हैं। यही तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक हुनर की खूबी है जो सबको पसंद आ रही है। भारत के इस पारंपरिक ज्ञान में दुनिया सस्टेनेबल फ्यूचर के रास्ते देख रही है। हमें खुद भी इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। हम खुद भी ऐसे स्वदेशी और लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और दूसरों को भी ये उपहार में दें। इससे हमारी पहचान भी मजबूत होगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और बड़ी संख्या में लोगों का भविष्य भी उज्जवल होगा।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। रांची समेत राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, हजारों सुलहनीय मामलों का हुआ निपटारा, करोड़ों रुपए की राजस्व की हुई वसूली। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने गिरिडीह में सिविल सोसाइटी के साथ की बैठक, साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और विकास को लेकर कई निर्देश। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और पुलिस व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा धनबाद में गैंगवॉर जैसी स्थिति, आम लोगों में भय का माहौल। हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी राजस्व कर्मचारी को जमानत देने से हाईकोर्ट का इनकार, प्रार्थी पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप। और अवैध शराब के खिलाफ रांची के 3 थाना क्षेत्रों में उत्पाद विभाग की दबिश, एक अवैध शराब कारोबारी गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब जब्त। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आज राजधानी रांची समेत राज्यभर में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों सुलहनीय मामलों का विशेष बेंचों का गठन कर निष्पादन किया गया और करोड़ों रुपए की राजस्व वसूली हुई। रांची सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित लोक अदालत का उद्घाटन झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुजित नारायण प्रसाद ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अदालत का प्रयास होता है कि अधिक से अधिक लोगों को न्याय मिले, ताकि न्यायालय पर लोगों का भरोसा बना रहे।
2: इन्वेस्टिगेशन तो बहुत मैटर करता है ना किसी भी क्रिमिनल केस में। इन्वेस्टिगेशन सही होगा तो फिर जो कोर्ट में कन्विक्शन रेट अगर बढ़ेगा तो लोगों में डर का माहौल होगा कि ऐसा करने से ऐसा होता है, लेकिन अगर कन्विक्शन नहीं होता, एक्विटल होता है, तो जो सही में जो क्राइम किया उसका तो उत्साह बढ़ेगा, चलो करने से कुछ नहीं होता है, फिर करो, रिपीट करो, तो जो डेटरेंस है वो खत्म हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन का भी इम्पोर्टेंट है।
1: नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने आज गिरिडीह में सिविल सोसाइटी के साथ स्वच्छता को लेकर समीक्षा बैठक की। नगर निगम कार्यालय में हुई इस बैठक में उन्होंने शहर की साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर चर्चा की। इस मौके पर मंत्री ने बताया कि बैठक में जो विचार सामने आए हैं उसके अनुपालन को लेकर नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।
3: बैठक हुई जिसमें शहर के कचरा प्रबंधन से लेकर परिवहन व्यवस्था से लेकर कार्यकलाप को और बेहतर करने की दिशा में तमाम नागरिकों से उनके सुझाव आमंत्रित किए गए। कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी आए और मुझको लगता है कि इस बैठक का आउटकम गिरिडीह शहर को और बेहतर बनाने में मदद करेगा।
1: स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य में बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त और आवश्यक मानकों के संचालित हो रहे फार्मेसी कॉलेज को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने इस मामले में विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार को सभी फार्मेसी कॉलेजों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर अंसारी ने पूरे मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और गहन जांच के लिए विशेष टीम गठित करने का भी निर्देश दिया है, ताकि सभी तथ्यों की गंभीरता से पड़ताल की जा सके। उन्होंने कहा है कि जांच के दौरान लापरवाही, नियमों की अनदेखी करने वाले लोगों और संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य के वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राधाकृष्ण किशोर ने पार्टी संगठन में नाराजगी से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी के स्तर पर जो काम होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है, उसे वे उजागर करने का काम कर रहे हैं। श्री किशोर ने कहा कि पार्टी को ज्वलंत मुद्दों और चुनावी वायदे को लेकर मुखर होना होगा।
4: नाराजगी का कोई मामला नहीं है, पार्टी के स्तर पर जो काम करना चाहिए था वो नहीं हो रहा, लेकिन ज्वलंत मुद्दों पर अगर पार्टी चुप बैठी है तो फिर किस बात की पार्टी। जो आपने वादे किए थे, चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि साथ वादे साथ इरादे, किसी एक पर भी आप मुखर नहीं हो पाए।
1: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गैंगस्टर प्रिंस खान के वायरल वीडियो को लेकर राज्य सरकार और पुलिस व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि धनबाद में पुलिस और अपराधियों के बीच संघर्ष नहीं बल्कि गैंगवॉर जैसी स्थिति बनी हुई है और आम लोगों में भय का माहौल है। श्री मरांडी ने कहा कि संवेदनशील जिलों में कथित रूप से करोड़ों रुपए लेकर पोस्टिंग किए जाने की चर्चाएं कानून व्यवस्था पर जनता का भरोसा कमजोर कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले में जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि ऐसी स्थिति जारी रही तो राज्य में कानून व्यवस्था और बदतर हो सकती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण का शुभारंभ भी किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी राजस्व कर्मचारी संतोष कुमार वर्मा को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की अदालत में आज जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ACB ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि प्रार्थी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। न्यायालय ने 18 जून को मामले की अगली सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र से ईसरी बाजार में हुए भीषण सड़क हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। गौरतलब है कि कल हुई इस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई थी जबकि अन्य घायल हो गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मांग। आदिवासियों की जमीन लूट समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए आज विभिन्न आदिवासी संगठनों की बैठक हुई। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने कहा कि आदिवासियों को अपने हक के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से विभिन्न संस्थाओं में आदिवासी धर्म कॉलम लागू करने की मांग की।
5: आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म में जब रिलीजन का कॉलम बनाते हैं तो उसमें आप अदर्स जो हमारे आदिवासियों के लिए है सरना आदिवासी उनके लिए आप लोगों ने कॉलम कोड क्यों नहीं रखा और हम लोगों को आज अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है।
1: उत्पाद विभाग ने रांची में अवैध नकली विदेशी शराब के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 940 पेटी शराब बरामद किया है। उत्पाद विभाग के अवर सहायक निरीक्षक दिलीप कुमार साहू ने बताया कि नगड़ी रातू और धुरवा थाना क्षेत्र में की गई छापेमारी के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
6: छापेमारी में 940 पेटी विदेशी शराब बरामद किया गया। अभी जाँच किया जा रहा है, जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक आदमी का गिरफ्तारी हुआ है, जांच किया जा रहा है, जांच के बाद सभी पर कार्रवाई की जाएगी।
1: जामताड़ा पुलिस ने कर्माटांड थाना क्षेत्र से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 8 मोबाइल, 10 सिम कार्ड और 19,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं।
7: एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि जामताड़ा जिला के कर्माटांड थाना क्षेत्र में ग्राम सहजपुर में कुछ साइबर अपराध कर्मियों के द्वारा इस सूचना पर रेड करने के दौरान घटनास्थल से 3 अभियुक्त जो है उनकी गिरफ्तारी हुई है। इन लोगों के पास से जो बरामद हुआ है 8 मोबाइल, 10 सिम कार्ड और लगभग 19,000 रुपए नकद बरामद हुए हैं। इन लोगों को हम लोग गिरफ्तार करके न्यायिक अभियुक्षा में।
1: और अब मौसम का हाल। राज्य के कई इलाकों में 15 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, रांची, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद और खूंटी में आज आंधी, ओलावृष्टि और वज्रपात की आशंका है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी 15 मई तक तेज हवाओं के चलने और वज्रपात को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची समेत राज्यभर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। हजारों सुलहनीय मामलों का हुआ निपटारा। करोड़ों रुपए की राजस्व की हुई वसूली। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने गिरिडीह में सिविल सोसाइटी के साथ की बैठक। साफ सफाई, यातायात व्यवस्था और विकास को लेकर दिए कई निर्देश। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार और पुलिस व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा धनबाद में गैंगवॉर जैसी स्थिति, आम लोगों में भय का माहौल। हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी राजस्व कर्मचारी को जमानत देने से हाईकोर्ट का इनकार, प्रार्थी पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप, और अवैध शराब के खिलाफ रांची के 3 थाना क्षेत्रों में उत्पाद विभाग की दबिश, एक अवैध शराब कारोबारी गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब जब्त। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: अंक में आप सुनेंगे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे बोकारो संवाददाता।
1: बोकारो वासी पिछले कई सालों से बोकारो एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ान शुरू होने की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसे लेकर राजनीति तेज है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा, गंदी राजनीति करने के बजाय सभी को एक साथ बैठकर समस्या का समाधान निकालने की जरूरत है।
2: हम आग्रह करना चाहेंगे फिर उससे साथियों से कि अगर जरा सा भी बोकारो का हितैषी है, हमदर्दी है, तो सरकार में आप हैं, डीसी साहब से बात कीजिए और एक बैठक रख के इसको निराकरण हो, समाधान हो। कौन नहीं चाहता फ्लाइट चले? सत्ता पक्ष के बड़े बड़े नेता यहाँ पे, विधायक है, यहाँ दो दो विधायक सत्ता पक्ष के है कि नहीं? हम बीजेपी के सांसद हैं, हमारे बीजेपी के पूर्व विधायक, बीजेपी के यहाँ पूर्व हमारे नेता लोग हैं, सारे लोग बैठ के बात करके निराकरण निकालेंगे। आरोप प्रत्यारोप लगा के हवाई अड्डा नहीं चल सकता है, जहाज नहीं उड़ सकता है, बैठ के समाधान हो सकता है, बैठ के ही हम लोग इसका निराकरण कर सकते हैं।
1: कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने कहा कि एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय लोगों को सही जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने बताया, बोकारो एयरपोर्ट के संचालन में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड रोड़ा बना हुआ है।
3: कमजोर अगर कोई कड़ी है एयरपोर्ट शुरू ना होने में, तो वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। जनता को गुमराह करना एक बात है, राजनीति करना एक बात है, लेकिन प्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये होना चाहिए कि पब्लिक को सही पिक्चर दिखाना कि कब तक एयरपोर्ट शुरू हो, हम क्या क्या होमवर्क कर रहे हैं, कब तक शुरू होगा, होगा भी कि नहीं होगा, ये भी उनको बता देना। लेकिन हम एक प्रतिनिधि होने के नाते ये पूरा अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि एयरपोर्ट शुरू होगा, ये हम बहुत, इसके लिए हम मेरा बहुत विश्वास है कि मुझे जो प्रॉमिस मेरे गवर्नमेंट यहाँ स्टेट गवर्नमेंट से मेरा प्रॉमिसेस है और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जो मिनिस्ट्री से जो प्रॉमिसेस है वो उनका भी बहुत क्लियर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों का भी, कि एयरपोर्ट बोकारो में शुरू होगा, बोकारो में ही शुरू होगा क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सेटअप बना हुआ है।
1: दूसरी तरफ उपायुक्त अजय नाथ झा ने बताया, एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ान सेवा शुरू करने से पूर्व आवश्यक आधारभूत संरचना का कार्य लगभग पूरा किया जा चुका है।
4: हमारे सरकार की एजेंसी से दोनों बैठ करके आपस में अब एक पेज पर है, बातचीत हो रही है और दोनों का कोऑर्डिनेशन है। कैसे वो आए हुए हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लोग आए हुए हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, उन लोगों ने टाइम लाइन दिया है, बहुत सारे काम है जो वो 15 तारीख तक पूर्ण करेंगे और बहुत सारे काम है जो नक्शे का छोटा छोटा है वो 30 मई तक पूर्ण कर लेंगे। तो लगभग मई हमारा पूरा उनके आपस में कार्य को पूर्ण कर लेने का होगा। हमको लगता है कि जून में ये इंस्पेक्शन होकर ये रेडी रहेगा।
1: बोकारो में लगभग प्रतिदिन हो रही बेमौसम बरसात से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है, तो दूसरी तरफ किसान चिंतित हैं। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो।
0: अभी आप सुन रहे थे बोकारो जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। सबसे पहले कुछ जरूरी संदेश।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: हर इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: जानकारी कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं फिल्म खेल खेल में का गीत, आवाज शैलेंद्र सिंह की।

0: इफ्को नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: और अब आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म किस्मत का गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। फिल्म थी एक दूजे के लिए और इस गीत के साथ ही आज का झनकार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। कार्यक्रम की शुरुआत में ये सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में आइए सुनते हैं फिल्म हम दिल दे चुके सनम का गीत।

Ora bem, isso não tem. लता मंगेशकर और साथियों को फिल्म का नाम है हीना।

उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में आप सुन रहे थे ये गीत। फिल्म थी जो जीता वही सिकंदर। और ऑल टाइम हिट्स कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में फिल्म जवानी दीवानी का गीत।

और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 8 बज चुके हैं, अब आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। आपकी चाहत कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और महेंद्र कपूर की आवाजों में फिल्म काला पत्थर का गीत। इस गीत को सुनने की फरमाइश भेजी है आप सब श्रोताओं ने मालीटोला खीरगांव हजारीबाग से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास भगत, जितेंद्र भगत, रितेश भगत, रोहित भगत, ऋषि और राहुल। चेपाकल बड़कागांव से बाबूलाल ठाकुर, सविया ठाकुर, तिलेश्वरी, भरत ठाकुर, मंजू, संतोष ठाकुर, विकास ठाकुर, जितेश, आदर्श, अनुराधा, रुक्मणी, प्रियंका और दीपिका। सरदार रोड जैन मंदिर के पास से मोहम्मद फरजंद अली, मोहम्मद मुमताज, गुलाम मुस्तफा, गुलाम मुर्तजा, राजेंद्र ठाकुर और अजीत ठाकुर। तो आइए सुनते हैं इन श्रोताओं के पसंद का गीत।

और अब आइए सुनते हैं इन श्रोताओं के पसंद का गीत। ग्राम शंकरपुर बड़का गांव रोड हजारीबाग से युगल कुमार, देवंती देवी, नीलेश कुमार, अंशु, प्रिया कुमारी। पत्रातु हजारीबाग से बेसिल खलको, सेसिल खलको, मधु, रितु, रचना, मीतु, श्वेता, पल्लवी, रोहित, प्रवीण, सचिन, नदीम, ललिता और परिवार के सदस्य। झुमरी तिलैया से जगन्नाथ प्रसाद साहू और बड़काकाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम और मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में फिल्म सरगम का गीत।

आपकी चाहत कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं तुलसी कुमार और आतिफ असलम की आवाजों में फिल्म सत्यमेव जयते का गीत। इस गीत को सुनने की फरमाइश भेजी है आप सब श्रोताओं ने मेन रोड बड़का गांव से दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार, गुड़िया रानी, गोलू बाबू, भोला बाबू और उनके मम्मी पापा। रेलवे स्टेशन रोड हजारीबाग से शमीम अहमद, शगुफ्ता परवीन, नूरजहां बेगम, तहसीन बानो, खलील अहमद, एहसान अहमद, दारजू परवीन और नसीम अहमद। बड़ा बाजार ग्वाल टोली हजारीबाग से प्रवीण कुमार, नैन्सी रानी और प्रतिभा रानी और जामाडोबा से मोहम्मद रफीक अंसारी, बेगम फरीदा रफीक।

आपकी चाहत कार्यक्रम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से पेश किया जा रहा है। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं इन श्रोताओं के पसंद का गीत। महसूल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस बेगम इशरत अकरम वसीम अकरम रुबीना वसीम आरिज वसीम नदीम अकरम शमीम अकरम अमन अकरम ममता रानी शर्मा पूनम कुमारी शर्मा बच्चू शेख और चीना शेख स्टेशन रोड जुमरी तिलैया से विजय शर्मा मनोज मगधिया और अंशु मगधिया रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ग्राम पोचरा निमियाटोला से महेश राम सरिता देवी पिंटू वर्षा फुलवासी देवी और परिवार के सदस्य इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में

अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे हैं फिल्म बाजार का गीत। फरमाइश आप सब श्रोताओं की है मेन रोड बड़का गांव से नीरज मालाकार, आशीष मालाकार, विकास मालाकार, रंजना मालाकार और परिवार के सदस्य। किरेडारी चौक से आदित्य कुमार, सरिता देवी, निखिल, नयन और उनके मम्मी पापा। जामा मस्जिद रोड हजारीबाग के मुबारक हुसैन, तबारक हुसैन, अमानत हुसैन, शराफत हुसैन, बिल्किस फातमा, कनीज फातमा और शहनाज फातमा। खीरगांव माली टोला हजारीबाग से कल्लू मालाकार, नवनीत मालाकार, अरविंद मालाकार, आदर्श मालाकार और अनिकेत मालाकार।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से पेश किया जा रहा है। आपकी चाहत कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मनहर अनुराधा पौडवाल और सुखविंदर सिंह की आवाजों में फिल्म कर्मा का गीत। इस गीत को सुनने की फरमाइश भेजी है आप सब श्रोताओं ने। बड़काकाना से रविंद्र वर्मा, अमन वर्मा, आरती वर्मा, उर्वशी वर्मा, रिया वर्मा, परी, कोको, चारू और आरके वर्मा

हरली डंबाडी से आप सब श्रोता उमेश चंद्र पांडे, शंभु चंद्र, अनिल चंद्र, साकेत, शुभम, नर्मदा पांडे, अक्षता, प्रियंका, अपराजिता, अपूर्व, टुकू और परिवार के सदस्य, आप सब श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म कर्मा का गीत।

फिल्म कर्मा के इस गीत के साथ ही आज का आपकी चाहत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। समाचार संध्या, न्यूज एट 9 और स्पॉटलाइट के लिए अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पांच विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ पांच मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसी के और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियाँ अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. Five MLAs also sworn in as Cabinet Ministers. TVK Chief C. Joseph Vijayet stakes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties. Set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. Enforcement Directorate arrests Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in alleged money laundering case. And in archery, India's Sahil Jadhav wins bronze medal in men's individual compound event at World Cup Stage 2 in Shanghai. Shubhendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office in secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, five other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtania, Nishit Pramanik and Khudiram Tudu were sworn in as Cabinet Ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naveen and several other leaders of the BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishak, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. We have more from our correspondent.
5: After taking the oath as Chief Minister of West Bengal, Shubhendu Adhikari held meeting with the Chief Secretary, Home Secretary and other officials of the state at the PWD tent at Maidan. Meanwhile, renovation works are underway at the Writers Building in Kolkata for reshifting of the Secretariat of the State Government, which was shifted from this heritage building to the Navanno after Mamata Banerjee came to power in 2011. The new BJP government will work from the Writers Building, which is a heritage structure. In an important development today, special observer for the West Bengal for SIR, retired IAS officer Subrat Gupta has been appointed as the advisor to the Chief Minister of West Bengal and the 2017 batch IAS officer Shantanu Bala appointed as the personal secretary to the CM. It is learned that on 30th May, the newly elected MLAs of West Bengal will take oath at the assembly in Kolkata. Kollan Laha reporting from Kolkata.
4: The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. Prime Minister Modi congratulated Shubhendu Adhikari on taking oath as Chief Minister of West Bengal. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay today met Governor Rajendra Arlikar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form the government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is set to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu tomorrow. Tamaragavetri Karagam, TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from the Congress, left parties, Viduthalai Chiruthaigal Kachi, VCK, and the Indian Union Muslim League, IUML. Vijay, who won from two assembly constituencies, will have to vacate one seat, reducing the TVK's strength to 107. The combined strength of the supporting parties, including the Congress with five MLAs and CPI, CPIM, VCK and IUML with two MLAs each, stands at 13. Our correspondent has filed this report.
6: TVK leader Joseph Vijay met the governor along with the supporting MLAs of the Congress, the left party CPI and CPM, VCK and the IUML to form the government. 6 days after the results, this is the fourth time that he met the governor on the issue of having a majority. The governor had earlier cancelled the appointment and was to leave for Kerala, but then he invited the TVK leader to once again meet him today. The party has 120 MLAs for support. Apart from the Congress, who broke the alliance with the DMK, rest of the parties have rendered unconditional support. DMK leader and former Chief Minister M.K. Stalin, AIADMK General Secretary Edappadi Palaniswamy extended greetings to the new government which is to be formed tomorrow. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
4: Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana tomorrow. Mr. Modi will first travel to Karnataka to participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. He will also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Thereafter, Prime Minister Modi will travel to Telangana to lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. These projects collectively aim to strengthen connectivity, improve logistics efficiency, enhance safety and provide a better travel experience for people. Later in the day, Mr. Modi will reach Jamnagar on a two-day visit to Gujarat. On Monday, Mr. Modi will participate in Somnath Amrit Mahotsav, marking the 75th anniversary of the restoration of the Somnath Temple. As part of the celebrations, the Prime Minister will participate in a series of auspicious religious and cultural events. Our correspondent reports, the five-day celebrations underway in Gujarat highlight the historic significance of the temple and celebrate its enduring legacy.
7: The celebration honors the enduring legacy of the Somnath Temple. It marks 1,000 years since the first recorded attack on the Somnath Temple in 1026. Somnath Temple holds a sacred place as the first among the 12 Adi Jyotirlingas of Lord Shiva. Somnath Temple has been repeatedly ravaged and plundered by invaders over centuries. Every time, devotees and rulers have rebuilt it and restored its lost glory. Somnath Temple, therefore, stands as a testimony to India's unshattered faith that has risen victorious over repeated assault over centuries. The festivities will culminate on 11th of this month with a grand Kumbhabhishek at the temple spire using water from 11 sacred shrines. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
4: The Prime Minister will also travel to Vadodara, where he will inaugurate the Sardar Dham Hostel. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Atal Pension Yojana have completed 11 years of providing social security cover to citizens across the country. Prime Minister Narendra Modi highlighted the impact of the schemes launched by the NDA government 11 years ago. He stated that these initiatives reflect the government's commitment to ensuring dignity, assurance and financial security for the people of the country. Mr. Modi noted that the PM Jeevan Jyoti Bima Yojana and PM Suraksha Bima Yojana have positively impacted lives at the grassroots level and strengthened the social security framework in the country. Highlighting the benefits of the Atal Pension Yojana, Mr. Modi said the scheme has enabled several people to lead a more secure life in their old age and reflects the government's commitment to making social security accessible and inclusive. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. India has conducted a successful flight trial of an advanced Agni missile with MIRV, Multiple Independently Targeted Re-entry Vehicle System, from the Dr. APJ Abdul Kalam Island in Odisha. In a social media post, the Defence Ministry said the missile was flight tested yesterday with multiple payloads targeted to different targets spatially distributed over a large geographical area in the Indian Ocean region. Defence Minister Rajnath Singh has complimented DRDO, Indian Army and industry on the successful flight test of Agni missile with MIRV capability. Mr. Singh said the achievement will add an incredible capability to the country's defense preparedness against the growing threat perceptions. The government has announced the winners of the National Panchayat Awards 2025. 42 panchayats from across the country have been selected for the honors. According to the Ministry of Panchayati Raj, Karnataka has secured the highest number of awards with 6 panchayats, followed by Andhra Pradesh and Odisha with 5 awards each. The award distribution ceremony will be held in New Delhi on the 3rd of next month. The winning panchayats will receive financial incentives ranging from 50 lakh rupees to 5 crore rupees. The ministry said the awards aim to encourage inclusive, participatory and sustainable development in rural India while strengthening grassroots governance in line with the vision of Vikasit Bharat 2047. The Enforcement Directorate ED has arrested Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in connection with an alleged money laundering case involving Hampton Sky Realty Limited. Earlier, the ED had conducted operations at five locations in Delhi, Gurugram and Chandigarh in connection with the case. The action was taken under the criminal sections of the Prevention of Money Laundering Act, PMLA 2002. The case pertains to alleged large-scale money laundering through fake GST purchases of mobile phones worth over 100 crore rupees and subsequent exports to round-trip illegitimate funds from Dubai to India. The ED reportedly obtained multiple fake GST purchase bills from non-existent firms based in Delhi to claim fake input tax credit and GST refund on export credit and duty drawback benefits. The Central Bureau of Investigation, CBI, today conducted searches at 17 locations in Mumbai with three cases registered against Reliance ADA Group companies in connection with alleged frauds involving thousands of crores of rupees. The CBI said these searches were conducted at the residential premises of directors of the companies as well as at the office premises of intermediary companies whose accounts were used for diversion of bank funds. The CBI informed that the total quantum of alleged loss in these cases is 27,337 crore rupees. The United States has said it is awaiting Iran's formal response to a proposed 14-point framework aimed at preventing a wider regional conflict, even as fresh military and political tensions continue across West Asia. U.S. Secretary of State Marco Rubio said Washington remains engaged in diplomacy, while President Donald Trump indicated that Tehran's reply could determine the next phase of negotiations. Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi criticized recent American military actions, accusing Washington of undermining diplomatic efforts through escalation. The Intermeteorological Department, IMD, has predicted heavy rainfall over Kerala, Lakshadweep, South Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 to 3 days. The weather agency has issued a yellow alert for heavy rainfall in 7 districts of Kerala till tomorrow. Fishermen have been advised not to venture into the sea along the coasts today due to rough weather conditions. The Wrestling Federation of India, WFI, today issued a show cause notice to grappler Vinesh Bhogat, accusing her of indiscipline and anti-doping rule violations. In the 15-page notice, the WFI said Vinesh is ineligible to compete in domestic events until the 26th of June this year for not completing the mandatory 6-month notice period required for athletes returning from retirement under UWW anti-doping rules. The Federation has sought her explanation on four
8: ineligible to compete in domestic events until the 26th of June this year for not completing the mandatory 6-month notice period required for athletes returning from retirement under UWW anti-doping rules. The Federation has sought her explanation on four broad charges, including her disqualification from the 2024 Paris Olympics. She has been given 14 days to respond to the notice. In archery, India's Sahil Jadhav won a bronze medal in the men's individual compound event at the World Cup 2026 Stage 2 in Shanghai, China today. The 25-year-old Maharashtra archer defeated Denmark veteran player cum coach Martin Damsbo 147-1.
4: Won the toss and opted to bowl. Last night, Kolkata Knight Riders defeated Delhi Capitals by 8 wickets in Delhi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. 5 MLAs also sworn in as Cabinet Ministers. TVK Chief C. Joseph Vijayas takes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IU, ML and left parties, set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. Enforcement Directorate arrests Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora in alleged money laundering case. And in archery, India's Sahil Jadhav wins bronze medal in men's individual compound event during his day-long visit to Karnataka and Telangana tomorrow. All in the news at 9. Good night.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

एक ऐसी आवाज जिसका फिल्म संसार में कभी कोई जोड़ नहीं आया, एक आवाज जो अपने आप में निराली है, जो हमारी तन्हाइयों और हमारी उदासियों की साथी है।

तलत महमूद का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मंजूर अहमद थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने पंडित एस सी आर भट्ट से मॉरिस कॉलेज लखनऊ में तालीम ली। ये दौर था सन 1920-1930 का। तलत महमूद शास्त्रीय और सुगम संगीत की तालीम ले रहे थे। सन 1939 तलत महमूद ने बतौर गायक अपना करियर शुरू किया। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में तलत महमूद गजलें गाने लगे। ये वो दौर था जब तलत महमूद दाग, मीर, जिगर, मिर्जा गालिब और फैज अहमद फैज जैसे शायरों के अशार आकाशवाणी लखनऊ के लिए रिकॉर्ड करवाया करते थे। इसके बाद तलत महमूद चले गए कोलकाता। कोलकाता में एचएमवी के लिए तलत महमूद गाने लगे तपन कुमार के नाम से। उन्होंने वहां कई रचनाएं रिकॉर्ड करवाई। सन 1941 तलत महमूद की पहली डिस्क आई और ये वो गाना था जिसने उन्हें बेहद मशहूर कर दिया। गाने के बोल थे, सब दिन एक समान नहीं था।

जो लोग फिल्मी गाने गाकर करते हैं। यहां तक तलत महमूद ने फिल्मों में गाना शुरू नहीं किया था। तलत महमूद को फिल्मों में अभिनय का भी शौक रहा। अपने करियर में तकरीबन 16 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया। कोलकाता में बनी 3 फिल्में तो बड़ी ही कामयाब रहीं। तपन कुमार के नाम से वो बांग्ला में कुछ गीत भी रिकॉर्ड करवाते थे और अमूमन उनके संगीतकार हुआ करते थे कमल दास गुप्ता। सन 1949 में तलत महमूद मुंबई आ गए। उनका मकसद था फिल्मों में गाने गाना। यहां आकर उन्होंने बेमिसाल संगीतकार अनिल बिस्वास से मुलाकात की। अनिल बिस्वास को तलत की आवाज जम गई और फिल्म आरजू में आया उनका पहला गाना।

0: कोई।
1: इस गाने से तलत महमूद की फिल्मी कामयाबी का सफर शुरू होता है। इसके बाद तलत महमूद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक कई बेमिसाल फिल्मों में उनके गाने आए और लोगों ने इन गानों को बड़ा मशहूर किया। एक दौर ऐसा भी आया था जब तलत महमूद को अपनी आवाज की लर्जिश पर भरोसा नहीं था। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास के लिए तलत बिल्कुल सपाट गा रहे थे। तब अनिल बिस्वास ने उन्हें जोर से डांटा था और उन्हें ये यकीन दिलाया था कि तुम्हारी आवाज की ये जो लर्जिश है, ये जो कंपन है, यही तुम्हारी ताकत है। और उसके बाद बड़े आत्मविश्वास के साथ तलत महमूद ने गाया। उनकी आवाज का ये कंपन उनकी खासियत बन गया। आइए सन 1957 में आई फिल्म देख कबीरा रोया का ये गाना सुना जाए।

तलत महमूद ने बहुत सारे संगीतकारों के साथ गाया। उनकी आवाज का एक खास टेक्सचर था, उनकी आवाज का एक अलग ही रंग था और दिलीप कुमार जैसे नायकों पर उनकी आवाज ली गई। आइए सुना जाए सन 1952 में आई फिल्म दाग का गाना।

संगीतकार सलील चौधरी के लिए तलत महमूद ने सन 1961 में लता मंगेशकर के साथ ये गाना गाया फिल्म छाया के लिए। आज भी ये फिल्म संसार के कुछ बेमिसाल गानों में से एक है।

सन 1959 में सुनील दत्त के लिए फिल्म सुजाता में तलत महमूद ने ये गाना गाया था। हीरो टेलीफोन पर हीरोइन से अपने मन की बात कह रहा है।

अब संगीतकार मदन मोहन के साथ तलत महमूद के गानों की बात की जाए और आपको सुनवाया जाए सन 1964 में आई फिल्म जहां आरा का ये गाना।

0: फिर वही।
1: मदन मोहन ने एक बेमिसाल गाना तैयार किया जिसमें तलत महमूद के अलावा मोहम्मद रफी, मन्ना डे और भूपेंद्र की भी आवाजें थीं। ये था फिल्म हकीकत का गाना, सुनिए।

सबसे दिलचस्प बात ये है कि तलत महमूद ने कई फिल्मों में गाने गाए, उसके बावजूद वे अपने गैर फिल्मी गीतों और गजलों के एल्बम तैयार करते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी की। आइए फिल्म सोने की चिड़िया का गाना सुना जाए। ये फिल्म साल 1958 में आई थी। इस फिल्म के हीरो खुद तलत महमूद थे। ये गाना सुना।

0: क्या,
1: यानी फिल्मों में गायकी, गैर फिल्मी गाने, गीत और गजलें और एक्टिंग, इतना सब किया तलत महमूद ने। उन्होंने सारी दुनिया में घूम घूम कर अपने संगीत कंसर्ट भी किए। तलत महमूद का करियर काफी लंबा रहा। उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 800 गाने गाए हैं। अपनी खास तरह की आवाज, अपने खास तरह के अंदाज के लिए आज भी सुनने वाले उन्हें बेहद प्यार

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक तलत महमूद पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

एक ताजमहल, एक लता मंगेशकर, एक विविध भारती। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में फिल्म कश्मीर की कली का गीत।

अभी आप सुन रहे थे रज़िया सुल्तान फिल्म का गीत, आवाज कब्बन मिर्जा की थी। रजनीगंधा कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में फिल्म कटी पतंग का गीत।

रजनीगंधा कार्यक्रम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से पेश किया जा रहा है। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में फिल्म मधुमती का गीत।

सुरेश वाडेकर और ए हरिहरन की आवाजों में आप सुन रहे थे फिल्म माचिस का गीत। और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म लैला मजनू का गीत।

और इस गीत के साथ ही आज का रजनीगंधा कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज की फनकारा हैं हिंदी सिनेमा की एक बेहद मशहूर पार्श्व गायिका, जिन्होंने अपनी मखमली आवाज से करोड़ों श्रोताओं को मदहोश किया। गीता घोष राय चौधरी, जिन्हें आप सब गीता दत्त के नाम से जानते हैं, उनके गीतों में मधुरता, दर्द, चुलबुलापन था जो उन्हें करोड़ों लोगों के दिल में बसाए रखा था। आप सब जानते हैं उनके पति प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक गुरुदत्त थे। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे गीता दत्त की आवाज में कुछ फिल्मी गाने। सबसे पहले आइए सुनते हैं फिल्म आर पार का गीत।

आज के फनकार कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म साहब बीबी और गुलाम का गीत, गीता दत्त की आवाज में।

आज के फनकार कार्यक्रम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से पेश किया जा रहा है। कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म शर्त का गीत, आवाज गीता दत्त की।

गीता दत्त की आवाज में फिल्म बाजी के इस गीत के साथ ही आज के फनकार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। समाचारों के लिए अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों बाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अदलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुई विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्रीश्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R. N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, five other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram today were sworn in as Cabinet Ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP-ruled states, BJP President Nitin Naveen and several other leaders of BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishak, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay today met Governor Rajendra Arlikar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is set to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu tomorrow. Tamilaga Vetri Karagam, TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from Congress, left parties, Vidudalai Sirithagai Kachi, VCK and the Indian Union Muslim League, IUML. Vijay, who won from two assembly constituencies, will have to vacate one seat, reducing TVK's strength to 107. The combined strength of the supporting parties, including Congress with 5 MLAs and CPI, CPIM, VCK and IUML with 2 MLAs each, stands at 13. The top brass of the Congress party today held a meeting in New Delhi to discuss government formation in Kerala. The meeting convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party general secretary in charge of the state Deepa Dasmunshi, general secretary organization KC Venugopal and senior Kerala leaders Ramesh Chinnitala and VD Sathisan. The party said Congress Chief Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala Chief Minister and the name will be announced very soon. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana tomorrow. Mr. Modi will first travel to Karnataka to participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. He will also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Thereafter, Prime Minister Modi will travel to Telangana to lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. These projects collectively aim to strengthen connectivity, improve logistics efficiency, enhance safety and provide a better travel experience for people. Later in the day, Mr. Modi will reach Jamnagar on a two-day visit to Gujarat. India has conducted a successful flight trial of an advanced Agni missile with MIRV, Multiple Independently Targeted Re-entry Vehicle System, from Dr. APJ Abdul Kalam Island in Odisha. In a social media post, the Defence Ministry said the missile was flight tested yesterday with multiple payloads targeted to different targets spatially distributed over a large geographical area in the Indian Ocean region. Defence Minister Rajnath Singh has complimented DRDO, Indian Army and industry on the successful flight test of Agni missile with MIRV capability. Mr. Singh said the achievement will add an incredible capability to the country's defence preparedness against the growing threat of perceptions. In archery, India's Sahil Jadhav won a bronze medal in the men's individual compound event at the World Cup 2026 Stage 2 in Shanghai, China today. The 25-year-old Maharashtra archer defeated Denmark veteran player-cum-coach Martin Damsbo 147-144 in the bronze medal playoff to secure India's first medal of the ongoing tournament. And with that, we end this news bulletin.
3: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है। एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। इसके साथ ही संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातः 5:55 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।

हर्ट्स पर वक्त हो चुका है ठीक 5:10:59 और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का। भोर सुहानी की वो महफिल जिसमें जिंदगी से जुड़ी हुई बातें तो होती ही हैं, साथ ही साथ किस तरीके से हम जिंदगी को आगे बढ़ाएं उसकी बातें भी होती है, और ये भी कि हम जिंदगी में उन तमाम मुश्किलात से कैसे मुकाबला करते हुए आगे बढ़े और अपनी मंजिल को तय करें। लेकिन हर सुबह जब हम जगते हैं, हर सुबह जब हम अपने बिस्तर से बाहर निकलते हैं, तो सबसे पहले हम ईश्वर का नाम लेते हैं, खुदा का नाम लेते हैं, और खुदा के नाम के साथ ही, ईश्वर के नाम के साथ ही हम हर नए दिन का आगाज करते हैं। तो हम भी आज उसी खुदा, उसी ईश्वर के नाम हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आज हम भी एक नई सुबह में कदम रख चुके हैं, तो आइए आज की सुबह का आगाज करते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर भोर सुहानी में, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। तो आइए आज के इस सफर को हम यूं ही आगे बढ़ाते हैं, उस खुदा का नाम लेते हुए, उस ईश्वर का नाम लेते हुए जिसने हमें पैदा किया और हमें एक बेहतर इंसान बनाया। ये नगमा है फिल्म द बर्निंग ट्रेन से, आवाज है सुषमा श्रेष्ठ की।